0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जल तरंग वादन। कलाकार थे मनीष शर्मा, आपने प्रस्तुत किया राग भैरवी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद उठा रहे थे कार्यक्रम वंदना का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं अब ये संदेश।
1: मैं हूँ आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत

हरिश्चंद्र के विचार। 6:45 का वक्त रहेगा रामचरित मानस का। इसमें आज आप सुनेंगे बाल कांड का भाग 82। और 7:30 पर, जी हाँ 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, जिसे लेकर हाजिर होंगी मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 6:40 होने को है। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचारों पर आधारित चिंतन।

मातृभाषा के प्रति भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम जग जाहिर है। हिंदी भाषा के विकास और जन जन के हृदय में बसाने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। एक बार वे कहीं जाने के लिए बनारस में बस स्टॉप पर खड़े थे कि तभी दो अंग्रेज वहां आए। उनमें से एक ने भारतेंदु जी से कुछ पूछा। भारतेंदु जी चुप रहे। फिर दूसरे अंग्रेज ने कुछ पूछा। भारतेंदु जी को फिर कुछ समझ नहीं आया। वे दोनों अंग्रेज वहीं खड़े रहे। भारतेंदु जी भी वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद भारतेंदु जी ने सुना, वे दोनों अंग्रेज भारतेंदु जी के बारे में कुछ अपशब्द कह रहे हैं और कुछ कुछ शब्द हिंदी में भी बोल रहे हैं। भारतेंदु जी उनके पास गए और बड़े आदरपूर्वक उन्होंने उन अंग्रेजों से पूछा, आप हिंदी जानते हैं? हाँ, नॉलेज रखते हैं, उनमें से एक अंग्रेज बोला। फिर आपने मुझसे हिंदी में सवाल क्यों नहीं किया? भारतेंदु जी ने उनसे पूछा। वे दोनों अंग्रेज चुप रहे। भारतेंदु जी ने अब और थोड़ी सहजता दिखाते हुए पूछा, जब आप हिंदी जानते हैं तो फिर आपने मुझसे हिंदी में क्यों नहीं सवाल किया? वे दोनों अंग्रेज फिर चुप रहे। अब की बार भारतेंदु जी एकदम मानवीय हो गए और पूरी सहजता से बोले, सॉरी सर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, बट इफ यू नो हिंदी यू शुड स्पीक इन हिंदी विद इंडियंस। दोनों अंग्रेज सीधे से दिख रहे भारतेंदु जी को गंभीरतापूर्वक देखते रह गए। भारतेंदु जी अपनी मातृभाषा हिंदी के साथ साथ संस्कृत, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी भली प्रकार जानते और समझते थे। ये सारी भाषाएं उन्होंने स्वाध्याय के जरिए ही सीखी थी। वे किसी भाषा विशेष के विरोधी नहीं थे, मगर अपनी भाषा को वे उन्नति का सबसे बड़ा आधार मानते थे। अपनी भाषा की उन्नति के लिए उन्होंने अनेक दोहे भी लिखे। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के जदपि सबगुन होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोए। और एक अति लाभ यह है या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचारों पर आधारित चिंतन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज।

स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 6:45 होने को है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस में बालकांड का भाग 82।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राज हंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं, और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यूगिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे

चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुल तारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the Bulgarian leadership and hold discussions with his counterpart. In men's cricket, India A defeated Sri Lanka A by 8 runs in a close contest in the opening clash of Tri-Nation A series at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka yesterday. Opting to bat first, India scored 277 for 6 in stipulated 50 overs, riding in Rituraj Gaikwad's 101 runs. Skipper Tilak Varma also scored 60 runs. Fast bowler Mohammad Siraj has been withdrawn from India's squads for the upcoming T20 international series against Ireland and England. The men's selection committee has named Prasidh Krishna as Siraj's replacement for both T20I series. And IMD has forecast heatwave conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh and West Rajasthan. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर. स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 7:10 और 16 सेकंड हो चुके हैं. अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम संगीतिका. इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर स्मृति त्रिपाठी द्वारा गाए भजन. आपके साथ संगत कर रहे हैं सितार पर खालिद मुस्तफ़ा, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, हारमोनियम पर करीम नियाजी और तबले पर राशिद नियाजी.

सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में अभी आप आनंद उठा रहे थे डॉक्टर स्मृति त्रिपाठी द्वारा गाए भजनों का। आपके साथ संगत कर रहे थे सितार पर खालिद मुस्तफा, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, हारमोनियम पर करीम नियाजी और तबले पर राशिद नियाजी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:30 और पूरे 22 सेकंड्स। साथ ही साथ वक्त हो चुका है हमारे अगले कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

जी हाँ, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का। और आज मैं लेकर आई हूँ ढेर सारी बातें और खूबसूरत से गीत आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ इस खूबसूरत से कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में।

दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है और हम जो है ना गर्मी से बड़े ही परेशान हैं। हम क्या, सभी लोग जो हैं गर्मी से बेहद परेशान हैं और इस गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में लू चलती है और बहुत तेज़ धूप पड़ती है, जिस वजह से काफ़ी सारी परेशानियां जो है ना हमें झेलनी पड़ती हैं। अक्सर लोग जो है ना सेहतमंद रहने या वज़न घटाने की बात करते हुए नज़र आते हैं, और वो करते भी हैं, कोशिश करते भी अपने वज़न को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो काफ़ी हद तक करते भी हैं। इसलिए कुछ लोग आपने देखा होगा कि बताते हैं कि भाई हमने ये किया, हमारा वेट कम नहीं हुआ, हमने वो किया तो हमारा वेट कम नहीं, हम तो रोज़ वॉक करते हैं तो हमारा वेट कम नहीं होता, हम तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल का नया ट्रेंड चला है वो भी करते हैं, उसके बावजूद हमारा जो है ना वेट कम नहीं हो रहा है। तो आज बस हम जो है ना बात करेंगे इसी वज़न के बारे में, जो अक्सर कम नहीं हो पाता है चाहे लोग कितनी भी कोशिशें करें। तो थोड़े से तरीके जो हैं वो हमें मालूम है, वो हम आपको बताएंगे और आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इन तरीकों पर, ताकि आप भी अपने वेट को कंट्रोल में रख सकें।

तक की कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें जिन्हें रोज करना बेहद आसान है। ये बिना किसी मानसिक बोझ के आपकी भूख, डाइजेशन, आपका ब्लड शुगर और नींद को धीरे धीरे नेचुरल तरीके से सुधार देती है। तो बस आज इन्हीं कुछ छोटी छोटी लेकिन जरूरी आदतों के बारे में हम आपसे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है उठते ही खाने से पहले पानी पीना। जी हाँ, जब आप पूरी रात सोकर सुबह उठते हैं तो उस वक्त आप कम से कम 250 से 300 लीटर मिलीलीटर पानी जरूर पिए, ताकि रात का जो डिहाइड्रेशन है वो दूर हो जाए। इसके अलावा दोपहर और रात के खाने से 15 से 20 मिनट पहले एक गिलास पानी जरूर पिए। खाने से पहले पानी पीने से पेट थोड़ा भरा महसूस होता है और ये वजन घटाने में बहुत बहुत बहुत मददगार साबित भी होता है।

चलिए बढ़ते हैं अगली आदत के बारे में, जो होती है वजन घटाने में और भी ज़्यादा मददगार। जी हाँ, खाना जो है 20% तक, यानी 20% तक चबाकर खाएं। जब हम तेज़ी से, मतलब धीरे चबाकर खाएं, जब हम तेज़ी से खाना खाते हैं ना दोस्तों, तो पेट भर जाने का जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा खा चुके होते हैं। ना एक रिसर्च के मुताबिक धीरे धीरे चबाकर खाने वाले लोग तेज खाने वालों के मुकाबले कम कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करते हैं। और इसके साथ ही अगली तीसरी आदत ये है कि सुबह की धूप और सिर्फ 10 मिनट की जो वॉक है वो आपके वजन को कंट्रोल रखने में काफी मदद करती है। जी हाँ, सुबह की ताजी धूप हमारे शरीर के जो टेम्परेचर्स हैं, जो कैलोरीज हैं, उनको बर्न करने में जो है बहुत मददगार साबित होती है, जिससे रात में नींद अच्छी आती है। सुबह की धूप का सीधा संबंध जो है बेहतर नींद से होता है। जब नींद अच्छी होगी ना दोस्तों, बेवजह की क्रेविंग्स अपने आप ही कम होती जाएंगी। इसलिए सुबह कम से कम, नहीं तो 10 मिनट तो वॉक जरूर करें।

दोस्तों, जिस तरह हमारी सेहत बनाने में प्रोटीन और फाइबर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसी तरीके से अगर वजन घटाना है ना, तो प्रोटीन और फाइबर्स का इसमें भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जी हाँ, शाम के स्नैक्स में प्रोटीन और फाइबर्स से भरपूर जो है वो स्नैक्स आप चुने। और एक स्टडी के अनुसार प्रोटीन और प्लांट बेस्ड फूड बढ़ाने की सलाह दी जाती है, जिससे आपका जो वो वजन है वो कंट्रोल में रहे। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप भुना हुआ चना खा सकते हैं जब आपको थोड़ी सी क्रेविंग हो, भूख लगे और किसी भी चीज़ को खाने में। जब भुने हुए चने को भी ना बहुत तरीके से आप थोड़ा सा मसालेदार बना सकते हैं, लाइक थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लें, उसमें चाट मसाला या नमक डाल के उसको थोड़ा सा कुरकुरा कर लें और उस क्रंचीनेस के साथ उस चने को एंजॉय करें। छाछ भी आप पी सकते हैं जब आपको भूख लगती है, कंट्रोल नहीं होता है तो फल दही वगैरह भी आप खा सकते हैं। खीरा, मूंगफली और जूसी फ्रूट्स जो अब गर्मियों में खास तौर पर मिल रहे हैं, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ये जो आते हैं फ्रूट्स, आप इन्हें भी खाकर अपनी जो डाइट है जो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों,

स्टोरी को घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:42 और पूरे के पूरे 40 सेकंड्स आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतो भरी गुड मॉर्निंग और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। बात यहां चल रही है वजन कंट्रोल के बारे में कि इस भरी गर्मी में आप अपना वजन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी टिप्स जो है वो हमारे पास है जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। लंच और डिनर के बाद कम से कम 10 मिनट की वॉक जरूर करें। जी हाँ, खाने के तुरंत बाद की गई वॉक आपकी मसल्स को ग्लूकोज का इस्तेमाल करने में मदद करती है जिससे आपका ब्लड शुगर अचानक स्पाइक नहीं होता। एक रिसर्च के अनुसार दिन में किसी भी समय टहलने के मुकाबले खाने के तुरंत बाद टहलना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में कहीं ज्यादा असरदार होता है और साथ ही आपके वजन को बढ़ने से भी रोकता है।

वैसे एक बात बताऊं आपको, जब हम अपना वजन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो उस कोशिश में एक और जो है ना कारगर जो आदत है वो शामिल कर लीजिए। जी हाँ, हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है ना, इसमें जो प्ले हो रहे हैं गाने, उन गानों पर झूमते हुए एक्सरसाइज करें, जुम्बा करें, और साथ ही साथ अपना जो वजन है ना वो भी कंट्रोल करें।

चलिए गीत तो चलता रहेगा पर जरूरी बात जो है ना वो हम आपके साथ ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि बहुत जरूरी बात जो है वो यहाँ चल रही है वजन घटाने को लेकर। तो अगली जो आदत है ना दोस्तों वो है ये कि आप छोटी कटोरी और एक प्लेट का जो फॉर्मूला है ना उसे थोड़ा सा चेंज करें, उसमें थोड़े से परिवर्तन लाए। कहते हैं ना कि हम जितनी बड़ी प्लेट में खाना लेते हैं अक्सर उतना ही ज़्यादा खाना खाया जाता है, इसलिए कोशिश करें कि खाने की मात्रा कंट्रोल करने के लिए छोटी प्लेट और छोटी सी ही कटोरी का इस्तेमाल करें। प्लेट का आधा हिस्सा जो है वो सैलेड से फुलफिल हो और सब्जियों से भरा हुआ हो। साथ ही अगर आपको मीठा खाने का शौक है या कुछ तला भुना लाइक फ्राइज होते हैं, पापड़ होता है या कुछ भी वो खाने का शौक है तो उसके लिए आप छोटी कटोरी का इस्तेमाल करें ताकि जो आपके अंदर शरीर के अंदर जितनी भी कैलोरीज जाएं वो एक लिमिटेड एडिशन में जाएं और साथ ही साथ आपका जो कंट्रोल करना है वेट को वो भी कंट्रोल होता रहे और आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो भी पूरी होती रहे।

वक्त हो चुका है 7:49 और 15 सेकंड्स। अगली आदत की ओर चलते हैं, इससे पहले कि गाना जो है वो खत्म हो जाए, अभी तो स्टार्ट हुआ है हालांकि, बट क्योंकि हमारी बातें इतनी ज्यादा होती है पीछे से गाना खत्म हो जाता है लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं होती है। फिलहाल बताते हैं एक आदत के बारे में जिसे हम नीट कहते हैं, नीट वो वाला नहीं जिसकी चर्चा आजकल चल रही है, नीट होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। जी हाँ, दिन भर हल्की हल्की मूवमेंट जिन्हें हम नीट के नाम से जानते हैं, यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं, जैसे कि थर्मोजेनेसिस यानी खड़े होने का तरीका, चलना जैसे आप चलते हैं उससे भी वेट लॉस होता है, आप खड़े होते हैं उससे भी वेट लॉस होता है, सीढ़ियां चढ़ना जैसे दिन भर के सामान्य कामों में कैलोरीज जो है ना वो बर्न होती हैं दोस्तों। ये काम भले ही एक्सरसाइज ना हो लेकिन शरीर की काफी कैलोरीज को जो है ना मिनटों में खर्च करता है, इसलिए हर घंटे कम से कम 2 मिनट के लिए तो जरूर खड़े हों, पानी खुद लेने जाएं और फोन पर बात करते समय थोड़ा टहलें। जी हाँ, कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम टहलते वॉक करते हुए पूरा भी कर सकते हैं, या कभी कभी होता ना बहुत ज्यादा टाइम आप सिटिंग पोजीशन में रहते हैं तो उस पोजीशन को भी थोड़ा इम्प्रोवाइज करने के लिए आप वॉक कर सकते हैं। तो वॉकिंग इज कहते हैं ना कि बहुत एक अच्छा तरीका है अपने वेट लॉस को करने का।

दोस्तों अक्सर हमारे जो रूटीन में होती है ना, मील्स 3 से 4 के करीब शामिल होते हैं। लाइक फर्स्ट आपका ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, फिर शाम का जो स्नैक्स है वो हो गया, देन डिनर। लेकिन आप इनमें से किसी दो जो मील्स हैं इनमें फाइबर्स को जरूर बढ़ाएं। जी हाँ, डाइट में फाइबर्स शामिल करने से पेट लंबे समय तक जो है ना वो भरा हुआ फील करता है और डाइजेशन में जो है ना वो सुधार भी होता है। खाने में फाइबर की अच्छी मात्रा भूख को जो है ना वो कंट्रोल करती है, यानी आपकी स्टार्विंग कम करती है, क्रेविंग्स भी कम करती है, क्योंकि आप कम खाएंगे तो कम ही क्रेविंग्स भी आपको होंगी। इसीलिए थाली में सैलेड, हरी सब्जियां, स्प्राउट्स, चना या एक चम्मच अलसी, चिया सीड्स जरूर शामिल करें। ये जो फाइबर्स होते हैं ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो पेट है उसे फुल रखते हैं, आपको जल्दी से भूख नहीं लगने देते हैं।

चलिए जल्दी से हम आपको दो हमारी जो रह गई हैं आदत आपको बताने से वो जरा जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि वक्त जो है 7:54 और 40 सेकंड्स हो चुका है।

रात के खाने के बाद यानी देर रात को देर से खाना या आधी रात को स्नैकिंग करने से भी वजन जो है ना वो तेजी से बढ़ता है। तो डिनर के बाद जो है ना अपना किचन बिल्कुल बंद कर दें। रात के खाने के बाद किचन का काम खत्म और एंट्री बंद कर दें बिल्कुल। अगर बहुत तेजी से क्रेविंग हो तो केवल पानी या कोई हल्का सा हेल्दी ऑप्शन ही लें। रैंडम स्नैकिंग ना करें, इससे क्या होगा वजन कंट्रोल होने के बजाय और बढ़ जाएगा दोस्तों। और साथ ही अपने आखिरी टिप्स हमारी ये है कि सोने के रूटीन को थोड़ा सा फिक्स करें। नींद पूरी ना होने पर शरीर में ऐसे हार्मोन्स जो है ना वो बढ़ते हैं जो मीठा या जंक फूड खाने की इच्छा को और तीव्र करते हैं। इसलिए सोने और जागने का समय तय रखें। सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल फोन और टीवी सब बंद कर दें ताकि आपको सुकून की नींद आए और आपका जो मिशन वेट कंट्रोल है ना वो पूरा हो सके।

जी हाँ दोस्तों, ये थे वजन घटाने के कुछ छोटे लेकिन जरूरी आदतें जो आज हमने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आ भी रहा होगा, और ऐसी ही और ढेर सारी जानकारी से भरी बातें लेकर आपके साथ आपको दोबारा मिलूंगी इसी वादे के साथ कि जब अगली बार मैं आपसे मिलूं तो आपका जो वेट है वो काफी कंट्रोल में आ चुका होगा, और बस इसी तरीके से आप अपनी जर्नी को जारी रखिए, ठीक है। और बस अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए, स्वच्छता रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जल्दी आपसे मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय।

0: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर

0: बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल

0: अम्ल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,00,000 रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय

0: runs in Tri-Series opener in Dambulla. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की यकसर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। और क्रिकेट में दम्बोला में 3 मुल्कों की सीरीज के पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी ने इंडिया ए की श्रीलंका ए को 8 विकेट से हराने में मदद की। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम देते रहे हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 13 मई 1952 को एक मुंतखब वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर रहते हुए खिदमात अंजाम दी। पंडित नेहरू की एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात की मुद्दत 4398 दिन रही। 26 मई 2014 से आज यानी 10 जून 2026 तक वजीर आजम मोदी की लगातार मुद्दते कार 4399 दिन हो गई है। इस तरह वो भारत की तारीख में एक ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर भारत में जहां 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है और जहां जबान, सकाफत, मजहब और जुग्राफिये में गैर मामूली तनवु पाया जाता है, हुक्मरानी के पैमाने और पेचीदगी पर नजर डाली जाए तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये एक काबिल जिक्र हुसूलियाबी है। एक ऐसे वक्त जब बहुत से मुल्कों में सियासी उथल पुथल, हुकूमत में बार बार तब्दीलियां और सियासी गैर यकीनी पाई जाती है, भारत में क्यादत और हुक्मरानी में तसलसल पाया जाता है। दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत में आवाम की तरफ से लगातार 3 बार हिमायत दिए जाने से इस पर आवाम के एतमाद का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आजादाना तौर पर कराए गए आलमी जायजों में वजीर आजम मोदी को दुनिया के मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमाओं में लगातार शुमार किया जाता रहा है। उन्हें 30 से ज्यादा मुल्कों के सबसे ज्यादा शहरी एजाजात से भी नवाजा गया है। वजीर आजम मोदी का एक मामूली समाजी और इकतसादी पसमंजर से उठकर किसी मुंतखब आला तरीन ओहदे पर फाइज हो जाना, जबकि खानदानी तौर पर उनका कोई सियासी पसमंजर भी नहीं है, किसी करिश्मे से कम नहीं, और ये भारत जैसी किसी बड़ी जमहूरियत में ही मुमकिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुद्दते कार के दौरान तकरीबन 25 करोड़ भारतीय अफराद गुर्बत के दायरे से बाहर निकले और लोगों ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की तौसी, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की, फलाही खिदमात में बेहतरी और एक वसी बुनियाद वाली समाजी और इकतसादी तरक्की का नज़ारा किया। इस अरसे में भारत ने दुनिया की तेज तरीन तरक्की वाली बड़ी मईशत के तौर पर इस्तेहकाम हासिल किया। सरकर्दा मईशतों के साथ बड़े तजारती समझौते किए और वो आलमी मामलात पर मजीद मौसर आवाज़ बनकर उभरा, जिसमें तरक्की, टेक्नोलॉजी, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और आलमी जुनूब की तरजीहात भी शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: आलमी रहनुमाओं ने वजीर आजम मोदी को भारत का सबसे तवील

0: भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के शोभा अहम शोबों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसके मरकज में है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज हासिल किए हैं, जिसे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हेसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून एंटरप्रेन्योर ईशा पटेल ने घर पर खाने बनाने से एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर को शेयर किया। 60 लाख से ज्यादा नौजवान ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1.6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले अमरीकी फौज के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ओमान के साहिल से कुछ दूर गर्क करने के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफसरान ने बताया कि ये हेलीकॉप्टर ईरान के एक ड्रोन ने गिराया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदराबास और किशम जजीरे में धमाके की आवाजें सुनी गईं। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला में बैन अलाक्वामी स्टेडियम में तीन मुल्कों की ए टीमों की सीरीज के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका की टीम को 8 रन से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। पार्टी सदर नितिन नवीन ने कहा, भारत पहले मायूसी में डूबा हुआ था, आज एतमाद से भरा हुआ है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है, हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल एतमाद, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ। राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से नामजदगी मंसूख, कांग्रेस का अदालत जाने का फैसला। इसे भी अखबार ने अहमियत दी है। अखबार इनकलाब की एक और सुर्खी है, लद्दाख में जोजिला टनल तैयार, 2 घंटे का सफर 30 मिनट में होगा मुकम्मल। अखबारात ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियां।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाची हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा।

सुबह के ठीक 9:15 होने को है। 9:15 पर आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम साइंस मैगजीन।

वेलकम टू साइंस मैगजीन। साइंस कम्युनिकेशन ब्रिजेस द गैप बिटवीन साइंटिफिक रिसर्च एंड पब्लिक अंडरस्टैंडिंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आर गेस्ट विज्ञान पत्रिका। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। DRM 810 किलोहर्ट्ज पर।

0: ਹੈਲੋ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਇਦਾ ਬਾਨੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा मंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र और जनता के विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास पर आधारित एक नई पहचान दी है। एक दैनिक समाचार पत्र में लेख में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के विकास, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रूपये की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और श्रमिकों को बिना किसी रुकावट के रोजगार प्रदान करना है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मीनाब, बंदर अब्बास और केशन द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. United States Ambassador

श्रोताओं नमस्कार। कभी कभी दिन यूं ही बीत जाता है, लेकिन एक गीत अचानक कानों में पड़ जाए तो लगता है जैसे किसी ने यादों की अलमारी खोल दी हो। कोई धुन बचपन की दोपहर लौटा देता है।

तो कोई गीत उन लोगों की याद दिला देता है जिनसे मिले हुए बरसों बीत गए हों। बस इन्हीं एहसासों को साथ लेकर के आपका अपना कार्यक्रम आपकी पसंद हाजिर हूं मैं लेकर दुर्गेश सारस्वत। और अगले कुछ मिनट्स हम आपके साथ मिलकर सुनेंगे आपकी फरमाइशों के वो गीत जिन्हें आपने अपने दिल से चुना है। तो दोस्तों, चाय की चुस्की हो, सफर का साथी हो, या काम के बीच का छोटा सा विराम, इस संगीत भरी महफिल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत से। दोस्तों, इस गीत की फरमाइश की है इंदिरा नगर भवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन जी ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, कुछ गीतों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वे खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका असर देर तक दिल में बना रहता है। जिंदगी भी शायद ऐसी ही है। हर दिन नया होता है, लेकिन कुछ पल हमेशा हमारे साथ चल पड़ते हैं। संगीत उन्हीं पलों को आवाज देता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जो आप ही में से किसी ने चुना है।

दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान अपनी पसंद से पहचाना जाता है। यूं तो किसी को तेज रफ्तार धुनें पसंद होती हैं, तो किसी को सादगी से भरे नगमे। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि संगीत हर दिल में अपनी जगह बना लेता है। आपकी भेजी हुई फरमाइशें इस बात का सबूत हैं कि अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते और वे हर बार नए एहसास के साथ लौटते हैं। अब अगला मैसेज ले लेते हैं। ये हमें भेजा है बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया जी ने, और अर्पण फिल्म के गीत की फरमाइश की है। इसके अलावा हमें उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद जी ने भी संदेश भेजा है बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से। और हमें हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने भी आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ किसी भी गीत में शामिल करने के लिए संदेश भेजा है। हम कोशिश करते हैं आपके सब

धर्मी संदेशों को अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, लेकिन बहुत कम ऐसा हो पाता है कि हम सभी संदेशों को शामिल कर पाएं। अगला संदेश हमारे पास भेजा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, इन्होंने भी हमें किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की फरमाइश की है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं आप ही की फरमाइश से ये अगला गीत।

तो दोस्तों, कई बार हम किसी जगह को नहीं बल्कि हर उस जगह से जुड़े गीत को याद रखते हैं जहां आपका कोई ना कोई खास जुड़ा हो। एक धुन सुनते ही पूरा मंजर जो है आंखों के सामने आ जाता है। उम्मीद है अभी बजा गीत भी आपको किसी खूबसूरत पल तक ले आया होगा। और अब बढ़ते हैं आपकी अगली फरमाइश की तरफ। ये संदेश हमें भेजा है सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू, प्रतीक्षा संधू और मैक्स ने। इन्होंने किसी भी गीत के साथ खुद को शामिल करने की फरमाइश रखी है। इसके अलावा हमें अगला संदेश प्राप्त हुआ है। इन्होंने टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कालका से शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज जी ने कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ दिल में आज क्या है इस गीत की फरमाइश की है। हम कोशिश करेंगे आपके गीत को अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। इसके अलावा हमें सुनील पाठक जी ने मैसेज भेजा है, आदरणीय जी दुआओं में हमेशा याद रखना। इसके अलावा प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा ने छत्तीसगढ़ पलारी से हमें भेजा है संदेश। और दुर्गेश जी, आपकी आवाज़ अपनेपन का एहसास देती है, कृपया किसी भी फिल्म में हमें किसी भी फिल्म के गीत में हमें शामिल कीजिए। ये संदेश हमें भेजा है पुष्पेंद्र सिंह जी ने शिकोहाबाद से। इसके अलावा बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार ने, सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हमें भेज रहे हैं। इन्होंने भी ठोकर फिल्म से किसी भी गीत की फरमाइश की है। जी, आपकी फरमाइशों के अकॉर्डिंग हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले आइए सुनते हैं ये एक और गीत।

दोस्तों, कभी गौर किया है? कुछ लोग बातें कम करते हैं लेकिन अपने पसंदीदा गीतों से बहुत कुछ कह जाते हैं, और शायद इसीलिए आपकी भेजी हुई फरमाइशें सिर्फ गीत नहीं होती, उनमें छिपे होते हैं कई रिश्ते, कई यादें और ढेर सारे जज्बात। ऐसे ही हमें ये संदेश भेजा है संदीप मक्कड़ जी ने, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमाल सहानी, पिंगा वाला चौक, गुरैया जालंधर से। इन्होंने शराबी फिल्म के किसी भी सॉन्ग में खुद को शामिल करने की फरमाइश की है। और ये अगला मैसेज आया है दिल्ली बिहारी कॉलोनी शहादरा से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजत खुराना और केशु रुधान खुराना ने। होस्ट दुर्गेश सारस्वत जी, आप हमसे इतनी रूठी हुई क्यों हैं? कभी मेल नहीं लेती, अब जब आप आएंगी हम आपको नहीं सुनेंगे, अगर आज मेल नहीं ली तो। नाइस सॉन्ग पर्वत के पीछे, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी जी। इसके अलावा हमारे पास मैसेज भेजा है प्रजापति प्रतिभा शर्मा, अर्शप्रीत शर्मा, संदीप गोगलानी, जगमोहन जी ने, सुधीर नूतन,

इसके अलावा हमें संदेश भेजने वालों की श्रृंखला में लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हेना, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हर्षित खुशी गोस्वामी, इन्होंने भी हमें गीत के बोल ये रेशमी जुल्फें दो रास्ते फिल्म का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुनने की फरमाइश की है। जी हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। अपने पसंद का कोई भी गीत सुना दे गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा जी, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हमें संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें भेजा है किशन वंजनानी, नीलम स्वाति और तिशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। ये इज्जत का गीत ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं जी सुनवाने की हमारे पास इन्होंने फरमाइश की है। देखिए श्रोताओं, हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं आपके गीतों को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की और इसी तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आप ही की फरमाइश पे ये प्यारा सा एक और गीत।

जी बिल्कुल ठीक बात है कि हमारा दिल भी आप लोगों के संदेशों के बिना इस कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं लगता। कभी कभी कोई पुराना गीत ये एहसास दिला देता है कि वक्त भले ही बदल गया हो, लेकिन कुछ एहसास आज भी वैसे ही हैं। और ये संगीत की खूबसूरती है कि जो हर दौर में अपना रंग बनाए रखता है। अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके संदेश ले लेते हैं। ये संदेश हमें मिला है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित रितु मुकेश जगताप जी ने हमें ये मैसेज भेजा है और फरमाइश की है कारवां फिल्म के कितना प्यारा वादा है गीत की। इसके अलावा अगला फरमाइश हमारे पास आई है, सुदर्शन मुखी जी ने अपने प्रोग्राम में किसी भी गीत में शामिल करने की हमें दरखास्त की है। इसके अलावा हमारे पास अगला मैसेज आया है प्रसार भारती पर राजू अग्रवाल का प्रियांशी चरणदास चौधरी वाजी का हमारे पास ये संदेश आया है। सतीश अनेजा जी हमें चंडीगढ़ सिटी, बिमला अनेजा जी चंडीगढ़ सिटी से हमें संदेश भेज रहे हैं। कृपया हमारी ईमेल शामिल कर दीजिए, लगातार प्रोग्राम को शिद्दत से सुन रहे हैं, अच्छे गीत सुनने को मिल रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस संदेश के लिए। इसके अलावा हमारे पास संदेश भेजा है गुलाब दास मानिकपुरी जी, राजा दास मानिकपुरी, उज्ज्वल दास मानिकपुरी जी ने। दुर्गेश जी हमारा भी संदेश शामिल कीजिए किसी भी फिल्म में। जी किसी भी फिल्म के किसी भी गीत में हम आपको ज़रूर शामिल कर लेंगे, आपका संदेश हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। इसके अलावा हमें संदेश भेजा है नीतू मल्होत्रा जी ने। इन्होंने खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का जी ने शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए संदेश ये भेजा है। दोस्तों कार्यक्रम को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे आपके संदेशों के साथ, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है आपकी फरमाइश।

दोस्तों, देखते ही देखते आज की ये महफिल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। उम्मीद है आपके साथ बिताया हुआ ये लगभग 1 घंटा गीतों के साथ साथ अच्छी यादें भी छोड़ गया होगा। आपकी फरमाइशें, आपका अपनापन इस कार्यक्रम की असली पहचान है। चलते चलते कुछ संदेश और ले लेते हैं। लिखते हैं, दीदी जी गुड मॉर्निंग। एनी फिल्म मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी ने हमें ये संदेश भेजा है। इसके अलावा हमें सुंदर नगर बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तेश देवांगन जी ने भी हमें संदेश भेजा है। और गुलाम साबे राहे मेरा जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। दोस्तों, आपके संदेश हमें लगातार मिलते रहते हैं और ऐसी ही श्रेणी में अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जी भीम जैन, सरदना मेरठ से, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन हमें भेज रहे हैं संदेश। आपके संदेशों को हम कोशिश करते हैं अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। और चलते चलते आइए सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और मैं दुर्गेश सरस्वती से गीत के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी नए गीतों, नए संदेशों और नई बातों के साथ इस वादे के साथ। चलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहिए, अपनों का साथ निभाइए और संगीत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में

0: उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के प्रति उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टि कोण पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर 14वीं कुलतारांता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक क्षेत्रीय स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के विरोध में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जो होर्मुज जल डमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है जो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करता रहता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. Union ministers including Amit Shah, Dr. S. Jayashankar, Piyush Goyal, Nirmala Sitharaman and Shivraj Singh Chauhan, among others, have wished Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest continuous serving elected Prime Minister of India. In a social media post, Home Minister Amit Shah said that these 12 years of Prime Minister Modi have been about restoring India's pride, cultural renaissance and freeing the nation from the mentality of servitude. Dr. Jayashankar noted that this achievement reflects the enduring trust and confidence that the people of India placed in PM Modi's leadership, vision and commitment to national development. Ms. Sitharaman added that during this period,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। ग्यारह बज के 30 मिनट हुए हैं, आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कार्यक्रम सुरमंजरी। कार्यक्रम सुरमंजरी में हम आपको सुनवाएंगे विदुषी शाश्वती मंडल का राग जोगिया।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुरमंजरी के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जयश्री पाटनकर का राग बहादुरी तोड़ी। और अब समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित

0: प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on the 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 64. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. BJP National President Nitin Naveen has said that Prime Minister Narendra Modi has written a new history across the entire country. Talking to reporters after offering prayers at a temple in New Delhi, he said that under this remarkable leadership, 25 crore families have been lifted out of poverty. Mr. Naveen said, over the past 12 years, the Prime Minister has worked for the welfare and development of every section of society, with a particular focus on women's empowerment. Union ministers including Amit Shah, Dr. S. Jayashankar, Piyush Goyal, Nirmala Sitharaman and Shivraj Singh Chauhan, among others, have wished Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest continuous serving elected Prime Minister of India. In a social media post, Home Minister Amit Shah said that these 12 years of Prime Minister Modi have been about restoring India's pride, cultural renaissance and freeing the nation from the mentality of servitude. Dr. Jayashankar noted that this achievement reflects the enduring trust and confidence that the people of India placed in PM Modi's leadership, vision and commitment to national development. Ms. Sitharaman added that during this period, the NDA government under PM Modi has delivered bold reforms and has implemented several initiatives with unprecedented pace and scale. She emphasized that Prime Minister Modi

घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर।

और दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता बेहद पुराना है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखें, जिससे आप जुड़े रहें अपने मन पसंद शो घर आंगन के साथ और खूब ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक मीठा सा प्यारा सा गीत आपकी नजर।

दोस्तों, अभी हमने बात की कि हम बहुत सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। आज हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, जो हर साल 10 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों के बीच शांतिपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना है। आज की दुनिया में जहाँ अलग अलग विचार, संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ समझ और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है। संवाद से ही हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं और पूर्वाग्रहों को दूर कर सकते हैं, और हाँ, एक बेहतर शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम सभी संकल्प करें कि हम सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे।

हम बात कर रहे हैं बहुत सारी जानकारियों की, तो जानकारी से जुड़े रहिए और सुनते रहिए घर आंगन का शो, यानी मेरे साथ सिमरन कौर के साथ। और अब बात करते हैं योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, योग का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये योग। और ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक समग्र विज्ञान है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हमें शांति, संतुलन और ऊर्जा प्रदान करता है। शारीरिक रूप से योग हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, रक्त संचार सुधारता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। नियमित योगासन से वजन नियंत्रित रहता है, ब्लड प्रेशर और शुगर का स्तर संतुलित रहता है। मानसिक रूप से योग तनाव और चिंता को कम करता है। प्राणायाम और ध्यान से हमारा मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है। भावात्मक रूप से हम ज्यादा संतुलित और सकारात्मक रहने लगते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से योग हमें अपने आप से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि सुख दुख बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। योग के माध्यम से हम अपनी सच्ची प्रकृति को जान पाते हैं। योग कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। बस 20-30 मिनट रोज देने से आपका पूरा दिन जो है वो बदल सकता है। तो आइए आज से ही योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ खुशहाल जीवन जिएं।

और अब बात करते हैं पद्म विभूषण से अलंकृत डॉक्टर एन राजम की। हाल ही में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की। इसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया डॉक्टर एन राजम, जो कि देश की मशहूर वायलिन वादक हैं। डॉक्टर एन राजम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध वायलिन वादिका हैं। उनका जन्म 1938 में हुआ था और मात्र 3-4 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था और 9 साल की उम्र तक वो प्रोफेशनल परफॉर्मर बन चुकी थीं। उन्होंने वायलिन पर गायकी अंग यानी ख्याल गायकी की शैली को बहुत खूबसूरती से अपनाया। इससे पहले वायलिन को मुख्य रूप से साथ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन्होंने इसे सोलो वाद्य के रूप में स्थापित किया। उनकी वायलिन गाती हुई लगती है, इसीलिए उन्हें सिंगिंग यानी वायलिन भी कहा जाता है। और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डीन के रूप में बहुत लंबे समय तक की सेवा की। पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण और अब पद्म विभूषण, तीनों ही सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। और ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर एन राजम की उम्र अब 88 साल के आसपास है, लेकिन उनका योगदान आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करता है।

और दोस्तों बात करते हैं, खुशी जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है, यानी हंसने का हुनर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में ऐसी परेशानियों से अधिकांश लोग घिरे हुए रहते हैं। ये स्थिति हैप्पी हार्मोन डोपामाइन की कमी के कारण होती है। और न्यूरो साइंटिस्ट ने डोपामाइन रिसेट करने का एक तरीका बताया है, जिसकी मदद से आप 24 घंटे में ही असर देख सकते हैं, जिससे आपकी फीलिंग्स पर गहरा असर होता है। धीरे धीरे आपकी मानसिक सेहत में सुधार होने लगता है। और आज के समय में लोगों को उदासी का सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्मार्टफोन और स्क्रीन टाइम। हालांकि लोगों को लगता है इससे उन्हें खुशी मिल रही है, लेकिन असल में जिंदगी का सुकून छीन रहे हैं। अब लोग खाने से लेकर बिस्तर तक, लेटने के दौरान, यहाँ तक कि बाथरूम में भी मोबाइल यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया के साथ ही व्हाट्सएप, ईमेल पर इस समय नजरें रहती हैं, कि जो कि सेहत पर बुरा असर डालती हैं। खाना खाते समय किसी भी प्रकार की स्क्रीन ना देखें, और इसमें आपके दिन भर के मील्स भी शामिल हैं। हालांकि इसमें कुछ लोगों को परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन फिर भी टीवी मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। और ख़ास तौर पर डोपामाइन को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी आदतों को अपनाइए और बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। यानी सबसे पहले तो बात करते हैं कि किन आदतों को अपनाना चाहिए जिससे कि हमें बहुत ढेर सारी खुशी मिले। जैसे अपने दोस्तों से मिलते रहें और ख़ास तौर पर उनसे बातचीत करें, क्योंकि उनके सुख दुख में शामिल हों। तो जब दो लोग मिलते हैं, जब दो लोग बातें साझा करते हैं, तो एक दूसरों की भावनाएं उनसे जुड़ती हैं। अपने शौक को पूरा ध्यान दें, जैसे किसी को संगीत का शौक है, घूमने का है, पेंटिंग करने का है, उसे भी आप बनाए रखें। और इसके अलावा कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि समाज में मिलकर रहने की आदत भी आपको खुशी प्रदान करेगी। और इसके अलावा आप घर से बाहर निकलकर ताज़ी धूप लें, हवा का एहसास करें, इससे डोपामाइन रिसेट होने में मदद मिलती है। तो इन सब बातों पर आप विचार करें। और इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि जब सोने से पहले कभी भी स्क्रीन यूज ना करें, क्योंकि इससे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड शामिल हैं। आप सोने से पहले गहरी सांस लें और बिना किसी चिंता या विचार के सोने की कोशिश करें, तब आपको लगेगा कि आप खुशी के एहसास की तरफ बढ़ रहे हैं।

खुशबू की तरह छाइए, लेकिन जरा आंख बंद करके सोचिए। सुबह चिड़ियों की चहचहाट, साफ हवा, ठंडा पानी अच्छा लगता है ना? पर आज हकीकत क्या है, गर्मी बढ़ रही है, नदियां सूख रही हैं। और दोस्तों, पर्यावरण की बात करते हैं, क्योंकि हमारी धरती हमें सब कुछ देती है, हवा, पानी, खाना और जीवन। लेकिन हम क्या दे रहे हैं उसे? रोज पेड़ काट रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं और कार्बन बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें कुछ आदतों को सुधारना पड़ेगा। घर से निकले तो कपड़े का थैला ले लीजिए, पॉलिथीन को ना कहिए, और एक थैला साल भर 300 पॉलिथीन बचाता है। नल खुला छोड़ कर ब्रश नहीं करिए, पानी की एक एक बूंद कीमती है। बिजली का स्विच ऑफ करना मत भूलिए, एसी 24 की जगह 26 पर चलाइए, बिजली भी बचेगी और बिल भी। गाड़ी रोज निकालने की जगह हफ्ते में एक दिन साइकिल या पैदल चलाइए, और पैदल से चलिए और सेहत भी बनेगी, धुआं भी कम होगा। और हाँ, गर्मी में एक पेड़ जरूर लगाएं, नीम, पीपल, जामुन, जो मिले। पेड़ एसी से बेहतर ठंडक देता है, और वो भी मुफ्त में। तो याद रखिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इसी पर टिका है। आइए आज से ही पर्यावरण की रक्षा करें, और एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि धरती की बस यही पुकार, हरा भरा हो संसार, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, और चलिए पर्यावरण के ही अनुकूल।

और अब बात करते हैं कुछ अपनी बहनों के लिए, अपनी सखियों के लिए, अपनी सहेलियों के लिए जो कि घर आंगन सुन रही हैं। उनकी एक अच्छी न्यूज़ उनको सुनाना चाहते हैं। बड़ी देर से सोच रही हूँ कब सुनाऊँ कब सुनाऊँ, तो चलिए सुनाती हूँ आपको अच्छी सी न्यूज़ एक। और कि महिलाओं के लिए पिंक कार्ड के लिए DTC की अपील शुरू कर दी है। दिल्ली में 2.35 लाख महिलाओं ने अब तक कार्ड नहीं बनवाया है और DTC की अपील है कि वो जल्द आवेदन कर ले, क्योंकि दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा लाभ उठाने के लिए 2,35,000 महिलाओं का पिंक कार्ड बनने के लिए अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी तक 5,63,000 तक ही पिंक कार्ड बनवाने वाली महिलाओं की संख्या पहुंच चुकी है। और एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में 8 लाख से करीब महिलाएं प्रतिदिन बसों में सफर करती हैं, जो अपने घर से काम पर जाने के लिए बस पकड़ती हैं, घर लौटने के लिए फिर बसों का उपयोग करती हैं। तो ऐसे में 14 लाख से लेकर 16 लाख तक प्रतिदिन पिंक टिकट का उपयोग होता है और महिलाओं को पूरी तरह से पिंक पास बनाए जाने का काम पूरा होने के बाद ही पिंक टिकट बंद कर दी जाएगी। और इसके अलावा कुछ हफ्ते पहले DTC के पास केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही थी, लेकिन मुफ्त यात्रा के लिए अनिवार्य इस कार्ड को बनवाने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आवेदन किया भी है। हालांकि अब अधिकांश पात्र महिलाओं के कार्ड बन चुके हैं, जिससे केंद्रों पर भीड़ कम होने लगी है, लेकिन DTC प्रशासन ने उन महिलाओं से अनुरोध किया है जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। तो पिंक कार्ड के बिना महिलाओं

को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा और ये स्पष्ट किया है कि भविष्य में बिना कार्ड के यात्रा करने वाली महिलाओं को टिकट लेना अनिवार्य होगा। इसीलिए असुविधा से बचने के लिए जल्द ही पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें।

और अब हम ये कहना चाहते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

और अब हम यही कहना चाहते कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए आप रहें खुश, स्वस्थ और मस्त। सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक

निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, यदि आप हमें हमसे मेल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। पता है ipradiodelhi@gmail.com। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म मशहूर गुजराती उपन्यासकार गोवर्धन माधवम त्रिपाठी के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन किया था गोविंद सरैया ने और मुख्य भूमिकाओं में थी नूतन, जिन्होंने कुमुद का किरदार निभाया, और अभिनेता मनीष यानी सरस्वती चंद के रोल में थे। ये फिल्म एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि त्याग, संवेदना और भारतीय संस्कारों का एक खूबसूरत दस्तावेज बन गई। कहानी है सरस्वती चंद और कुमुद की, दो लोग जिनकी सगाई होती है और शुरू होती है प्रेम कहानी।

मेल्स की तरफ। ये ईमेल हमें मिला है नीतीश कुमार तनुजा देवांगन का, और आपके साथ हैं ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन, पाहंदा पालारी छत्तीसगढ़ से। और ये लिख रहे हैं कि ये कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है और उसके लिए उन्होंने धन्यवाद बोला है। तो तनुजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं। आप हैं फाजिल्का पंजाब से, भूषण गेड़ा, विशु खेड़ा और विशाल खेड़ा। और ये मैसेज मिला है गुरमीत सिंह मीता का साउथ एक्सटेंशन से। आप ही के साथ हैं शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल। और ये मैसेज हमें मिला है अजीत भावसार जी का, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं बताया है। और ये लिख रहे हैं कि आज की फिल्म सरस्वती चंद के हीरो मनीष, जिनका असली नाम आशीष कुमार था, वे बंगाली भाषा बोलते थे, हिंदी नहीं आती थी। पूरी फिल्म में उनके डायलॉग डब किए गए थे। डबिंग करने वाले विविध भारती रेडियो के आरजे ब्रिजभूषण साहनी ने अपनी आवाज दी थी। तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है अजीत जी कि आपने, ये जानकारी हमें भी नहीं मालूम थी और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज हमें मिला है संजय साहू कोटिया कला से, और ये लिख रहे हैं कि सरस्वती चंद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली और पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, हरिका और हार्दिक वंश बत्ता का। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योतिरानी, कुलमंत कौर, मनु, और इन्होंने अपनी जगह का नाम बताया है पटियाला से। आप हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधि गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघव गुप्ता का। तो अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कुमुद और सरस्वती चंद की प्रेम कहानी शुरू होती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दोनों का मिलन अधूरा रह जाता है। कुमुद का विवाह कहीं और हो जाता है और यहीं से शुरू होती है भावनाओं, जिम्मेदारियों और त्याग की यात्रा। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि उस दौर की सामाजिक मूल्यों का आईना थी। कुमुद का विवाह एक अमीर प्रमोद यानी रमेश देव से हो जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि प्रमोद एक अय्याश और शराबी है, फिर भी वो मुस्कुराकर अपना गम छुपाने की कोशिश करती है।

आपको बता दें कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जब ये फिल्म बनने की तैयारी शुरू हुई थी तब शुरुआती दौर में अभिनेता संजीव कुमार को लॉन्च करने की चर्चा थी, लेकिन निर्माण में देरी हुई और बाद में फिल्म की कास्ट बदल गई। ये बात उस समय काफी चर्चा में रही। कुमुद के किरदार में नूतन ने जो भावनात्मक गहराई दिखाई उसे हिंदी सिनेमा की यादगार प्रस्तुतियों में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह भी कही जाती है कि ये उनकी अंतिम प्रमुख रोमांटिक नायिका वाली फिल्मों में से एक मानी जाती है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है सरस्वती चंद और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। और अब बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है हीरामणि वर्मा का दत्रे की भाटापारा से। आप हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से, वडेंगखेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप हैं धर्मेंद्र छिपा, भोपालगढ़ राजस्थान से आपके साथ हैं कपिल छिपा, पूजा परिहार। और इन्होंने लिखा है कि इसमें अभिनय किया था नूतन और मनीष ने, गीतकार इंदिवर के लिखे गीतों को संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने और गीतों को आवाज दी थी लता मंगेशकर, मुकेश और मुबारक बेगम ने। आपने इस फिल्म के बारे में बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से सुनाए और नगमे भी सुनाए। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए इन्होंने हमें धन्यवाद बोला है। तो धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं। और ये मैसेज मिला है गांव नथाना पंजाब से। भेजने वाले हैं हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी और सीता और गीता। आप हैं डीबी राणा, नेहरू विहार दिल्ली से। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। और ये मैसेज हमें मिला है प्रेम सागर शुभलता का फ्रॉम अमृतसर से। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। और हमसे जुड़े हैं जलालाबाद बेस से पूनम और सुरेश। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। नलेश्वर नगर नरबेल महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हैं पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहरेकर। तो श्रोताओं, अब बढ़ते हैं आगे। अगर सरस्वती चंद की बात है और संगीत का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखे थे इंदिवर ने। इस फिल्म के संगीत को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला और वो गीत चंदन सा बदन, फूल तुम्हें भेजा है जैसे गीत आज भी सुनने वालों के दिल में बसे हुए हैं। एक रोचक बात यह भी है कि फूल तुम्हें भेजा है खत में गीत की प्रेरणा एक प्रशंसक द्वारा भेजे गए फूल वाले पत्र से जुड़ी थी।

इस गीत से जुड़ा ही एक बहुत ही अच्छा सा हमें मैसेज गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से भेजा है पब्लिश पवार जी ने, और लिख रहे हैं कि बिना शब्दों वाला अनोखा प्रेम पत्र फिल्म का एक दृश्य है और इसमें इस्तेमाल किया गया तरीका उस दौर में बहुत लोकप्रिय और अनोखा माना गया था। फिल्म में जब सरस्वती चंद कुमुद को अपना पहला प्रेम पत्र भेजता है तो वो कागज पूरी तरह से कोरा होता है जिसके अंदर बस एक फूल लिपटा होता है। ये इस बात का प्रतीक था कि उनका प्यार शब्दों का मोहताज नहीं और वो फूल भेजने वाले के दिल को दर्शाता है। तो बहुत ही सुंदर सा मैसेज बबलेश जी ने भेजा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज हमें मिला है नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार मनोज सुधार का, और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और आप हैं दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता देवी और रुद्र वर्मा। नाहर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। आप हैं नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन दास लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन। और आप हैं मेरठ से दिग्दर्शन और कविता कौर। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को इतने दिल से सुना। और इस फिल्म को केवल दर्शकों का प्यार नहीं मिला बल्कि सम्मान भी मिला। इसे राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए कल्याण जी आनंद जी को पुरस्कार मिला और श्वेत श्याम छायांकन के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही फिल्मफेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड एस अली राजा को मिला। कुल मिलाकर इस फिल्म की कहानी और अभिनय सबने पसंद किया। कुछ फिल्में समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे यादों का हिस्सा बन जाती हैं। सरस्वती चंद एक ऐसी ही फिल्म है जहां प्रेम शोर नहीं करता, बस मन में उतर जाता है।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे यानी अर्चना गोयल को अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म की कहानी, उसके संगीत और अनकही किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अब से रोज दिन में 3 बजे से आप सुनेंगे गोल्डन एरा के पुराने गीत, तो सुनना ना भूलिएगा। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:40 होने को है, आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। इस बुलेटिन नाल मैं शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होने ते अते प्रधानमंत्री दे सब तो लंबे कार्यकाल की प्राप्ति के संबंध में अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ NDA की नवी दिल्ली च बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनन ते देश विदेश तो वधाई देने का सिलसिला जारी। सरकार वालों राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों लिए 95,692 करोड़ के अंतरिम बजट अलॉटमेंट की तजवीज़। केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा देश च CNG की कोई कमी नहीं है। अते विदेश मंत्री डॉ अजय शंकर अज तो बुल्गारिया अते फिनलैंड दे 2 दिना सरकारी दौरे ते। खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ की अज नवी दिल्ली च मीटिंग होगी। इस विच सरकार दे 12 साल पूरे होण अते भारत दे सब तो लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री वजों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे कार्यकाल दा जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दे चोटी दे नेता ते NDA गठजोड़ दियां सारियां भाईवाल पार्टियां दे नेतावां दी मीटिंग च शामिल होने की उम्मीद है। सारे 22 NDA शासित राज्यों अते केंद्र शासित प्रदेशों दे मुख्यमंत्री ते उप मुख्यमंत्रियां सारियां गठजोड़ पार्टियां दे नेता भी मौजूद रहणगे। मीटिंग विच वख-वख राष्ट्रीय विकास प्रोग्रामां, बुनियादी ढांचे दे प्रोग्रामां अते 2047 दे विकसित भारत दी सरकार दे दृष्टिकोण ते चर्चा कीती जावेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अज एक मता पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं लगातार 2 बार सेवा निभाउण वाले सब तो लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनन दी वधाई दित्ती है। नवी दिल्ली च कैबिनेट मीटिंग दौरान मैंबरां ने प्रधानमंत्री मोदी प्रति अपना सत्कार जाहिर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री नरेंद्र मोदी नूं देश दे सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनन ते वधाई दित्ती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच राष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास इक मौका लोगों के उन्होंने अगवाई च अटुट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल दौरान शासन, आर्थिक खुशहाली ते समाजिक तब्दीली के खेतर च तरक्की हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार दी व्यापक भलाई पहलकदमियां जमीनी पद्धर ते लोगों तक लाभ पहुंचा रही ने। उधर विदेश मंत्री डॉ अजय शंकर, वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ते खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं इस मौके वधाई दित्ती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच डॉ अजय शंकर ने कहा कि प्राप्ति प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई, दृष्टि अते राष्ट्र विकास प्रति वचनबद्धता का प्रतीक है। श्री गोयल ने कहा कि पिछले 12 सालों च प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई हेठ किए गए सुधारा ने भारत के विकास नूं मुड़ आकार दित्ता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अधीन शुरू की गई हर वड्डी पहलकदमी के फायदे किसानों तो लैके उद्यमियों, औरतों तो लैके छोटे ते मध्य वर्ग तक, नौजवानों तो लैके मध्य वर्ग तक।

0: पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वातावरण जंगलात ते जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, सभ्याचारक ते सैर सपाटा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ते कानून ते न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी प्रधानमंत्री नूं वधाई दित्ती है। इस दौरान लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह प्राप्ति भारतीय लोकतंत्र ते जनतक विश्वास की ताकत का प्रतीक है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सब तो लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री दे सिलसिले च अज नवी दिल्ली च एक मंदिर विच पूजा की थी। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दे हुनर धीरज ते दृढ़ता नाल देश का मार्ग दर्शन होया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ते दिल्ली सरकार के होरना मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब तो लंबे समय लगातार चुने गए प्रधानमंत्री रहने के सिलसिले च अज नवी दिल्ली के एक मंदिर विच पूजा की थी। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई ने देश विच इतिहास रचिआ। भारत विच अमरीका दे राजदूत सरजियो गौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं इस मौके ते वधाई दित्ती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री गौर ने कहा कि प्राप्ति प्रधानमंत्री मोदी दी दहाकियां दी समर्पित जनतक सेवा ते अगवाई दा एक प्रमाण है। ए खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुण रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, अते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। भारत ने पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरअंदेसी अगवाई हेठ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ते सबका प्रयास के सिद्धांतों राही संचालित एक शानदार तब्दीली की है। इस समय दौरान मोदी सरकार ने गरीबा किसाना औरतों नौजवानों की भलाई ते सशक्तिकरण लिए कई प्रमुख पहलकदमियां भी कीतियां ने। आकाशवाणी खबरां वल्लों तुहाडे लई पिछले 12 साल मुख खेतरां च सरकार दीआं कोशिशां ते एक विशेष लड़ी पेश की जा रही है। अज असीं नौजवानों के सशक्तिकरण लिए सरकार वल्लों चुके गए कदमां बारे गल करांगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 सालां विच सरकार ने देश दी युवा शक्ति ते ध्यान केंद्रित कीता है। भारत दी अगली पीढ़ी ते सुधार हुण एक सुधार एक्सप्रेस विच बदल गए ने, जिस दे केंद्र विच युवा शक्ति है। 12 करोड़ तो वध नवे उद्यमियां ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दे कर्जे प्राप्त कीते ने। सरकार नौजवानां नूं रोजगार ते आत्म निर्भरता नूं अग्गे वधाउण अते उन्हां नूं नौकरी लब्भण वाली नहीं सगों नौकरियां पैदा करन वाले बनाउण लई मजबूत बना रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तहत 60 लाख तो वध नौजवानां नूं लाभ पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तहत 1.6 करोड़ तो वध नौजवानों नूं सिखलाई दित्ती गई है। वधदी हुनरमंद प्रतिभा मेक इन इंडिया पहलकदमी नूं शक्ति दे रही है। रोजगार मेलिया राही 12 लाख नियुक्ति पत्र वंडे गए ते रोजगार दे सुपनिआं नूं हकीकत विच बदलिया गया। 2 लाख तो वध स्टार्टअप ने 23 लाख तो वध नौकरियां दे मौके पैदा कीते अते स्टार्टअप इकोसिस्टम नूं एक मजबूत नींव प्रदान कीती। 2 लाख तो वध स्टार्टअप ने 23 लाख तो वध नौकरियां दे मौके पैदा कीते अते विद्यार्थियों वल्लों विकसित कीते 16 लाख नवीनता प्रोजेक्टां ने स्टार्टअप इकोसिस्टम नूं एक मजबूत नींव प्रदान कीती। सरकार दी हमायत नाल देश दी युवा शक्ति भारत लई एक नवी सवेर लिया रही है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल मैं सरबजीत कौर, आकाशवाणी खबरां जलंधर।
0: सरकार ने राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां लई 95,692 करोड़ दे अंतरिम बजट अलाटमेंट दी तजवीज़ रखी है, जिस नाल मनरेगा तो विकसित भारत रोजगार गारंटी ते आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विच सुचारू तब्दीली नूं यकीनी बनाया जा सकेगा। ए एक्ट 1 जुलाई तो देश भर च लागू होगा। विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवी दिल्ली च राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे पेंडू विकास मंत्रियों नाल एक वर्चुअल मीटिंग तो बाद इसका ऐलान किया।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश च सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरानू पाइप राही कुदरती गैस पीएनजी की सप्लाई वधा रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनैक्शनां नू पीएनजी कनैक्शनां च बदलन दीआं कोशिशां कीतीआं जा रही ने। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत जानकारी फैला के आलमी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे ने। श्री पुरी ने कहा कि सरकार अजिहां गतिविधियां खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज तो बुल्गारिया ते फिनलैंड दे दोधना सरकारी दौरे ते ने। विदेश मंत्रालय ने दस्सिया कि बुल्गारिया दी अपनी यात्रा दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया दे चोटी दे नेतावां ते विदेश मंत्री नाल मुलाकात करनगे अते विचार वटांदरा करनगे। अफगानिस्तान दे कोनार कोस्ट अते पतिका प्रांतां विच पाकिस्तानी फौज दे हवाई हमले

0: ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ੇਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7.8 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ 'ਚ 37 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲਗਭਗ 500 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 95,692 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबीना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबियों और सरकार के 12 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए एनडीए की मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं। मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका और ईरान के फोर्सेज ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और अमरीका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमरीका के और 1 इटली का होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से पहली बार हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वजीर आजम के तौर पर पंडित नेहरू का दौर हुकूमत 4398 दिन का था, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर अब तक 4399 दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह वो भारत की तारीख में सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं। मरकजी काबीना ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तवील तरीन मुसलसल मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने की सताइश करते हुए एक करारदाद पास की। आज कौमी राजधानी में मरकजी काबीना की मीटिंग के दौरान काबीना के मेम्बरान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खड़े होकर इस्तकबाल भी किया। इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी दे रहे हैं।
2: जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन, ये सारे के सारे फैसले हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनाने का काम करेंगे, जो भारत को लगातार सक्षम बनाने में इनका योगदान रहेगा। धन्यवाद साथियों।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से खिदमत अंजाम देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि यह तारीखी मौका उनकी क्यादत में मुल्क के अवाम के एतमाद और भरोसे की अक्कासी करता है। मरकजी वजरा अमित शाह, डॉ एस जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और दिगर वजरा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके आजाद भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम बनने पर नेक ख्वाहिशात पेश की। بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین، دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا اور دلی کے وزیروں نے

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने के मौके पर आज नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामानिगारों से बात करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत ने पूरे मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी की शानदार क्यादत में 25 करोड़ कुंभों को गुर्बत से बाहर लाया गया है। जनाब नितिन नबीन ने यह भी कहा कि पिछले 12 साल के दौरान वजीर आजम ने खवातीन को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए माशरे के हर तबके की बहबूद और तरक्की के लिए काम किया है।
1: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए वे सबसे बड़ा विषय। आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने के मौके पर नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने शानदार महारत इत्मीनान और पुख्ताजम के साथ मुल्क की रहनुमाई की है और मुल्क का निजाम चलाया है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने मुल्क के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने और विकसित भारत के नजरिए की तकमील का अहद कर रखा है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस तो संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: आज नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की एक मीटिंग मुनाकिद होगी। ये मीटिंग हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम मोदी के भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम बनने का जश्न मनाने के लिए मुनाकिद की जा रही है। एनडीए की मीटिंग में इत्तेहाद की हुक्मरानी वाली तमाम 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वजराय आला और नायब वजराय आला और तमाम इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और मोदी हुकूमत के 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील के विजन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पक्तिका सूबों में पाकिस्तानी फौज के फिजाई हमलों में कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। एक बयान में तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की मजम्मत की और कहा कि कल रात सिविलियन घरों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म और जारहियत की हरकत करार दिया। गुज़श्ता चंद माह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता रहा है और दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुल्क में सीएनजी की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस पीएनजी की सप्लाई का दायरा बढ़ा रही है और एलपीजी कनेक्शन को पीएनजी कनेक्शन में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: ईरान के पासदान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने अब नए हुरमुज के अतराफ अमरीकी हमलों के जवाब में आज खलीज के खित्ते में उर्दुन में अमरीकी फौज के एक ठिकाने और 21 दीगर ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अब नए हुरमुज में बंदरगाही शहर सिरिक और किस्म जजीरे पर हमला किया गया है। उधर उर्दुन के मुसलह अफवाज ने हमले की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने अल अजराक की तरफ से ईरान से दागे गए 5 मिसाइलों को मार गिराया गया। उर्दुन की फौज ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम के जरिए ईरान के इलाके से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया गया। अमेरिका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमेरिका के और 1 इटली का होगा। यह मिशन अगले साल के अवाखिर में अंजाम दिए जाने का प्रोग्राम है। इसके तहत पहली मरतबा मदार में स्पेस एक्स और ब्लू ऑर्गिन से चांद पर लैंडर्स का टेस्ट किया जाएगा। دفاعی ساز و سامان کی خریداری، دفاع کے شعبے میں مہارت کے لیے اختراعات اور ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کے لیے جانچ کے مراحل

0: से मुतालिक एक वर्कशॉप कल नई दिल्ली में मुनाकिद की जाएगी। दिफाई इकोसिस्टम में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की शमूलियत को बढ़ाने और इसके बारे में बेदारी पैदा करना इस तकरीब का मकसद है। इंसानी हकूक की अलमबरदार कई सरकर्दा बैन अलाकवामी तंजीमों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुरामन एहतजाज पर पुरतशद्दुद कार्रवाई करने पर पाकिस्तान के हुक्काम की सख्त नुक्ताचीनी की है। मजकूरा ग्रुपों ने इंटरनेट बंद किए जाने, बड़े पैमाने पर एकतरफा गिरफ्तारियों और ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल का हवाला देते हुए कहा कि खित्ते में इंसानी हकूक की सूरतहाल संगीन तरीके से बिगड़ती जा रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबिना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। वज़ीर आज़म की कामयाबियों और सरकार के 12 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए एनडी की मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम अज कम 13 अफराद मारे गए हैं। मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका और ईरान के फोर्सेज ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और अमरीका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमरीका के और 1 इटली का होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi sets record as India's longest serving elected Prime Minister. Cabinet passes a resolution applauding the historical achievement. Union Cabinet clears development projects worth more than 4,700 crore rupees, including extension of Ahmedabad Metro and government office and residential complexes in Amravati. NDA to meet in New Delhi to celebrate Prime Minister's achievements and completion of 12 years of government. Iran carries out attacks against US bases in Jordan and other targets in Gulf. US responds with strikes on Iranian targets. At least 13 people, including 11 children, killed in Pakistani airstrikes in Afghanistan. And Met Department predicts significant weather changes in Delhi NCR region in next 3 days, likely to bring relief from scorching heat. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. During the meeting of the Union Cabinet in the National Capital today, the members of the Cabinet also gave a standing ovation to Prime Minister Modi. President Draupadi Murmu has congratulated Prime Minister Narendra Modi on serving as the longest continuously elected Prime Minister of the country. In a social media post, the president said that this landmark occasion stands as a testament to the enduring trust and confidence reposed in his leadership by the people of the country. She highlighted that his tenure has been distinguished by far-reaching advancements across governance, economic resilience, and social transformation. She said, of the many initiatives undertaken under his leadership, PM Janman and Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan hold a special place in her heart. The president said, Mr. Modi's inspiring journey continues to instill hope and renewed confidence in India's strong democratic traditions. The Union Cabinet today passes a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में अंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट

0: में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
3: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए, एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय

0: लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी

ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कार्यक्रम में एक ऐसे जादुई नाम की गूंज है जिसने अपनी आवाज़ से न सिर्फ 4 दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया बल्कि संगीत के नए पहलू भी दिखाए। हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण SP बालासुब्रमण्यम की, जिन्हें हम सब प्यार से SP भी कहते हैं। हजारों गीत जो इनकी आवाज़ में गाए गए, ऐसी आवाज़ जो कभी हंसती तो कभी हमारी आंखों में आंसू भर देती। इस कार्यक्रम में हम सफर की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के उस दौर से जहां उनकी आवाज़ सीधे प्यार की आवाज़ बन गई।

दिल दीवाना, सचमुच इस आवाज को सुनकर आज भी दिल दीवाना हो जाता है। 80 का दशक आखिरी साल था, 1989। एक नया लड़का स्क्रीन पर आता है और नाम था उसका सलमान खान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर उस लड़के को रोमांटिक हीरो बनाने के पीछे किसकी आवाज थी? जी हाँ, वो थे हमारे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब। जब उन्होंने मैंने प्यार किया के गाने गाए तो ऐसा लगा मानो सलमान खान खुद गाना गा रहे हैं। ये बालासुब्रमण्यम साहब की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो जिस एक्टर के लिए गाना गाते उनकी आवाज़ को उसी सांचे में ढाल लेते, चाहे वो सलमान के लिए पहला प्यार या फिर कमल हसन के लिए तेरे मेरे बीच में। तो चलिए उसी दौर का एक और खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म साजन से, जहां उनकी आवाज़ ने आशिकों को एक नया मकाम दिया।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। अभी आपने जो गाना सुना वो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि यादों का पूरा कारवां है। वैसे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब के बारे में एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि उन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत की औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली। जी हाँ, ये बात आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली। उनके भीतर सुरों का ऐसा समंदर था कि उन्होंने शंकर भंडम जैसी शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता। इतना ही नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज कराया। एक ही दिन में 21 कन्नड़ गाने रिकॉर्ड किए। हिंदी में भी जब वो गाते तो उनके उच्चारण में जो ठहराव था वो कमाल का था। चाहे रोजा फिल्म का दर्द भरा गाना हो या फिर कोई चुलबुला अंदाज, चलिए आपको लिए चलते हैं एआर रहमान और एसपी बालासुब्रमण्यम की उस जुगलबंदी की तरफ जिसने 90 के दशक में हर दिल को छू लिया। आपको सुनवाते हैं रोजा फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और वक्त इशारा कर रहा है कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। श्रोताओं, साल 2020 में एसपी बाला साहब भले ही हमें शारीरिक रूप से छोड़कर चले गए हों, लेकिन संगीत का इतिहास जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है और हम संगीत प्रेमियों के दिलों में, वो हमेशा के लिए बस गए हैं। और जब तक बसे हैं, यानी कि जब तक दुनिया रहेगी और तब तक प्यार रहेगा। और हमें इस बात की खुशी है कि जब भी हम उन्हें सुनते हैं तो हमें उनके गीत सुनकर जो सुकून मिलता है और एक सुखद एहसास होता है, वो अद्भुत है। तो चलते चलते उन्हीं का गाया खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन से।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम आपसे चाहते हैं अनुमति, और हमें दीजिए अनुमति। और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार में, आज एसपी बालासुब्रमण्यम साहब को। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, और आप सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। ये फिल्म का नाम है एक फूल दो माली।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना, और अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ फिल्म साजन में।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गोल्डन इरा के फिल्मी गीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म यादगार से।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत था फिल्म जहरीला इंसान से, और अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ फिल्म समाधि में।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म मर्यादा से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

तो ये था कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्त चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

पापा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ आगे पढ़ाई के लिए। रामिश, खर्च? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, वो उनके सीने से चिमट गया और बैग उठाकर ड्योढ़ी से बाहर निकल आया। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हमसफ़र की तलाश है। रामिश के हाथ में सेलफोन पर रिंगटोन बजी तो उसने माजी के दीमक ज़दा दरीचों को भेड़ दिया। उसके बेटे रैयान का मैसेज था, डैड हॉस्टल में हर तरह का आराम है, मेरा रूममेट भी बहुत अच्छा है, आई लव यू सो मच डैड। अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने कुछ दोस्त बना लीजिए, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। रैयान का मैसेज पढ़कर उसकी आंखें भीग गईं। रात का पिछला पहर था, घर काट खाने को दौड़ रहा था। अब यही लैपटॉप उसका ऑफिस भी है और उसकी मसरूफियत भी। दिल काम में नहीं लग रहा था, पहली बार अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर किया था। लैपटॉप बंद करके उसने रैयान के मैसेज को कई बार पढ़ा और डरते डरते फेसबुक का आइकॉन दबा दिया। उसकी आंखें खैरा हो गईं। इस तिलसिमी दुनिया में सब अमीर और कबीर हैं, खुशियों के झूले और मस्तियों के रेले हैं। एक घंटा दिमाग पच्ची करने के बाद बिलाखिर एक लड़की की समझदार और जिंदा दिल सी पोस्ट पढ़ी और उसका पुरकशिश फोटो देखा तो उसने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और फौरन ही उसकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली गई। उसी लम्हे लड़की ने मैसेंजर पर उसको पैगाम भी दिया, मैं नेहा हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, मुझे ज़िंदगी से बहुत प्यार है और सड़ी गली शक्ल वाले रोते लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे यार, तुमने अपना फ़ोटो क्यों नहीं लगाया? अब दोस्ती कर रहे हो तो एक दूसरे की शक्ल भी देखना ज़रूरी है। तुमने मुझे देखकर ही तो फ्रेंड बनाया है ना? जवाब दो, गूंगे हो क्या? ना ना नहीं, रामिश ने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की से मैसेज पर बात की। उसकी हथेलियों में पसीना आ गया, उससे फ़ोन पर टाइप नहीं किया जा रहा था, लेकिन तजस्सुस और अस्तराब ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, मेरी बीवी। अरे यार, ये पेसिमिस्टिक बातें मुझसे मत करो प्लीज़। ये बताओ तुम्हें किस रंग के गुलाब पसंद हैं? लाल गुलाब मत कहना, पुराने हीरो मत बन जाना, मुझे गुलाबी और सफ़ेद गुलाब अच्छे लगते हैं। फूल? रामिश को अपनी सुहाग रात के सुर्ख शबनमी गुलाब याद आ गए। अरे अब क्या सोचने बैठ गए, बाय बाय, लड़की ने लॉग आउट कर दिया। अब हर तीसरे दिन, चौथे दिन लड़की रामिश से फेसबुक पर उसका हाल पूछती और एक दिन लड़की ने रामिश का सेल नंबर भी ले लिया। रामिश अपने दिल की बातें इस अनजान दोस्त से शेयर करने लगा। वो बड़ी महारत से मीठे बोल बोलती और रामिश अपनी शफ़ों के कामों से जल्दी जल्दी फारिग होकर नेहा की मज़ेदार बातों में मसरूफ़ हो जाता। अब वो दोनों रात को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल भी करते और बातों बातों में यूं ही सुबह हो जाती। वो उसका पता पूछता लेकिन वो हंसकर कहती, नाम ना जानूं तेरा देश ना जानूं, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, और वो शोखी से हंसती, अकेले तुम अकेले हम और क्या गम। अरे बाबू अब हंसो बिना, ये क्या मजलूम सी शक्ल बनाए रखते हो, जिंदगी प्यार का गीत है। कभी तुमने मोहब्बत की? रामिश ने डरते डरते पूछ ही लिया। हाँ बहुत की, सच्ची बताऊँ? अब भी तो कर रही हूँ। तुमने शादी क्यों नहीं की? रामिश ने बेकरार होकर सवाल किया। क्यों, क्या मेरी मर्जी? क्या क्या होता है, माई लाइफ, मैं चाहे ये करूँ चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। वह बाई आँख बंद करके सीटी बजाने लगी। अकेली रहती हो? जी नहीं घबराता तुम्हारा? अकेली? क्यों अकेली, तुम हो ना मेरे साथ। लेकिन मैं तो मोहब्बत करना चाहता हूँ, सच्ची मोहब्बत। तो स्वीट हार्ट, इनकार कब किया है? रामिश का दिल ज़ोर से धड़क उठा। अरे यार, ये सच्ची मोहब्बत बड़ा जानलेवा काम है, अभी ऑफिस का मुझे बहुत सारा काम पड़ा है, अब बाय। उसने अपने सुर्ख भरे भरे होंठों को गोल करके एक बोसा दिया और फ़ोन बंद कर दिया। वो शर्म से ज़मीन में गड़ गया। रामिश के दिल में बसी उदासियों के घटाटोप अंधेरे में उम्मीद की एक किरण सी झलकने लगी। आधी रात को चौदहवीं का चांद देखते हुए वो रामिश को फ़ोन करती, कमरे से बाहर निकलो और गाओ, जुल्फे हैं जैसे चांद पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए। रामिश मबहूत सा नेहा को निहारता और नेहा अपने लंबे रेशम से मुलायम बाल खोल देती और खट से फोन बंद कर देती। एक दिन सरे शाम बारिश हुई तो नेहा का बारिश में भीगता हुआ फोटो आया और उस पर लिखा था, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। अक्सर रामिश को एहसास जुर्म होता लेकिन वो अपने ज़मीर को ये कहकर मुतमईन कर लेता कि वो शफ़ों की खिदमत में कोई कोताही नहीं करता और ना ही अपने बेटे

को कोई जहनी या माली परेशानी होने देता है, फिर वो कौन सा नेहा से जिंदगी भर का साथ मांग रहा है? जिंदगी की तरफ लौटने का एक दिल फरेब रास्ता ही तो है। 2 हफ्ते की मौसम सरमा की छुट्टी हुई और रैयान घर आ गया। रामेश ने नेहा का नंबर ब्लॉक करने से पहले उसको वीडियो कॉल की और मजबूरी जाहिर की कि वो रैयान के हॉस्टल वापस जाने तक उसको फोन या मैसेज ना करे। रामेश रैयान के साथ ऐसा मसरूफ हुआ कि नेहा को भूल सा गया और उसने उसको एक बार भी फोन तक ना किया। इतवार की सुबह रैयान वापस हॉस्टल चला गया और रैयान के जाते ही उसने नेहा का नंबर अनब्लॉक किया, लेकिन नेहा का नंबर लग ही नहीं रहा था और डीपी तो सिरे से गायब ही थी। रामेश का नंबर नेहा शायद डिलीट कर चुकी थी। रामेश की नींद, भूख और दिल की खुशी सब नेहा ले गई। 4 रातें बेख्वाब गुजारने के बाद रामेश ने अपने दिल को समझाया कि इसी शहर में तो रहती है वो, यहीं कहीं मिल ही जाएगी। वो शफों के बेड से लगकर बैठ गया। शफों के मुंह से बेहंगम सी आवाजें निकल रही थी। वो समझ गया कि शफों ने डायपर में फरागत कर ली है। शगुफ्ता का डायपर बदलकर वो वहीं कारपेट पर लेट गया। सवेरे ही उसे ऑफिस से कॉल आ गई। शफो, मैं आज ऑफिस के काम से गुड़गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। सामने वाली आंटी से कह दिया है, वो अभी तुम्हारे पास आएंगी। लेकिन शफो की नज़र खला में भटकती रही। पड़ोसन आंटी के आते ही वो घर से निकल गया और गुड़गांव पहुंचने पर जो ही कैब से उतरा और ऑफिस की इमारत में दाखिल हुआ कि सामने फुटपाथ पर सर्दी की धुंधलाई सी धूप में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के सीने से चिमटी उसके गालों पर से लिपस्टिक के निशान साफ कर रही थी। रामेश के बुझे दिल में एक जल तरंग सा बजा। काश इस वक्त नेहा की वीडियो कॉल आ जाए। यूं ही लड़की उसकी तरफ पलटी, रामेश की आंखें पलक झपकना भूल गईं। एकदम वो उसके करीब आई और बोली, हाय जानी, कैसे हो? यहाँ कब क्यों आए? रामेश के गले में कांटे से उगाए। सुनो जैक, ये रामी रामेश है, मेरा फेसबुकिया, भोले से बाबू हैं ये। मेरा दिल चाहता है कि मैं इनको प्रेम नगर की डगर दिखा दूं। उसने रामेश को खींचकर उसके सर्द रुखसार से अपना तमतमाता गाल मस कर दिया। एक झटके से रामेश ने उसको अपने से अलग किया और तेज तेज कदमों से ऑफिस की इमारत में दाखिल हो गया। दिन भर अपने दिल को उदासी के भंवर में डूबने से बचाता रहा। रात को रामेश ने उसको कई मैसेज किए, लेकिन उसने उसका एक भी मैसेज नहीं देखा। रामेश के गुस्से का एटम बम फटने ही को था कि नेहा का फोन आ गया। यार, ये क्या अनसिविलाइज सी हरकत की तुमने? क्यों नहीं बात की जैक से? वो मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त। उसको बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम उससे क्यों इतने करीब हो रही थी? रामेश को गुस्सा आया। तुम्हें क्या मतलब? मैंने तुमसे कभी कोई कमिटमेंट किया था? मोहब्बत का इजहार किया था या इकरार किया था? नहीं किया ना? लेकिन नेहा, मैं सिर्फ तुमसे। रामेश के गले में कांटे पड़ गए। यार, बी प्रैक्टिकल। ये मोहब्बत कहानियों में, अफसानों में और फिल्मों में होती है। तुम जैक को देखकर मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे थे और दूर जाकर क्यों खड़े हो गए? क्या बताना चाह रहे थे उसको? मैं तुम्हारी तरह हर किसी से यूं खुलकर नहीं मिल सकता। मेरा कोई मायार है। क्या मायार है तुम्हारा? बेवकूफ हो तुम, एक नंबर के बेवकूफ। और एकदम जज्बाती से, क्या मिला तुम्हें इन मोहब्बतों से? तुम्हारी अम्मी ने, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे प्रोफेसर ने, और यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी सो कॉल्ड मोहब्बत को कितना मान दिया? उसने तुम्हें बताया कि वो एक जहनी मरीजा है? और तुम्हारा बेटा, वो तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? 16 साल का लड़का है, जवान है, बच्चा तो नहीं है। अब तक समझ में नहीं आया तुम्हें कि मोहब्बत क्या होती है? और हाँ, मुझ पे तुम्हारा ना कोई जोर है और ना ही कोई हक। रामेश ने गुस्से से कांपते हुए फोन काट दिया और ज्यादा सुनने की ताब नहीं थी उसमें। 2 दिन तक मुसलसल उसी लड़की के मुतालिक सोचता रहा। उसने ना कोई मैसेज किया और ना ही सॉरी का कोई फोन। नेहा को उसका जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं था। इस हकीकत को कबूल करने में उसे किस कदर सख्त मरहलों से गुजरना पड़ा। रात तक वो अपने को कुछ नॉर्मल कर चुका था। उसने फेसबुक अकाउंट खोला और उसके हाथ से फोन फिसल कर दूर जा गुरा। नेहा उसको अपने फेसबुक अकाउंट से ब्लॉक कर चुकी थी। उसके दिमाग में अंधियाव चल पड़े। दिल भारी पत्थर हो गया और आंखों में गर्म रेत सी भर गई। जिंदगी में पहली बार रामेश ने अपनी आवाज को सिसकियों की कैद से आजाद कर दिया और वो हिचकियां ले ले कर रोने लगा। रात भर इसी गमो अंधों के सागर में डूबता रहा। वो अब किस दरवाजे की तरफ देखे? उसका तो कोई भी नहीं, कोई गमगुसार नहीं, कोई चारा साज नहीं। फेसबुक ने तो इंसानों से भी ज्यादा दर्द दिया है उसको।
रात के न जाने कौन से पहर रामिश की आंख लग गई।

0: हाँ, ये रिश्ता बेनाम रामिश के लिए हसीन यादों का एक गुलदस्ता ज़रूर है। वो अपनी पहली मोहब्बत की सदाओं को ताउम्र अपने फ़ोन में महफूज रखेगा। और उसने तकिए के पास रखा अपना फ़ोन उठाया, नेहा के नंबर को आर्काइव्स में सेव कर दिया। रामिश ने एक भरपूर अंगड़ाई ली और खिड़की से झांकती खुनक मुलायम धूप की कतरनों को अपनी हथेलियों में बंद कर लिया। और एक नए अज़्म के साथ एक बार फिर फेसबुक पर एक नई जिंदा दिल और कुशादा जहन की खातून दोस्त की तलाश शुरू कर दी।
1: सामईन, अभी आप अफसाने से महजूज हो रहे थे जिसका उन्वान था हर एक पल विसाल का, जिसे पेश कर रही थी मोहतरमा रखशंदा रूही। आइए सामईन, सुनते हैं अब्दुल अजीज की आवाज में ये गजल।

0: याग, जैसे एक शोले जब वाला फलक को छू ले, सीने सर्द में मेरे है वही आग अब भी, तो दए बर्फ से जो बुझ न सके, बन के शोला ये बढ़ी जाती है, सूए अफलाक उठी जाती है, बन के शोला ये बढ़ी जाती है, सूए अफलाक उठी जाती है, इसकी जद में है ये अशियाए निजामे आलम, बस के खौफ है पहलू में मेरे, अपनी ही आग से अफकार न जल जाएं कहीं, बस के खौफ है पहलू में मेरे, अपनी ही आग से अफकार न जल जाएं कहीं, सोचता हूँ कि दुआ ही मांगूँ, सोचता हूँ कि दुआ ही मांगूँ, मेरे आतिश कदए सीना को मेरा रब लुत्फ व करम का कोई चश्मा कर दे, एक अजब आग सी है सीने में। गज़ल के चंद अशआर और मुलाहज़ा करें, यह है कि दुनिया का तमाशा वही दुनिया का तमाशा, दुनिया का तमाशा वही दुनिया का तमाशा, दरिया का तमाशा कभी सहरा का तमाशा, दरिया का तमाशा कभी सहरा का तमाशा, सब कारे गुलामी में पड़े चीख रहे हैं, सब कारे गुलामी में पड़े चीख रहे हैं, आका का तमाशा है ये आका का तमाशा, है विरदे हुवल्लाहु अहद जारी वो सारी, है विरदे हुवल्लाहु अहद जारी वो सारी, आ देख कभी सागर व सहबा का तमाशा। ये शेर के हर वक्त जबी साई की रहती है पड़ी धुन, हर वक्त जबी साई की रहती है पड़ी धुन, रहता है सदा किबला व काबा का तमाशा, रहता है सदा किबला व काबा का तमाशा। ये शेर के लोगों ने तो देखा है पर देखा ही नहीं है, लोगों ने तो देखा है पर देखा ही नहीं है, शैदा का तमाशा तेरे रुसवा का तमाशा, लोगों ने तो देखा है पर देखा ही नहीं है, शैदा का तमाशा तेरे रुसवा का तमाशा। और ये शेर के मैं नूरा व अज़रा से परे देख रहा हूँ, मैं नूरा व अज़रा से परे देख रहा हूँ, शेरों में मेरे है गुले राना का तमाशा, शेरों में मेरे है गुले राना का तमाशा। और ये आखिरी शेर के दरियाए मोहब्बत हुआ पायाब जभी से, दरियाए मोहब्बत हुआ पायाब जभी से, बाजारे मोहब्बत में है सौदा का तमाशा, दरियाए मोहब्बत हुआ पायाब जभी से, बाजारे मोहब्बत में है सौदा का तमाशा, सब कारे गुलामी में पड़े चीख रहे हैं, आका का तमाशा है ये आका का तमाशा। दो तीन शेर और पेश कर दूं, मतलब है कि कल जो उस जानिब मेरे जाने की तैयारी हुई, कल जो उस जानिब मेरे जाने की तैयारी हुई, अंदरूं रोशन हुआ बाहर ज़िया बारी हुई, अंदरूं रोशन हुआ बाहर ज़िया बारी हुई, बाद मुद्दत एक चिरागे राह क्या रोशन हुआ, बाद मुद्दत एक चिरागे राह क्या रोशन हुआ, जुल्मतों के कान भरने को हवा तारी हुई, जुल्मतों के कान भरने को हवा तारी हुई। और ये शेर के उसकी यादों का तअत्तुल ख़त्म होना था हुआ, उसकी यादों का तअत्तुल ख़त्म होना था हुआ, मौज खूँ उठ कर के शिरयानों में फिर जारी हुई, मौज खूँ उठ कर के शिरयानों में फिर जारी हुई। और ये शेर के एक सदा भूली हुई कानों से टकराई थी कल, एक सदा भूली हुई कानों से टकराई थी कल, पहले तो आंसू गिरे आवाज़ फिर भारी हुई, एक सदा भूली हुई कानों से टकराई थी कल, पहले तो आंसू गिरे आवाज़ फिर भारी हुई, रमज़ो ईमा अहद पैमा सब के सब अलकत हुए, रमज़ो ईमा अहद पैमा सब के सब अलकत हुए, क्या दरे सहरा खुला मजनू को सरशारी हुई, क्या दरे सहरा खुला मजनू को सरशारी हुई। और ये मक्ता के हम अना को छोड़कर जाते भी तो जाते कहाँ, हम अना को छोड़कर जाते भी तो जाते कहाँ, खाक पर बैठे थे कौसर फिर भी सरदारी हुई, हम अना को छोड़कर जाते भी तो जाते कहाँ, खाक पर बैठे थे कौसर फिर भी सरदारी हुई।
1: सामीन, अभी आप नवाई शायर के तहत सुन रहे थे जनाब कौसर मज़हरी से उनका ये कलाम। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्सर अदब। तो इसी के साथ अपने मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर शाम के 4 बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। कई विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी आज इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की राष्ट्र की निरंतर सेवा की ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को भी मंजूरी दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शन को PNG कनेक्शन में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने होर्मूज जलडमरू मध्य के आसपास अमरीकी हमलों के जवाब में आज जॉर्डन में एक अमरीकी अड्डे और खाड़ी में 21 अन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि होर्मूज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह शहर पर हमला किया गया। इस बीच जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान से अल अजराक की ओर दागी गई 5 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद ये बड़ी झड़प है। अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमरीका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मूज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान पर हमले किए गए। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने आज घोषणा की कि वह भारत में अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करेगी। समझौते के अंतर्गत मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएंगी। ये डेटा सेंटर भारत के प्रति मेटा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक में उत्पादों और AI क्षमता को सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली

0: 215. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index shed 1.5% and small-cap 100 index fell over 1.3%. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे दें। सबसे पहले गुमशुदा व्यक्ति हैं अयान पुत्र असलम। अयान एक पुरुष हैं। इनकी उम्र है 16 साल, कद है 5'4", रंग सांवला। ये 6 अप्रैल 2026 से कस्बा सधना, जिला मेरठ, यूपी से लापता हैं। अगले गुमशुदा हैं नीतू देवी, पत्नी देवेंद्र कुमार। ये महिला हैं। इनका कद है 5 फुट, उम्र है 40 साल, रंग गेहुआ। ये 7 अप्रैल 2026 से ग्राम पाबला, मेरठ, यूपी से लापता हैं। मुस्कान पुत्री रमेश कुमार। मुस्कान महिला हैं। इनका कद है 5 फुट, उम्र लगभग 22 साल, रंग गेहुआ, शरीर मजबूत है। ये 3 अप्रैल 2026 से जसवंत नगर, मेरठ, यूपी से लापता हैं। अगली गुमशुदा हैं रूबीना पुत्री गुलजार। ये महिला हैं। कद 5 फुट, उम्र 25 साल, रंग गोरा, चेहरा गोल। ये 2 अप्रैल 2026 को ग्राम पांचली खुर्द, मेरठ, यूपी से लापता हैं। गुनगुन पत्नी राहुल। गुनगुन महिला हैं। कद 5 फुट, इनकी उम्र है 22 साल, रंग गोरा, शरीर सामान्य। ये 13 अप्रैल 2026 से ग्राम डालूहेड़ा, मेरठ, यूपी से लापता हैं। गौरव गौड़ ये पुरुष हैं। इनकी उम्र है 42 साल, कद 5 फुट 4 इंच, चेहरा गोल है, रंग गेहुआ, शरीर सामान्य है। ये 17 अप्रैल 2026 से गॉडविन सिटी, मेरठ, यूपी से लापता हैं। हमारे श्रोता गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी सुन रहे हैं। अगले गुमशुदा हैं अक्षपुरी। इसे एक बार फिर सुन लें। अक्ष पुत्री साबुद्दीन ये लड़की हैं। इनकी उम्र है 16 साल, कद 4 फुट 5 इंच, चेहरा गोल, रंग गोरा, शरीर सामान्य है। ये 3 अप्रैल 2026 से जाकिर कॉलोनी, लोहिया नगर, मेरठ, यूपी से लापता हैं। और अंत में गुमशुदा व्यक्ति का नाम है अंजलि पत्नी आकाश। ये एक महिला हैं। इनकी उम्र है 22 साल, कद 4 फुट 3 इंच, रंग सांवला है। ये 13 अप्रैल 2026 से इंदिरापुरम कॉलोनी, मेरठ, यूपी से लापता हैं। श्रोताओं, इन गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में यदि कोई जानकारी आपके पास है या कोई भी जानकारी अगर आपको मिले तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने या फिर टोल फ्री नंबर 112 पर सूचना दे सकते हैं। अभी आप गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे।

श्रोताओं, शाम 5:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम लोकरंजनी खेल खिलाड़ी। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 5:30 पर। ग्राम संसार का कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। इसमें हम आपको सुनाएंगे चर्चा सभ्यताओं के संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसमें आप सुनेंगे बातचीत गर्मियों में उचित खान पान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनीषा वर्मा।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली से सीधा प्रसारण आपका अपना कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं हिमांगी द्विवेदी।
1: और मैं हूं दिव्यांश।
0: तो साथियों, आज के अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म इम्तिहान के इस प्रेरणादायक गीत से। किशोर कुमार की सुमधुर आवाज़ और मजरूह सुल्तानपुरी के भावपूर्ण बोल से सजा यह गीत है, रुक जाना नहीं।

0: रुकना तो नहीं है, इसीलिए ले चलते हैं आपको हमारे आज के सेगमेंट के ऊपर, जो कि है आज की बात, जिसमें हम खोजबीन करेंगे कि किस तरह देश का युवा अपने उज्जवल भविष्य की ओर दौड़ता हुआ वर्तमान में मानसिक बेड़ियों में जकड़ता जा रहा है। और भला ऐसे में जकड़ेगा भी क्यों नहीं, यह समय ही ऐसा है जिसमें डिप्रेशन, तनाव, बर्नआउट और ना जाने कितनी तरह की परेशानियां एक खाली दिमाग से चिपक जाना चाहती हैं।
1: वैसे मेरे घर में तो

0: चींटियों से बचने का एक देसी नुस्खा है दिव्यांश, पता है क्या?
1: क्या ही मांगी?
0: चुटकी भर हल्दी। जब मेरी माँ किसी भी चीज़ का चींटियों की पहुँच से दूर रखना चाहती हैं, तो बस एक चुटकी हल्दी का छिड़काव कर देती हैं।
1: तो क्या ही मांगी? हमारे दोस्तों के लिए कुछ चुटकी भर हल्दी जैसे नुस्खे आपके पास हैं जिससे डिप्रेशन और एनेक्साइटी की ये चींटियाँ उन्हें कचौटना बंद करें?
0: हाँ, क्यों नहीं? रोजमर्रा की एक रस जिंदगी से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, खुद को पॉजिटिव एक्टिविटीज में व्यस्त रखिए और एक आसान सा नियम अपनाइए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, यानी सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो साथियों, आप भी कीजिए यह छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आइए सुनते हैं उम्मीद, हौसले और सपनों को पूरा करने के जज्बे से भरा फिल्म हाईवे का गीत पटाखा गुड्डी।

0: जिंदगी का सफर बिल्कुल एक फिल्म की तरह होता है, कहीं कट, कहीं एक्शन और कहीं भावनाओं से भरे दृश्य। हर पल में अपना अलग अंदाज छिपा होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने और सराहने की।
1: वैसे सराहना से मुझे याद आया हिमांगी कि हाल ही में हमारे कर्नाटक राज्य के एक साधारण बस कंडक्टर ने कर दिखाया है एक ऐसा असाधारण कार्य कि उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ।
0: तो साथियों, आइए जानते हैं आज शाम मन से माइक्रोफोन तक खंड में अंके गौड़ा जी के बारे में। कल्पना कीजिए एक सरकारी बस की, जहां एक बस कंडक्टर टिकट काट रहा है। वर्दी खाकी है, जेब खाली है, लेकिन आंखों में किताबों का एक समंदर है। यह कहानी है कर्नाटक के मांड्या जिले के अंके गौड़ा जी की। पेशे से एक साधारण बस कंडक्टर, लेकिन जुनून था असाधारण। जब लोग अपनी तनख्वाह से घर और गाड़ियां खरीदते हैं, तब अंके गौड़ा जी अपनी कमाई का एक एक पैसा पुरानी और दुर्लभ किताबें खरीदने में लगा देते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे। परिवार परेशान था। हद तो तब हो गई जब किताबों को सहेजने के लिए उन्होंने अपना खुद का घर तक बेच दिया।
1: लेकिन साथियों, इस दीवानगी ने इतिहास तक रच दिया। 50 वर्षों की कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने गांव में खड़ा किया पुस्तक मणि यानी किताबों का घर। आज इस निःशुल्क पुस्तकालय में 20 लाख से अधिक पुस्तकें और 20 भाषाओं के दुर्लभ शब्दकोश मौजूद हैं। एक साधारण सा बस कंडक्टर ज्ञान का इतना बड़ा समंदर बन गया कि वर्ष 2026 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा। आंके गौड़ा जी ने साबित कर दिखाया कि यदि इरादा पक्का हो तो एक आम इंसान भी दुनिया बदल सकता है। साथियों,
0: तो दोस्तों, आपने देखा कि किताबों का जुनून किसी की कल्पना से बढ़कर हकीकत में बदलने में देर नहीं लगाता। यह नया भारत है जनाब, जहां राजा हो या रंक, मेहनत और समर्पण के बल पर हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।
1: अब इसी ही प्रेरणा और समानता की भावना को नजदीक से महसूस करने के लिए सुनिए फिल्म सुपर 30 का यह प्रेरणादायक गीत, बसंती नो डांस।

0: तो आइए नजर डालते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करियर अपडेट्स पर। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अप्रेंटाइसशिप रिक्रूटमेंट 2026 के तहत 7,000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली हैं। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको बैंकिंग सेक्टर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और स्किल डेवलपमेंट का अवसर भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
1: अब बात करते हैं DSSSB रिक्रूटमेंट 2026 की। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने लगभग 2,000 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इनमें TGT कंप्यूटर साइंस, लेबर इंस्पेक्टर, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं। योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
0: और अगर आपका सपना देश की सेवा करना है तो इंडियन नेवी अग्निवीर रिक्रूटमेंट आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है। निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में राइटिंग टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए।
1: दोस्तों, अब पेश है एक ऐसा गीत जो आत्मविश्वास, उम्मीद और नई सोच की रोशनी से भर देता है। फिल्म रंग दे बसंती का यह प्रेरणादायक गीत रूबरू रोशनी आज भी युवाओं के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना अपनी रिलीज के समय था। इस गीत को अपनी दिलकश आवाजों से सजाया है AR रहमान और नरेश अय्यर ने। गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

0: ये सेगमेंट है गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स। साथियों, क्या आप अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? ऐसे में केंद्र सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई यह योजना, इसका उद्देश्य गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत बिना गारंटी के ऋण प्रदान किए जाते हैं, जैसे छोटे उद्यमियों, स्वरोजगार करने वालों, दुकानदारों, कारीगरों तथा स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय को विकसित करने का अवसर मिलता है।
1: योजना के तहत ऋण 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। शिशु 50,000 रुपये तक, किशोर 50,000 से 5 लाख रुपये तक और तरुण 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन। इसके अतिरिक्त तरुण प्लस श्रेणी के अंतर्गत सफल मुद्रा लाभार्थियों को 20 लाख रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जा सकता है। यह योजना रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर

0: आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक या अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थान से संपर्क कर सकते हैं।
1: दोस्तों, अब समय है एक ऐसे गीत का जिसने हम युवाओं के सपनों, संघर्षों और आजादी की चाह को बेहद खूबसूरती से आवाज दी है। यह गीत है फिल्म थ्री इडियट्स का गिव मी सम सनशाइन।
0: इस गीत को अपनी भावपूर्ण आवाज से सजाया है सूरज जगन और शर्मन जोशी ने। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है शांतनु मोइत्रा ने।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

यह गीत केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि हम सभी युवाओं के मन की उन भावनाओं को भी व्यक्त करता है जो अपने सपनों को खुलकर जीना चाहते हैं और जीवन में अपनी राह स्वयं चुनना चाहते हैं। और अब बात है 10 जून की, हमारा आज का सेगमेंट, आज के इतिहास के बारे में। इतिहास के पन्नों में 10 जून केवल एक तारीख नहीं, बल्कि संवाद,

0: ही है। संवाद ही वह माध्यम है जो लोगों, समाजों और देशों को एक दूसरे के करीब ला सकता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि भिन्नताएं हमारी कमजोर नहीं बल्कि हमारी सामूहिक शक्ति हैं। जब विचारों का आदान प्रदान खुले मन और सम्मान के साथ होता है, तब विश्वास, सह अस्तित्व और विकास के नए रास्ते खुलते हैं।
1: तो आइए दोस्तों, इस अवसर पर हम सभी संवाद, सहिष्णुता और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें।
0: दोस्तों, अब वक्त है अगले गाने का। प्यार, समर्पण और भावनाओं की खूबसूरत अभिव्यक्ति लिए यह गीत श्रोताओं के दिलों में एक खास जगह रखता है। हम बात कर रहे हैं फिल्म रांझना के लोकप्रिय गीत तुम तक की।
1: इस गीत को अपने मधुर आवाजों में सजाया है जावेद अली ने, और अब पेश करते हैं और सुनते हैं फिल्म रांझना का यह खूबसूरत गीत तुम तक।

इस गाने को सुनने के बाद क्यों ना एक और गाना सुना जाए। फिल्म उरी से आवाज दी है यासिर देसाई और शाश्वत सचदेव ने, गाना है बह चला।

0: आपने सुबह के आसमान में हंसिए के आकार का चंद्रमा जरूर देखा होगा। उसे देखकर लगता है जैसे वह जाते जाते कह रहा हो, जल्दी ही फिर मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए।
1: आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण हैं। हम फिर मिलेंगे नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ।
0: तब तक के लिए आप सुनिए तारे जमीन पर और मुझे हिमांगी और दिव्यांश को
1: दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। 5 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री

0: मंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में जन कल्याण पर केंद्रित सरकार की नीतियों का उल्लेख और प्रमुख जनसंख्यिकी समूहों के सशक्तिकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए की बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री था गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध किया। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये प्रणाली उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करके और सिग्नल स्पूफिंग तथा भ्रामक जैमिंग करके दुश्मन के GNSS रिसीवर के प्रदर्शन को कम करने में सक्षम है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम के वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। देखिए लोकेंद्र भाई, हम अपने भाइयों के लिए मिले जुले लोकगीत लेकर आते हैं और हमेशा उनको अलग ही लोकगीत सुनवाते हैं और अलग ही उनका आनंद दिलवाते हैं उनको।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं इस कार्यक्रम का भी सभी से इंतजार करते हैं, तो कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले किसको सुनवा रहे हैं आप?
0: सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं सुधा श्रीवास्तव को और सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

0: वंदना बहन,
1: जी
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सुधा श्रीवास्तव की आवाज़ में ये लोकगीत,
1: जी
0: और अगला किसको सुनवा रहे हैं आप?
1: अगला हम अपने भाइयों को प्यारा सा लोकगीत सुनवाएंगे, बीना ढिल्लों और उनके साथियों की आवाज में।
0: आइए
1: तो
0: सुनते
1: आइए
0: हैं।
1: सुनते हैं ये लोकगीत।

0: वरना बहन, अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पुष्पा गोसाई की आवाज़ में, माफ़ कीजिए, बीना ढोर वासाथी की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत। और अगला किसको सुनवा रहे हैं हम?
1: पुष्पा गोसाई को।
0: हाँ
1: अब हम पुष्पा गोसाई की आवाज में सुनवाते हैं ये लोकगीत।

0: बहन,
1: जी।
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पुष्पा गोसाई की आवाज में ये लोकगीत।
1: और अगला लोकगीत हम सुनवाते हैं सुधा श्रीवास्तव की आवाज में।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे सुधा श्रीवास्तव की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत, और इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत कर्ता थे तुषार परासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंजनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों की उपलब्धियों प्रदर्शन पर आधारित आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

0: मेरे साथ हैं विदुषी।
1: नमस्कार, खेल खिलाड़ी से जुड़े सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: हाँ विदुषी, आज हम इस अंक में हम चर्चा करेंगे कल से शुरू होने वाले फीफा विश्व कप की, और इसके अलावा 12 जून से इंग्लैंड में होने वाले महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम की संभावनाओं पर भी बात होगी, और अभ्यास मैच भी खेल रही है भारतीय महिला टीम, जहां इंग्लैंड ने उसे 172 रन का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा बात होगी तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण की, और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन पर भी बात करेंगे। तो विदुषी, क्यों ना शुरुआत करते हैं फुटबॉल के महामेले फीफा विश्व कप से। तीन देश, 16 शहर, 48 टीमें और 104 मैच। कल से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में दुनिया के सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल का विश्व कप शुरू होने जा रहा है। फीफा विश्व कप का जुनून इस बात पर फिर मुहर लगा देगा कि क्यों फुटबॉल की दीवानगी अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। कल से 39 दिन फुटबॉल का रोमांच पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लेगा। जी हाँ, यही शोर और यही जोश खेल और खिलाड़ियों में नई ऊर्जा भर देता है, और रोमांच के कई सुनहरे पन्ने बेहतरीन प्रदर्शन की यादगार गाथाओं से भर जाते हैं। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फ्रांस के काइलिन मबापे के स्टारडम के बीच नार्वे के इरलिंग हॉलैंड और स्पेन के 22 साल के लामिन यमाल का कमाल आपको मंत्रमुग्ध कर सकता है। ये भी मुमकिन है कि कोई नया सितारा अपने प्रदर्शन की चकाचौंध से सबको हैरत में डाल दे। दुनिया भर के 206 देश क्वालिफाइंग दौर से गुजरे हैं, जिसके बाद 6 महाद्वीपों के 48 देश इस महामुकाबले में उतरने को बेताब हैं। क्वालिफाइंग दौर 7 सितंबर 2023 को शुरू हुआ, जो 31 मार्च 2026 को खत्म हुआ। इनमें 45 टीमों ने विश्व कप का टिकट हासिल किया, जबकि 3 मेजबान देश अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा पहले से ही क्वालिफाई थे। फीफा विश्व कप की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने 10 ग्रुपों की टीमों की ताकत, रिकॉर्ड और रणनीतियों पर चर्चा की है। उसी कड़ी में आज अंतिम 2 ग्रुपों की टीमों की बात करते हैं, और ग्रुप के में पुर्तगाल, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान और DR कांगो शामिल है। पुर्तगाल की टीम ने कभी विश्व कप नहीं जीता, लेकिन पूर्व धुरंधर लुइस फिगो से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े फुटबॉलरों के नामों से सजी रहने वाली पुर्तगाल की टीम को कभी कमतर करके नहीं आका गया। कोच रॉबर्टो मार्टिनेज की चयन नीति ने उम्र की जगह फॉर्म और अनुभव को वरीयता दी है। 41 साल की गोल मशीन CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज भी दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की पहली पसंद बने हुए हैं। इसके अलावा ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नाडो सिल्वा, रुबेन डायस और ब्रूनो मेंडेस भी टीम में शामिल हैं। बात उज्बेकिस्तान की करें तो उज्बेकिस्तान की टीम उन 4 टीमों में शामिल है जो पहली बार हिस्सा ले रही हैं। एशियाई टीम तकनीकी रूप से छोटे छोटे पासों की व्यूह रचना से खेलती है, उनकी गोल स्कोरिंग क्षमता भी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन विश्व कप के मंच पर खिलाड़ी दबाव पर कितना काबू पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। कोलंबिया की टीम को इस ग्रुप में पुर्तगाल के बाद नॉकआउट की दावेदारी में शामिल किया जा रहा है। कोच नेस्टर लोरेंजो की टीम में बायर्न म्यूनिख के लुइस डियाज शामिल हैं। कप्तान जेम्स रॉड्रिग्स पर भी बड़ा दारमदार रहेगा। कांगो गणराज की टीम को अपने मजबूत रक्षण के लिए जाना जाता है। अफ्रीकी टीम 1974 के बाद विश्व कप में हिस्सा ले रही है। खास दिन वह किसी भी टीम के खिलाफ बड़ा उलटफेर कर सकती है। के ग्रुप के मैचों में 17 जून को पुर्तगाल और DR कांगो के अलावा उज्बेकिस्तान और कोलंबिया का मैच होगा। 23 जून को पुर्तगाल, उज्बेकिस्तान, जबकि कोलंबिया और कांगो की टीमें आमने सामने होंगी। 27 जून को पुर्तगाल कोलंबिया का मैच नॉकआउट प्रवेश के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ग्रुप L की बात करें तो इसमें पूर्व चैंपियन इंग्लैंड और यूरोप की बड़ी टीम क्रोशिया के अलावा पनामा और घाना की टीमें भी शामिल हैं। इंग्लैंड की टीम का 21वीं शताब्दी में अच्छा प्रदर्शन रहा है। टीम 2018 के फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची 3 बार, यानी 2002, 2018 2006 और 2022 के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। केवल एक बार 2014 में ग्रुप दौर में बाहर हुई थी। टीम की आक्रमण पंक्ति में

31 साल के अनुभवी हैरी केन के अलावा बुकायो साका एबरेजी शामिल हैं। मिडफील्ड में जूट बेलिंगम और डेक्लान राइस हैं। रक्षण में रीस जेम्स हैं। जर्मन कोच थॉमस रेचेल की दुनिया की चौथे नंबर की टीम को विश्व कप जीते 6 दशक हो चुके हैं। बात क्रोएशिया की करें तो क्रोएशिया की टीम ने पिछले 2 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है। 2018 में टीम फाइनल में पहुंचकर उपविजेता बनी थी और पिछली बार यानी 2022 कतर में हुए विश्व कप में टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संगम है। लुका मॉड्रिच अब 40 साल के हो चुके हैं। इसके अलावा कैम्ब्रिज भी 30 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। कुछ युवा खिलाड़ी भी हैं जिनमें 22 साल के मिडफील्डर पीटर सुचिच, 19 साल के लुका बोस्कोविच, 24 साल के जोसाको शामिल हैं। गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच अपने रक्षण और कौशल के कारण स्टार का दर्जा रखते हैं। दुनिया की 11वें नंबर की टीम क्रोएशिया की कोचिंग जेलेट को डैलेज कर रहे हैं। पनामा की टीम 2018 से पहले कभी विश्व कप नहीं खेली। 2022 में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन टीम इस बार विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। दुनिया में 34वें नंबर की टीम के कोच डेनमार्क के थॉमस क्रिस्टेंसन हैं। घाना की टीम की बात करें तो घाना की टीम का विश्व कप में श्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 में रहा, जब टीम अंतिम 8 में पहुंची थी, लेकिन पिछली बार 2022 में ग्रुप दौर में बाहर हो गई। टीम के कई खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं। 73वें नंबर पर मौजूद घाना की टीम ने 2006 में प्री क्वार्टर में ब्राजील को कड़ी टक्कर दी थी और 2010 में उरुग्वे से पेनल्टी में हारी थी। अगर टीम अपनी क्षमता से खेले तो किसी भी टीम को चौंका सकती है। ग्रुप एल से इंग्लैंड क्रोएशिया को मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जो 17 जून को आमने सामने होंगे। विदुषी, क्यों ना कुछ विश्व कप से जुड़े रोचक तथ्य जो हैं उन पर नजर डालें। तो फीफा विश्व कप में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब इसका आयोजन एक से अधिक देशों में किया जा रहा है। इससे पहले 2002 में जापान और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त मेजबानी की थी। मेक्सिको तीसरी बार फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले उसने 1970 और 1986 में आयोजन किया था। अमेरिका इससे पहले 1994 में मेजबानी कर चुका है। कनाडा को पहली बार मेजबानी का मौका मिला है। अभी तक सर्वाधिक बार विश्व कप ब्राजील ने जीता है। उसने ये करिश्मा 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में किया। जर्मनी और इटली की टीम भी 4-4 बार खिताब जीत चुकी हैं। पिछले चैंपियन अर्जेंटीना ने 3 बार ये खिताब जीता है। फ्रांस की टीम 2 बार 1998 और 2018 में ऐसा कर चुकी है। उरुग्वे ने भी 2 बार जीता है विश्व कप, 1930 और 1950 में। इंग्लैंड की टीम 1966 में चैंपियन बनी थी, जबकि स्पेन ने 2010 में विश्व कप जीता था। सबसे तेज गोल की बात करें तो ये रिकॉर्ड तुर्की के हकन सुकूर के नाम है, जिन्होंने 2022 के विश्व कप में महज 11 सेकंड में दक्षिण कोरिया के खिलाफ गोल कर दिया था। हालांकि दक्षिण कोरिया की टीम बाद में 3-2 से जीतने में सफल रही थी। ब्राजील के दिग्गज पेले ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार विश्व कप की ट्रॉफी उठाई। उन्होंने ऐसा 1958, 1962 और 1970 में किया, जब ब्राजील की टीम ने विश्व कप जीता था। जर्मनी सबसे अधिक 8 बार फाइनल खेलने वाली टीम है। मेसी अभी तक सर्वाधिक 26 मैच खेलने वाले फुटबॉलर हैं। जर्मनी के मिरोस्लेव क्लोज ने अभी तक सर्वाधिक 16 गोल किए हैं। फीफा विश्व कप में कई बार उलटफेर देखने को मिले हैं, लेकिन अगर कुछ खास उलटफेर की बात करें तो 1950 के विश्व कप में उरुग्वे ने मेजबान ब्राजील को हराया था। इसके अलावा सेनेगल ने 2002 में पिछले चैंपियन फ्रांस को उद्घाटन मैच में मात दे दी थी। इस बार कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अर्जेंटीना के मेसी या पुर्तगाल के रोनाल्डो 6 बार विश्व कप खेलने वाले फुटबॉलर बन सकते हैं। दरअसल दोनों ही उन फुटबॉलरों में शामिल हैं जो 5-5 विश्व कप खेल चुके हैं। मेसी के नाम अभी तक विश्व कप में 13 गोल हैं। अगर वे 4 गोल और करते हैं तो मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वैसे फ्रांस के एम्बापे 2 विश्व कप में अभी तक 12 गोल कर चुके हैं। 24 साल के हैं और सबसे युवा 15 गोल करने वाले फुटबॉलर बन सकते हैं। अर्जेंटीना 1962 के बाद खिताब की रक्षा करने वाली पहली टीम बन सकती है। 2022 विश्व कप में 172 गोल हुए थे। इस विश्व कप में ज्यादा 48 टीमें हैं और सबसे ज्यादा मैच 104 होने हैं। ऐसे में यह रिकॉर्ड भी टूट सकता है। नॉर्वे के इरलिंग हॉलैंड अपने पहले ही विश्व कप में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड बना सकते हैं। फीफा विश्व कप के बारे में 39 दिन तक चलने वाले रोमांच के

0: बारे में हमने बात की, पूर्व भारतीय फुटबॉलर आनंद बरुआ से, तो क्या कहा उन्होंने आइए जानते हैं।
1: फुटबॉल मतलब महाकुंभ है, पूरा यूनिवर्स देखता है, और इस बार एशियन कंट्रीज है, नौ टीमें हैं, तो मजा कुछ अलग ही है फुटबॉल का।
2: तो सर ये जो विस्तार है, अब मेसी और रोनाल्डो का पुराना जादू है और मबापे ने पिछले दो वर्ल्ड कप में दिखाया है, और कई नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं जो इस छाप छोड़ सकते हैं।
1: हाँ अभी छाप छोड़ सकते हैं, अभी अभी जर्मनी के दो प्लेयर हैं, एक ब्राजीलियन प्लेयर है जेवियर है, तो वो भी बहुत अच्छा स्कोरर है, लेकिन वर्ल्ड कप में क्या करेंगे वो देखना है। छोटे जो अंडर 19 या 20 के जो लड़के हैं, जो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं, फीफा अंडर 21 खेले हैं, तो वो नो डाउट अच्छा ही खेलेंगे, लेकिन सीनियर तो सीनियर ही होता है, इसमें थोड़ा अलग फुटबॉल का मजा आता है।
2: अर्जेंटीना पिछली चैंपियन है और फ्रांस पिछले दो बार से, एक बार 2018 में चैंपियन बना, 2022 में फाइनल में पहुंचा, तो अर्जेंटीना और फ्रांस और ब्राजील इनकी दावेदारी कितनी पुख्ता देखते हैं सर आप?
1: बहुत अभी ये बहुत ही आपने कठिन जवाब पूछा कि कौन सी टीम आएगी। देखिए पहले लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर पहला मैच जो एशियन कंट्री खेली, उन्होंने पांच गोल से हारे रशिया से और सऊदी अरेबिया ने, और सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया लास्ट वर्ल्ड कप में, तो खाली अर्जेंटीना एक ही मैच हारी लेकिन फाइनल वर्ल्ड कप लेके आई है, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम आएगी, लेकिन ये है कि हाँ ये बता सकते हैं कि ये लास्ट 8 तक आ सकती है, अर्जेंटीना आ सकती है, एंड बेल्जियम, जर्मनी भी अच्छी है इस बार, ब्राजील भी अच्छी है, स्पेन भी बहुत अच्छी टीम है, तो कम आंकना बड़ा मुश्किल है, बोल नहीं सकती कि कौन ऊपर आएगा, लेकिन जब तक क्वार्टर फाइनल मैच नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा।
2: नॉर्वे लंबे समय बाद आ रही है और हॉलैंड ने बड़ा एक रुतबा हासिल किया है इस विश्व कप से पहले, बड़े कद्दावर स्ट्राइकर हैं, और यमाल 22 साल के, स्पेन की बात की, इस 22 साल के यमाल को भी निगाहें रहेंगी,
1: एकदम रहेगी, जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनके ऊपर निगाह टिकी रहती है, अगर आप मेसी लो, रोनाल्डो लो, या आप ब्राजीलियन प्लेयर लो, नेमार लो, उनके ऊपर मैन टू मैन मार्किंग करते तो उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप में मेसी ने 6 गोल भी किए और 3 असिस्ट भी किए, और अभी जो आप उमर की बात कर रहे हैं वो एक अच्छा प्लेयर है, स्किलफुल प्लेयर है और गोल मारने भी बहुत सक्षम है, लेकिन जब मैन मार्किंग होता है वो कैसे खेलेंगे, मैन मार्किंग में दूसरा कौन सा प्लेयर फायदा उठाएगा, वो जो फॉर्मेशन होता है कोच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा गेम होगा इस बार वर्ल्ड कप में।
0: जी हाँ, अच्छा गेम होगा वर्ल्ड कप में। और फुटबॉल विश्व कप के बाद विदुषी क्यों ना बात T20 वुमेन वर्ल्ड कप की करें, जो 12 जून से इंग्लैंड के में खेला जाना है, और वहां वार्म अप मैच भी आज चल रहा है कार्डिफ में, जहां भारतीय महिला टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और 171 रन बना दिए 6 विकेट पर, इंग्लैंड को 172 रन का लक्ष्य मिला है, और ताजा अपडेट यह है कि छठे ओवर में भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 29 रन बनाए हैं। और अब बात T20 विश्व कप में भारतीय संभावनाओं पर।

पिछले साल भारतीय महिला टीम ने जब वनडे विश्व कप जीता था तो जश्न का यही माहौल था। वही जश्न और उत्साह इस बार T20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम के लिए प्रेरणा का नया सूत्र बनेगा। T20 विश्व कप 12 जून से इंग्लैंड में शुरू हो रहा है। विश्व कप के अब तक 9 संस्करण हो चुके हैं, लेकिन भारत को पहले खिताब की तलाश है। पिछले साल महिला वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम एक बार फिर चमचमाती विश्व कप की ट्रॉफी उठाने को बेताब है। भारत अब तक 4 बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। एक बार 2020 में भारतीय टीम फाइनल में भी पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 12 टीमें इस बार महिला T20 विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं। 24 दिन में 33 मैच खेले जाएंगे, जो कि इंग्लैंड के 7 स्थलों पर होंगे। अब तक सर्वाधिक 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता है। शुरुआती मैच 12 जून को बर्मिंगम में होगा, जो कि मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा। फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इस बार आईसीसी ने टीमों की संख्या 10 से बढ़ाकर 12 कर दी है। भारतीय टीम ग्रुप ए में है, जिसमें अन्य टीमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स हैं। भारत का पहला मुकाबला 14 जून को पाकिस्तान के साथ होगा, 17 जून को नीदरलैंड से, 21 जून को साउथ अफ्रीका और 25 जून को बांग्लादेश और 28 को ऑस्ट्रेलिया की टीम से टक्कर होगी। पिछले 6 महीने में भारतीय टीम ने श्रीलंका को घरेलू धरती और

0: की ताकत और भारतीय टीम की संभावनाओं पर हमने बात की पूर्व क्रिकेटर वैशाली माथुर से, तो क्या कहा उन्होंने आइए जानते हैं।
1: जी पहले मुझे ये लगता है कि जैसे अभी भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, सेम तरीके से वो उसी जोश के साथ ये वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। और सबसे खास बात क्या है, आज का मैच वार्म अप मैच चल रहा है और उसमें जिस तरह से मैं अभी देख रही थी, जिस वे में हमारी कैप्टन बताती है बॉलर को जब वो कहीं पर लैग करते हैं, जिस वे में वो बताती है और उसका इंप्लीमेंट करता है बॉलर, वो काबिले तारीफ है और इस तरह के कैप्टनशिप देखने को बहुत रेयर मिलती है।
2: तो भारतीय टीम के ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका है।
1: जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय टीम किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह से लास्ट वर्ल्ड कप जिताया था तो उसी तरीके से हम ये भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, क्योंकि हर क्रिकेट एक वन बॉल गेम है और अगर देखा जाए तो एक बॉल में पूरा क्रिकेट का प्रदर्शन बदल भी सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया टीम की, तो ऑस्ट्रेलिया टीम जितनी मजबूत है, अगर उससे ज्यादा मजबूती से हम कीपिंग और साथ ही फील्डिंग करके दिखाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम पैक कर लेंगे उनको, जैसे कि हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी किया था।
2: जी बिल्कुल, वनडे विश्व कप जीता हमने और अब T20 में मुकाबला है। और भारतीय बैटिंग की अगर बात करें, स्मृति मंदाना, आशिफ अली वर्मा और मध्य क्रम में कप्तान हरमनप्रीत, जैमिमा, ऋचा घोष, वो भी अच्छी फिनिशर है।
1: जी बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेंज ये हो रहा है कि भारती फुलमाली आई है और ये बहुत ही शानदार, अभी तक जो मैंने इनका रिकॉर्ड देखा है अभी लास्ट इंडिया ए टीम का, इन्होंने 5 से 6 इंडिया टीम मैचेस खेले हैं और उसके साथ साथ ये स्टेट के साथ भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती हुई नजर भी आई है। होपफुली टच वुड में यही कहूंगी कि भारती फुलमनी जिस तरह से हमारी शेफाली वर्मा करती है बैटिंग धुएंधार, इस तरह से इनकी साइड से भी वो धुएंधार बैटिंग करने को दिखने को भी मिले। और जैसे हमारी जैमी लास्ट मैचेस में बहुत एंड में जैसे वो खेलती है और उसका साथ निभाती है ऋचा घोष और स्मृति मंदना और शेफाली वर्मा जैसे ओपनिंग करते हुए नजर आती है, वो नजर ना लगे हमारी टीम को उसी।
2: जी स्पिनर अच्छे हैं हमारे पास, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा की बात करें, राधा यादव की बात करें, श्रीलंका की बात करें, श्री चढ़ने की बात करें।
1: जी बिल्कुल, हमारे पास दीप्ति शर्मा जो 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठी हैं, वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है। और उसके साथ साथ हमारी श्री चरणी जो आउटस्टैंडिंग अभी तक देखती नजर आई है और उन्होंने रिसेंटली अच्छा WPL में भी अच्छा किया है। और उसके साथ अगर मैं बात करूँ सिर्फ स्पिनर्स की ही नहीं, उसके अलावा अगर मैं मीडियम पेसर की बात करूँ रेणुका सिंह ठाकुर, वो जिस तरह से स्विंग निकालती हैं और वो उनकी स्विंग समझने में आसानी नहीं होती।
2: रेणुका के साथ अरुंधिता, क्रांति और नंदिनी भी हैं अगर फास्ट या मीडियम पेस की बात करें।
1: जी बिल्कुल, लेकिन मैं इसलिए रेणुका सिंह ठाकुर के बारे में बोल रही थी क्योंकि वो अभी एक्सपीरियंस प्लेयर भी रही हैं और उसके साथ अरुंधति रेड्डी एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन उनके साथ वो अगर जिस तरीके से बॉल डालती हैं, बाउंसर भी देती हैं, अगर वो लाइन लेंथ बना के रखेंगी तो डेफिनेटली हम
0: यार डेफिनेटली हम जीतने में सफल रहेंगे और भारतीय टीम अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करे। और विदुषी, इसके अलावा भी क्रिकेट की कई खबरें हैं आपके पास।
3: क्रिकेट के समाचारों से ही बात करते हैं, भारत ए के ट्राई नेशन सीरीज की विजयी शुरुआत की, जहां उन्होंने श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। श्रीलंका के डम्बोला में 9 जून से 21 जून 2026 तक खेली जा रही ट्राई नेशन ए सीरीज में भारत ने श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टीमों के साथ हिस्सा लिया है। यह टूर्नामेंट डबल राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला जा रहा है, जिसमें हर टीम एक दूसरे से 2 बार भिड़ेगी। सभी मुकाबले रंगीरी डम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। भारत ए की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं, जबकि टीम में वैभव सूर्यवंशी जैसे कई युवा और उभरते सितारे भी शामिल हैं। टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 8 रन से हराकर शानदार शुरुआत की है। इस स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 277 रन पर 6 विकेट भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 8 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज करी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 277 रन पर 6 विकेट का स्कोर बनाया। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, वैभव सूर्यवंशी 14 और प्रभसिमरन सिंह 2 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, जिसमें टीम का स्कोर 16 रन पर 2 विकेट हो गया। इसके बाद उप कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने और कप्तान तिलक वर्मा ने पारी को संभाला। ऋतुराज गायकवाड़ ने 114 गेंदों पर 101 रन की शानदार शतकीय पारी

0: लिए, जबकि तिलक वर्मा ने 60 रन का योगदान दिया। दोनों के बीच 150 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। अंतिम ओवरों में आयुष बदोनी ने 18 गेंदों पर 24 रन और सूर्यांश ने 14 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाकर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 278 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ए के मुकाबले में शानदार संघर्ष करना पड़ा। टीम ने अच्छी शुरुआत की और कप्तान सहान ने 72 गेंदों पर 74 रन की बेहतरीन पारी भी खेली। एक समय श्रीलंका को जीत के लिए अंतिम दो ओवरों में केवल 9 रन चाहिए थे और उनके हाथ में 3 विकेट शेष थे, लेकिन यह मैच का रुख यहीं पूरी तरह बदल गया। अंशुल ने सटीक यॉर्कर पर सहान अराचिगे को बोल्ड पर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद अरशद खान और अनुकूल रॉय ने दबाव बनाए रखा और श्रीलंका की पारी समेट दी। श्रीलंका ने अपने अंतिम 4 विकेट मात्र 8 रन के भीतर गवा दिए। श्रीलंका ए की पूरी टीम 48.5 ओवर में 269 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 8 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। अब इसी के साथ नजर डालते हैं भारत ए के अगले मुकाबले पर, जो 11 जून को भारत सामना करेगी अफगानिस्तान के साथ। यह मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारत अपनी जीत की ये लय बरकरार रखना चाहेगा, जबकि अफगानिस्तान ए टूर्नामेंट में पहला मुकाबला खेलेगा। भारतीय टीम की नजर इस बार भी ऋतुराज गायकवाड़ पर रहेगी उनके प्रदर्शन के चलते। वहीं सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह से भी बेहतर शुरुआत करने की अपेक्षाएं रखी जाएंगी। गेंदबाजी में अंशुल कम्बोज पर विशेष नजर रहेगी, जिनके डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी ने श्रीलंका ए के खिलाफ मैच का पासा पलट दिया था। दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम इन परिस्थितियों में खेलने का अच्छा अनुभव रखती है। कप्तान इमरान मीर की अगुवाई वाली टीम में दारविश रसूली, अनुभवी स्पिनर कैस अहमद जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर पिच की कंडीशंस की बात करें तो डम्बुला की पिच शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों की मदद करती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती जाती है और स्पिन गेंदबाजों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है।
1: क्रिकेट से चलते हैं तीरंदाजी की ओर। तुर्की के अंतालिया में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में आज भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम पदक की दहलीज पर पहुंची, लेकिन वहां उसे मेक्सिको के हाथों हार का सामना करना पड़ा। महिला वर्ग में दूसरी वरीय भारतीय टीम को पहले दौर में बाई मिली थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में अमेरिका ने 228-225 के अंतर से हरा दिया। महिला टीम में ज्योति सुरेखा, चिकिता और प्रतीका शामिल थी। पुरुष टीम जिसमें साहिल जाधव, कुशल और गणेश रत्नम शामिल थे। पुरुष टीम पहले दौर में चौदहवीं वरीय सिंगापुर को शूट ऑफ में हराया। क्वार्टर फाइनल में इटली को भी कड़े मुकाबले में शूट ऑफ में पराजित किया, लेकिन सातवीं वरीय चीन से 232-235 से हार गए। पदक मुकाबले में मेक्सिको से पार नहीं पा सके। और कंपाउंड पुरुष की बात करें तो मणिरत्नम और ऋषभ को बाई मिली, जबकि कुशल ने सऊदी के बिलाल अलावदी को हराया। मणिरत्नम ने दूसरे दौर में चाई सोंगी को 148-146 से पराजित किया। कुशल ने ऋषभ को शूट ऑफ में हराया। 40-40 की चार सीरीज में दोनों 146-146 से बराबरी पर थे, लेकिन शूट ऑफ में कुशल बेहतर रहे। साहिल को ऑस्ट्रिया के युआन कार्लिस ने पराजित कर दिया। तीसरे राउंड में मणिरत्नम का मुकाबला ऑस्ट्रिया के निको बेनेट और कुशल का तुर्की के ओलंपियन एमिकेरन से होगा। महिला वर्ग की बात करें कंपाउंड की, तो चारों भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा, प्रतीका प्रतीक, निकिता और परनीत कौर सभी को बाई मिली थी। दूसरे दौर में प्रतीका को चीनी ताइपे की चेन फांग यी ने शूट ऑफ में मात दी। निकिता को कोरिया की चियोन से शूट ऑफ में हार मिली। परनीत ने ऑस्ट्रेलिया की सुलेन बर्गर को 143-142 से हराया। तीसरा राउंड शुक्रवार को होगा, जिसमें परनीत के सामने स्पेन की एलेक्सा होंगी। क्वालिफिकेशन में प्रदर्शन के आधार पर टीम रैंकिंग बनती है। दोनों वर्गों में पहले 3 स्थानों पर रहे तीरंदाज टीम में शामिल होते हैं। इसी तरह पुरुष और महिला टीम के टॉप तीरंदाज मिश्रित टीम में खेलते हैं। पुरुष वर्ग में तीसरी महिला कंपाउंड टीम को दूसरी, पुरुष वर्ग में भारतीय टीम को तीसरी, महिला कंपाउंड टीम को दूसरी और मिश्रित टीम को पांचवीं वरीयता मिली है। क्वालिफिकेशन दौर में साहिल 10वीं और महिला वर्ग में ज्योति सुरेखा 7वें स्थान पर रही थी।
0: खेल खिलाड़ी के अगले समाचार आपके लिए आ रहे हैं बैडमिंटन के जगत से। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2026 की शुरुआत 9 जून से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित स्टेट स्पोर्ट्स सेंटर में हो चुकी है। यह प्रतियोगिता BWF वर्ल्ड टूर का प्रतिष्ठित सुपर 500 टूर्नामेंट है, जिसमें दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की। टूर्नामेंट में राउंड ऑफ 32 के मुकाबले खेले जा चुके हैं और विजेता खिलाड़ी अब राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। पुरुष एकल यानी मेन सिंगल की बात करें तो किरण जॉर्ज, टी मन्नीपेली और एस दयानंद अपने अपने मुकाम

0: मुकाबलों में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसी के साथ पुरुष एकल में भारत की चुनौती समाप्त हो चुकी है। वहीं महिला एकल में भारत का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने अपने पहले दौर का मुकाबला जीतकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई है। उनके अलावा मालविका बंसोड, तन्वी शर्मा, ईशा रानी बरुआ और तान्या हिम्मत ने भी जीत दर्ज करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आकृषि कश्यप इस दौर में बाहर हो गई हैं। पुरुष युगल यानी मेंस डबल्स की अगर बात करें तो एमआर अर्जुन और अमसा करुणन की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई है। मिश्रित युगल यानी मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। हालांकि मोहित जगलान और लक्षिता जगलान की जोड़ी अपना मुकाबला हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। अब नजर डालते हैं कल यानी 11 जून को होने वाले मुकाबलों पर, तो महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में दो ऑल इंडियन मुकाबले देखने को मिलेंगे। पीवी सिंधु का सामना ईशा रानी बरुआ से होगा, जबकि तन्वी शर्मा और मालविका बंसोड आमने सामने होंगी। इन मुकाबलों के बाद भारत की कम से कम दो खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेंगी। पुरुष युगल के राउंड ऑफ 16 में एमआर अर्जुन और अमसा करुणन की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी से भिड़ेगी। वहीं मिश्रित युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी जापान की जोड़ी के खिलाफ चुनौती पेश करेगी। भारतीय बैडमिंटन प्रेमियों की नजरें अब इन मुकाबलों पर रहेंगी, जहां कई भारतीय खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। बैडमिंटन से बात करने के बाद लिए चलते हैं आपको फुटबॉल की तरफ, जहां बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल श्रृंखला भारत बनाम तजिकिस्तान की। इसे फीफा फ्रेंडलीज में यहां भारत पुरुष फुटबॉल टीम ने तजिकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की मैत्री श्रृंखला खेली। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला 9 जून 2026 को तजिकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत और तजिकिस्तान के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत ने मैच में पहला गोल 25वें मिनट में किया। मोहम्मद सनान द्वारा हासिल किए गए फ्री किक पर फरूख चौधरी ने गेंद बॉक्स में भेजी। इसी के बाद मेजबान तजिकिस्तान ने लगातार दबाव बनाए रखा और 84वें मिनट में उन्हें पेनल्टी मिल गई। भारतीय बॉक्स के भीतर हैंडबॉल के बाद मिले इस अवसर को शहरुद्दीन ने गोल में बदलने स्कोर 1-1 पर कर दिया। इस परिणाम के साथ दो मैचों की मैत्री श्रृंखला में तजिकिस्तान ने एक जीत और एक ड्रॉ दर्ज किया, जबकि भारत ने दूसरे मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सकारात्मक संकेत दिए।
1: अब ट्रैक एंड फील्ड की बात करते हैं। ओसोलो में डायमंड लीग का छठा चरण हो रहा है। रोम चरण में भारत के सचिन यादव, जो कि भाला फेंक के भारत के उभरते हुए एथलीट हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था। इसके अलावा शंघाई का जो चरण था, वहां 3000 मीटर स्टेपल चेस में महिला धाविका पारुल चौधरी ने भागीदारी की थी। अगला चरण दोहा में होगा और लुसाने में अगस्त में चरण होना है। वहां भाला फेंक में भारत के बड़े एथलीट ओलंपिक चैंपियन रहे नीरज चोपड़ा के भाग लेने की संभावना है। और चलते चलते जो वार्म अप मैच इंग्लैंड और भारत की महिला टीमों के बीच खेला जा रहा है, उसमें बता दें कि 8वें ओवर में भारत ने 3 विकेट पर 49 रन बना लिए हैं और 172 रन का उसे लक्ष्य मिला है। तो अब घड़ी की सुइयां हमें ज्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं, तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा को और मेरे साथी विदुषी को
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के

0: 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभराए, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभराए। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, is underway in the national capital. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. All constituents of the alliance, besides the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are attending the meeting. The NDA meeting is also being attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's

0: हिंदी वार्ता कार्यक्रम के इस अंक में आज आप सुनेंगे बाल साहित्यकार दिनेश कुमार जांगिण सारंग से संतोष द्विवेदी मनुज की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, हिंदी कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपकी भेंट कराने जा रहे हैं प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार डॉक्टर दिनेश कुमार जांगिण सारंग जी से, जो कि भारतीय राजस्व सेवा 2011 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में दिल्ली में अपर आयुक्त जीएसटी के पद पर कार्यरत हैं। जांगिण जी, जैसे ही बाल साहित्य की बात आती है तो सबसे पहले मेरे मन में यही प्रश्न आ रहा है कि बाल साहित्य की ओर आपका रुझान कैसे बना? कोई खास घटना या कोई ऐसी प्रेरणा रही कि आपने बाल साहित्य को अपने रचना कर्म की विधान के रूप में चुना?
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपने सबसे पहले इस कार्यक्रम के अनुरूप बहुत उचित प्रश्न किया है। देखिए, बड़ी रुचि

0: भयंकर कहानी है। जब मैं पहली क्लास में था तो उस वक्त प्रैक्टिस करवाने के लिए पिताजी बाल साहित्य की पुस्तकें लाके देते थे और एक खाली कॉपी देते और कहते कि यही मेरे पास में बैठ जाओ और इनको लिखते रहो। हालांकि उस वक्त हमें ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन हुआ ये कि एक तो कोई आदमी पढ़ता है, एक आदमी उसको पढ़ के दोबारा लिखता है, तो धीरे धीरे जब लिखता है तो उसकी चीजें समझ में आने लगती है। तो इस तरह से कई महीनों तक लिखते लिखते बाल कहानियां कविताएं उनमें मेरी रुचि जागृत होने लगी और उसके बाद में 5-6 साल तक ये चीजें चलती रही। तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में वो चीजें बैठ गई और जब मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हुआ और 7वीं 8वीं में वहाँ और मुझे अच्छा माहौल मिला, तो उस वक्त जो राजस्थान में पत्रिकाएं आती थी तो मेरी इच्छा हुई कि जब आज तक इतने सालों से मैं इनको पढ़ रहा हूँ तो क्यों ना मैं खुद भी लिखूं बच्चों के लिए। और एक बच्चे के नाते मैंने बच्चों के लिए लिखना शुरू किया और हमारे जो गुरुजनगण है उन्होंने पहले कविताओं को पढ़ के कुछ सुधार कई बार कर दिया करते थे और वो इस तरह से पत्र पत्रिकाओं में छपने लग गए। तो जब पहली बार एक बच्चे की कहानी किसी पत्रिका में छपती है तो कैसी खुशी होती है आप उसका अंदाज लगा सकते हैं। तो इस तरह से लेखन की ये जो यात्रा है वो बाल साहित्य से ही शुरू हुई। हालांकि बाद में मैंने सभी विषयों पर सभी विधाओं में लिखा है, लेकिन बाल साहित्य की जो यात्रा 93 से लगभग 3 दशक जो है मुझे इसमें हो रहे हैं।
1: तो दिनेश जी, जैसे आपने बताया कि जो बाल साहित्य की ओर आपकी अभिरुचि है ये जब आप खुद स्वयं बचपन में थे तभी से ये शुरू हुआ और फिर इसके बाद आपकी 10 से अधिक किताबें भी इस विधा में हैं, बाल साहित्य पर हैं, गीत गजल कविताएं सभी कहानियां सभी विधाओं में आप लिखते हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जब बाल साहित्य में कोई व्यक्ति लिखना शुरू करता है या जब आप लिखते हैं तो क्या चीजें ध्यान में रखते हैं?
0: साहित्य और संगीत जो है एक व्यक्ति में उसमें रुचि पैदा करना बचपन से ही, ताकि वो एक अंदर से एक अच्छा इंसान बने, एक सच्चा इंसान बने, तो ये काम होता है। मनोविज्ञान के अनुसार ये है कि 12 वर्ष तक आप किसी बच्चे को सिखा सकते हो। तो शुरू में ही जो बच्चा जो सबसे पहले चीज सीखता है वो बाल साहित्य है, बाल कविताएं हैं। तो इस तरह की चीजों को लिखने के लिए, बच्चों को पहुंचाने के लिए, उनके कोमल जो खाली कोरा जो मस्तिष्क होता है उस पर उनको कोई समझाने के लिए अगर कोई माध्यम है तो बाल साहित्य है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बच्चों के लिए लिखना शुरू किया।
1: जैसे कि बाल साहित्य में भी कहानी कविता और बाल उपन्यास भी है, तो आपको इसमें से कौन ज्यादा रुचिकर लगता है, आपका किसमें ज्यादा काम है?
0: बच्चे जो पढ़ते हैं वो एक तो कविताएं जो है बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, रुचि लेके पढ़ते हैं, उनको सुनाते भी हैं और बच्चे देखिए ज्यादातर कविताएं याद भी करते हैं। उसके अलावा कहानियां पढ़ते हैं, तो मैं जो लिखता हूँ वो बाल कहानियां और कविताएं।
1: आपकी रचनाओं में जब आप लिखते हैं तो कल्पना, नैतिक मूल और मनोरंजन, इनका एक सम्मिश्रण या इनका संतुलन कैसे साधते हैं आप?
0: साहित्य का जो उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं है, सीख देना भी होता है। और जब हमारे पाठक बच्चे हों तब हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है कि कोई भी गलत शब्द गलत चीज उन तक नहीं पहुंचे। तो मैं जब लिखता हूँ अच्छे सरल शब्दों में मैं शुरुआत करता हूँ और हरेक कविता हरेक कहानी से कोई न कोई सीख सरल भाषा में बच्चों को देने की कोशिश करता हूँ।
1: जैसे आजकल एक बड़ा चलन चला है मिलेनियल और जेनजी का, कि जो 1980 के बाद के लोग या 1990 के दशक के जो बच्चे हैं या अब जो 2026 में जो बच्चे हैं उनकी रुचियां, उनके रहन सहन, खान पान, हर चीज में बदलाव आया है, तो उनके बाल साहित्य में भी कुछ बदलाव आया है?
0: बदलती तकनीकी, बदलते समय के अनुसार कुछ नहीं, बहुत बदलाव आया है। आप देखेंगे पहले बच्चों के पास मनोरंजन के नाम पे या तो बाल साहित्य हुआ करता था या कुछ ऐसे खेल हुआ करते थे जो बालक आपस में खेलते थे। टीवी भी बहुत कम होता था, तब रुचियां अलग थी, तब साधन अलग थे। लेकिन अब मोबाइल की वजह से, टीवी की वजह से, इंटरनेट की वजह से बाल साहित्य से या जो हमारे परंपरागत खेल है उनसे बच्चों का ध्यान हट गया। तो ऐसे में बच्चों को किताबों की ओर मोड़ना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, बड़ा चैलेंजिंग कार्य है हम लोगों के लिए भी। तो उसका कारण यही है कि बच्चों के पास और खूब तरह के साधन आ गए, तो इसलिए साहित्य की तरफ उनका जो लगाव है दिनों दिन सिमटता जा रहा है, दिनों दिन कम होता जा रहा है।
1: तो जैसे आपने कहा कि जो आज के बच्चे हैं उनका रुझान तो कम हो रहा है, पर उस रुझान को कैसे बनाए रखें, मुझे ये आपसे जानना है।
0: उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो माता पिता की है। घर में वो बच्चों के हाथ में फोन ना देखे, अगर बाल साहित्य की किताबें पकड़ाएं और उनसे प्यार से कहें बेटा आप ये पढ़ो, उनको थोड़ा सा समझाओ। एक बार अगर बच्चे की रुचि साहित्य में विकसित हो गई फिर वो अपने आप आपसे किताब मांगेगा। इसलिए माँ बाप की इसमें बड़ी भूमिका है, जो संरक्षक हैं हम लोगों की बड़ी भूमिका है कि हम बच्चों को वो चीज मुहैया कराएं और उनको निर्देशित करें, उनको प्यार से समझाएं, उनको कहें कि भाई इस तरह की ये चीजें आप पढ़िए तो जो है इसमें कुछ सुधार आएगा।
1: मुझे लगता है कि एक और चीज भी है कि जैसे आज की भागम भाग की जो दुनिया है जब पेरेंट्स दोनों वर्किंग है तो उसमें पेरेंट्स को ये समय निकालना भी अवश्यंभावी है कि वो समय निकालें और बच्चों को इसमें प्रवृत्त करें और उससे पहले खुद भी हों।
0: देखिए ये बहुत बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है कि आजकल अगर दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग है तो वो बच्चों को समय अगर नहीं दे पा

0: बातें, तो ये बाद में दोष देते हैं। तो ये हमारी परवरिश का हिस्सा है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को कुछ न कुछ कैसे ही करके 24 घंटे, देखिए सभी के पास होते हैं, जो मान लो उन्होंने अनेक कार्य किए वो भी इन 24 घंटों में किए, तो हमें अपने बच्चों के लिए, हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो और कोई भी नहीं है, हमारे बच्चे हैं, तो उन पे अगर हमने समय का थोड़ा इन्वेस्ट नहीं किया, निवेश नहीं किया, तो बाद में हमें ही पछताना पड़ सकता है। तो उस पछतावे को रोकने के लिए और बच्चों को अच्छा संस्कारी बनाने के लिए ये आवश्यक है बाल साहित्य की ओर उनका झुकाव बढ़ाएं, उनका रुझान बढ़ाएं।
1: आजकल जैसे एक चीज और देखते हैं जहांगीर जी हम, कि जैसे पेरेंट्स काम करते हैं और बच्चों को डे केयर में छोड़ते हैं स्कूल के बाद, तो आपको क्या लगता है कि जब डे केयर में जो बच्चे रहते हैं, क्या वहां पे कुछ एक काम करने की जरूरत है? जैसे वहां एक्टिविटीज तो कराते हैं, कलर कराते हैं, कभी कुछ खेल खिलाते हैं, वहां पे बाल साहित्य की गतिविधियों को भी लाने की आवश्यकता है।
0: पेरेंट्स को ये चाहिए कि जब वो डे केयर में अपने बच्चों को ले जाएं तो उनसे एक निवेदन करें कि कुछ बच्चों को जैसे कार्टून बुक्स हैं या इस तरह की चित्रों वाली किताबें जिनसे बच्चे आकर्षित हो वो किताबें दें, तो बाल मस्तिष्क पे इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर वो चीजें वहाँ उनको मिलेगी तो इनकी तरफ निश्चित ही झुकाव इनका बढ़ेगा। और आपका ये सुझाव भी अच्छा है कि इस तरह के डे केयर जितने भी है, जब बच्चों के जहाँ भी इस तरह की चीजें हैं वहाँ उनको संचालकों को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए।
1: जैसे मेरा और आपका जो दौर था वो किताबों का दौर था, आज के दौर में हम डिजिटल दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए बच्चे दोनों काम कैसे कर सके, बाल साहित्य का भी कार्य करें और डिजिटल दुनिया से पिछड़े भी ना।
0: आजकल कई पत्र पत्रिकाएं जो है वो डिजिटल फॉर्म में आने लग गई है, माँ बाप को ये चाहिए कि वो डिजिटल फॉर्म में जो भी पत्र पत्रिकाएं बच्चों की आ रही है उनको दे। अगर वो मोबाइल देख रहा है, टेबलेट देख रहा है, तो उनको बच्चों को कहें कि भाई कुछ 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट दिन में एक बार ये भी देख और उनमें से कुछ चीज पूछे, केवल ये नहीं कि देखें, कुछ न कुछ चीज पूछते रहे ताकि उनको लगे कि हमारे माँ बाप हमें देख रहे हैं, इनको इनकी जानकारी है, तो वो मन लगा के पढ़ेंगे। एक बार की बात है, मन में एक बार रुचि अगर पैदा हो गई फिर आप चाहो तो भी नहीं रोक सकते।
1: तो जैसे आप कह रहे हैं मन में एक बार रुचि पैदा हो गई, जैसे आपके पिताजी ने आपको किताबें दी और आप में रुचि पैदा हुई और आपका पूरा कार्य ही बाल साहित्य को आप समर्पित हैं एक तरह से, तो अगर जो बच्चे लिखना चाहते हैं आज की तारीख में, जिनको रुचि है साहित्य में, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे लिखें, उनको क्या कहेंगे आप, कैसे लिखना शुरू करें?
0: आजकल कई इस तरह की वेबसाइट आती है जो बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी किताब छापते हैं, वो जो भी लिखते हैं उसको एडिट करते हैं। पहले तो इतने साधन नहीं थे, आजकल तो बहुत साधन है। मेरा जो बेटा है 10 साल का, उसने आज से एक साल पहले जो उसने यात्राएं की उस पर किताब लिखी, एक पब्लिकेशन ने उसको छाप भी दिया। तो इस तरह से आजकल बड़ा अच्छा माहौल है, साधन भी है, बस यही है कि बच्चों में रुचि जागृत करना उस ओर वो जरूरी है। और वो माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप पहले गुरु होते हैं, तो हमारे बीइंग पेरेंट्स ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम बच्चों को इस ओर थोड़ा सा आकर्षित करें।
1: अगर मैं आपसे जानना चाहूँ बाल साहित्य का भविष्य कैसे देखते हैं आप?
0: बाल साहित्य का भविष्य बड़ा उज्जवल है, आजकल बच्चे डिजिटल फॉर्म में भी पढ़ने लिखने लगे हैं और कई प्रकाशक डिजिटल फॉर्म में किताबें प्रकाशित कर रहे हैं। तो जरूर जब भी बच्चा किसी भी फॉर्म में एक बार जब पढ़ने लगेगा, सीखने लगेगा, तो उसकी रुचि अपने आप जागृत होगी और सब तरह की किताबें फिर पढ़ेगा और लिखेगा।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो हम भी इस आशा के साथ ही इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं कि बाल साहित्य से संबंधित जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुनेंगे वो अपने बच्चों को बाल साहित्य की ओर प्रवृत्त करेंगे और खुद पेरेंट्स भी पढ़ेंगे। डॉक्टर दिनेश कुमार जहांगीर सारंग जी, आप हमारे स्टूडियो आए और बाल साहित्य पर इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हिंदी वार्ता कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे बाल साहित्यकार दिनेश कुमार जहांगीर सारंग से संतोष द्विवेदी मनुज की बातचीत। प्रस्तुति संयोग श्रीनाथ दीक्षित का था और प्रस्तुतकर्ता थे संतोष द्विवेदी मनुज।

0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रिणं प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलीयसभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारणमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् प्रस्तावेऽस्मिन् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन राष्ट्राय प्रधानमन्त्रिवर्यस्य निरन्तरसेवायाः ऐतिहासिकं सोपानं चर्चितः अस्ति तथा च अनेकान् प्रतिबद्धतान् सङ्कल्पाञ्च निरूपयति।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
0: श्री वैष्णवः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
1: माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
0: श्री वैष्णवः अवदत् यत् अद्य मन्त्रिमण्डलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179,100,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए, एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्य अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य सीएनजी इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च एलपीजी सम्पर्कान् पीएनजी सम्पर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पक्तिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्य वायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः, तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिक गृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लंघनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गुलिका प्रहारे नागरिकानां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए अब सुने कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: हाँ बंदर हैं।
1: देखिए, आज हम अपने भाइयों के लिए कुछ जानकारी लेकर आए हैं और कुछ मनोरंजन भी लेकर आए हैं। और आज जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज तक के भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का बने रहने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए, आज उन्होंने जो बातें करी हैं या देश के लिए जो उनका समर्पण है कि भाई एक भी छुट्टी ना लिए बिना उन्होंने जो देश के लिए किया है वो सराहनीय है।
0: बिल्कुल, देखिए उन्होंने हमारे भाई बहन भाइयों के लिए या किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका जिनमें जैसे कि जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार है, जिसमें बैंकिंग, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजना का व्यापक विस्तार है। और इसी के साथ साथ डिजिटल इंडिया अभियान भी है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत हम अपने भाइयों को बता दें कि ऑनलाइन सेवा और डिजिटल अवसंरचना का को भी बढ़ावा दिया गया है, बुनियादी ढांचे का विकास है, स्वच्छ भारत मिशन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है, कृषि क्षेत्र में पहल है और डिजिटल इंडिया अभियान है, बुनियादी ढांचे का विकास है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं किया
1: बिल्कुल,
0: है।
1: आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुई हैं उनमें से सबसे लीक से हटकर काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने।
0: जी
1: और कहते हैं ना कि भाई जो कोई प्रमुख शासक होता है आमतौर पर उनकी जो छवि होती है वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका इम्तिहान होता है वो जनता ही बताती है कि भाई ये कैसे नेता है।
0: बिल्कुल
1: यानी कि 3 बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बहुत ही सराहनीय है।
0: बिल्कुल, तो इसी से संबंधित हम अपने भाइयों को सुनवाते हैं एक बाइट, और बाइट दे रहे हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री हैं, और सुनते हैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे निर्वाचित पीएम बने हैं, तो उस पर ये बाइट।
2: निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे कार्यकाल तक लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका कार्यकाल लगातार जारी है और 12 वर्ष भी अद्भुत है, विकास के लिए अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। जनता का काम ही उनके लिए राम काज है। इन 12 सालों में अधोसंरचना का जैसा विकास हुआ है उसकी कल्पना करना तक कठिन था। वो प्रधान सेवक है, जन सेवक है, जनता की सेवा ही उनके लिए भगवान की पूजा है। और आम आदमी के कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण हो, युवा हो, किसानों का कल्याण हो, गरीब हो, उन्होंने अनेकों योजनाएं बना के क्रियान्वित की है। वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। समय के बहुत पहले बहुत दूर की सोच लेते हैं और उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं देश के हित में। मैन ऑफ आइडियाज है, लगातार देश और देश की जनता के बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत डिटेल और बहुत एडवांस प्लानिंग करते हैं, जिससे सफलता सुनिश्चित हो। राष्ट्र हित उनके लिए सर्वोपरि है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है वो। जनता के लिए, आम आदमी के लिए वो दिन और रात काम करते हैं और उनके मन में स्नेह, आत्मीयता और संवेदना है। लेकिन देश के दुश्मन और जनता के दुश्मन, चाहे वो आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो या और कोई ऐसे तत्व जो देश और जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं। आज आप देख रहे हैं आतंकवाद समाप्त हो गया है, नक्सलवाद का नामो निशान नहीं बचा है। राष्ट्रहित सर्वोपरि तो है ही, लेकिन इसके साथ विश्व बंधु भी है वो। वसुधैव कुटुंबकम के भाव को हृदय में रखने वाले, इस मंत्र को हृदय में रख के काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानवता के कल्याण के लिए अनेकों काम किए हैं। 100 से ज्यादा देशों को कोविड का वैक्सीन देने का काम हुआ है। जहां जहां दुनिया में संकट आता है, सबसे पहले भारत मोदी जी के नेतृत्व में मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। सचमुच में उनका नेतृत्व हमारे लिए वरदान है। सफलतम हो अपने देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए वो लगातार काम करते रहे।
1: जी बिल्कुल, लोकेंद्र भाई अभी हमारे भाई सुन रहे थे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के सबसे लंबे निर्वाचित पीएम बने, और ये बता रहे थे श्री शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं। और अभी हम अपने भाइयों को सुनवाते हैं प्यारा सा उपदेश।
0: कलाकार हैं ओमवीर आर्या से।

0: बहुत ही सुंदर उपदेश था, कमल की जड़ में खिलते हैं। बिल्कुल
1: हाँ
0: सही बात थी ये, क्योंकि हर आदमी में कुछ ना कुछ गुण अवगुण सब में ही होते हैं,
1: बिल्कुल
0: कोई संपूर्ण नहीं होता है। ये तो देखिए बात होती है हर व्यक्तित्व की।
1: हाँ
0: और आगे बढ़ते हैं, और देखिए जैसे कि मौसम बदल रहा है और गर्मी का बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता जा रहा है, और जैसे इस मौसम में हमें खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होता है अपने स्वास्थ्य को लेकर।
1: बिल्कुल वन्ना बहन। और देखिए इसमें जैसे कि मौसम में बदलाव है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जो मौसम हमारे जो मौसमी फल हैं और इन चीज़ें जो हम जिससे हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक ना पहुँचे, मतलब स्वास्थ्य सही रहे, उसके लिए हमें चीज़ों का सेवन भी करना चाहिए। और इस मौसम में पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। और इसके अलावा नारियल पानी हुआ, नींबू पानी हुआ, छाछ, लस्सी और ताज़े फलों का रस शरीर को हाइड्रेट रखने की में मदद करता है।
0: बिल्कुल, एक ऐसी ही जानकारी हम अपने भाइयों को दिलवाने वाले हैं डॉक्टर मनीषा से, और जिससे बातचीत कर रही हैं यमुना बहन। और हमारे जो आज का विषय है ये है कि गर्मियों के मौसम में आपका खान पान कैसा हो, और
1: और यह
0: विशेषज्ञ हैं।
1: डॉक्टर मनीषा वर्मा जो कि डाइटिशियन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रही हैं यमुना गर्ग।
0: जी हाँ, तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: स्वस्थ मन अच्छे स्वास्थ्य की पहचान होती है। जब तन स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ और शांत होगा, लेकिन जब मौसम बदलता है तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। खास करके गर्मी के इस मौसम की बात करें तो इसकी तपिश और लू के थपेड़े चेहरे को झुलसा ही देते हैं, और साथ ही पानी की कमी हमें अस्वस्थ कर देता है। तो बात आती है कि इस गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा हो कि हम हमेशा तरोताजा और स्वस्थ नजर आए। इसी विषय पर विस्तार में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनीषा वर्मा, जो कि आहार विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में। डॉक्टर मनीषा जी, आपका हमारी कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: जैसा कि गर्मी का मौसम चल रहा है और खान पान की अगर हम बात करें तो इस गर्मी के मौसम में थोड़ा सा तो बदलाव अपने खान पान में करना ही होगा। खान पान हमारा कैसा होना चाहिए इस गर्मी के मौसम में?
3: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। जैसे कि गर्मी का मौसम आ गया है, इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा बॉडी में भी आपके एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, खाना पचाने के लिए हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, बाहर बाहर भी गर्मी है, तो बॉडी को ठंडा रखना, जो हम आम भाषा में बोलेंगे हाइड्रेट रखना, बहुत जरूरी है गर्मी के मौसम में। हाइड्रेट से हम जानते हैं जैसे कि तरल पदार्थ जो है वो आपको अपने खाने में

0: एक हेल्दी ड्रिंक ले सकते हैं, उसी में ही आप छाछ मट्ठा ऐड कर सकते हैं, सत्तू ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाएगा, जो बीच में विटामिन्स मिनरल्स हैं वो भी मिल जाएंगे, और जो बॉडी में फाइबर है उसकी भी कमी ये पूरी कर सकते हैं। तो ये तीन तरह के बीज जो है आप गर्मी में इनका सेवन कर सकते हैं। और आपको जो खाना है थोड़ा लाइट लेना चाहिए,
1: जी करनी है।
0: संतुलित आहार की बात कर रही हूँ। लाइट खाने में जैसे कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा हैवी फूड ना लें, आप फ्राइड फूड्स कम से कम इस्तेमाल करें। जो भी खाना हो वो घर का खाना बना होना चाहिए, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि उससे पचाने भी मुश्किल होगा। पहले ही गर्मी के कारण शरीर को ज्यादा ऊर्जा करनी पड़ती है प्रोड्यूस, तभी वो आपकी पाचन शक्ति है जो कैलोरीज बर्न होती हैं। तो इसके लिए आपको सादा भोजन, घर का भोजन और बासी ना हो, और उसमें तरल पदार्थ जरूर इंक्लूड करने चाहिए ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे।
1: अच्छा, जैसे आपने बात की हाइड्रेशन की बात की कि तरल पदार्थ लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो तरल पदार्थ लेने पे उनको कुछ ऐसी शिकायत होती है जैसे जोड़ों में दर्द है या शरीर में कोई परेशानी होने लग रही है, तो बहुत ठंडा चीज वो नहीं लेते हैं। तो तरल पदार्थ अगर उन्हें देना हो तो किस तरीके का, उन्हें तरल पदार्थ में क्या ऐसा दे जो उनके लिए फायदेमंद हो?
0: सबसे पहले मैं बात करूंगी, जैसे कि आप गर्मी बहुत है, बाहर बहुत टेम्परेचर है आज दिनों में,
1: जी
0: कोई तुरंत आप घर पे आके डायरेक्ट फ्रिज से पानी मत पीजिए। पहले अपने बॉडी को नॉर्मल होने दीजिए, टेम्परेचर को नॉर्मल होने दीजिए, फिर ही। और कोशिश करें जैसे पुराने समय पे हमारे बुजुर्ग करते थे कि मटके का पानी पीते थे, जो
1: बिल्कुल
0: कि
1: सही कहा
0: बहुत
1: आपने।
0: ही हेल्दी एक ऑप्शन माना जाता है। उससे
1: जी
0: हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिल जाते हैं और वो नेचुरली ही ठंडा हुआ है। अब ये आजकल थोड़ा मैं देख रही हूँ काफी जगह पे कि मटका रखना स्टार्ट तो किया है घर में सबने, किचन में कुछ ना कुछ मंगवा के आजकल जैसे
1: जी
0: ऑनलाइन मंगवा रहे हैं।
1: जी
0: बट ये है कि उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखें, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, जो 2 साल के हैं, 3 साल तक, उन्हें कोशिश करो फ्रिज का पानी मत दो। जैसे आपने बात की तरल पदार्थ में, जैसे हेल्दी ऑप्शंस आएंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगी ठंडा पीने का, मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना। ठंडा पीने का मतलब कि आपको जो जंक ये चीजें आ गई, फ्रूट जूसेस हो गए, जो जिसमें बहुत ज्यादा शुगर है, पैक्ड आइटम्स है, उनसे दूर रहना है। आपको घर पे बनाए हुए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि आम पन्ना हो गया, गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए कांजी बनाई जा सकती है।
1: कांजी।
0: हाँ, तो इसमें आपको अलग अलग तरह के गुलकंद डाला जा सकता है आपको, जैसे दूध के साथ, वो भी शरीर को ठंडा रखने में हेल्प करता है। नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, आम रस हो गया, तो ये सब छाछ मट्ठा, ये सब आप जो भी हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस है वो ले सकते हैं। और दूसरी बात रही, कईयों को पी के कुछ खट्टे से अगर जोड़ों में दर्द की आप बात कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हर इंडिविजुअल पर्सन पे। अगर आपको कुछ ऐसी शिकायत उससे लग रही है तो आप उसे बंद कर सकते हैं, अदरवाइज ये सबके लिए ही रिकमेंडेड है कि जो हेल्दी ऑप्शंस है वो अपने आप डाइट में इंक्लूड करें। बट ये बात है कि गर्मी के मौसम में ज्यादा अगर आप मसालों का सेवन करेंगे, लहसुन का सेवन करेंगे, उसमें ना मेटाबॉलिज्म बॉडी का ज्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी को ज्यादा डाइजेस्ट करने के लिए हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जो मैं बार बार आपको बताई जा रही हूँ कि उससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मसालेदार कम चीजें हो, कम तेल में हो, थोड़ा सादे की तरफ, और फल सब्जियों पर ज्यादा फोकस करके और तरल पदार्थ पे ज्यादा फोकस करके, यही आपको कुछ मॉडिफिकेशंस अपने डाइट में करने हैं।
1: हमने देखा कि महिलाएं अपनी स्किन को लेकर के बड़ा केयरफुल रहती हैं कि मेरी त्वचा खराब ना हो, लेकिन आज जो गर्मी का मौसम इस समय जो चल रहा है तो उसमें तपिश पड़ती है, जो हमारा चेहरा वो झुलसता है, तो ऐसे में स्किन को तरोताजा सुंदर बनाए रखने के लिए क्या ऐसा कुछ खाएं जो अपनी डाइट में लें कि वो वैसे के वैसे कंटिन्यू बना रहे?
0: बिल्कुल जी, जैसे हम कहेंगे कि गर्मियों में मौसम में सबसे ज्यादा जो तपस है 10 से आपके 4 के बीच में होता है, यूजुअली 12 बजे के बाद कोशिश करो घर से ना निकले। बट कई बार कुछ काम ऐसे है, कोई बाहर काम कर रहा है, कि कोई अलग अलग प्रोफेशन में जाना पड़ता है, तो सबकी बेस्ट स्किन को बचाने के लिए विटामिन सी जिसमें ज्यादा होता है, विटामिन सी युक्त जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए,
1: जी
0: संतरा हो गया हमारा, नींबू हो गया, और बहुत सारी चीजों में, फल सब्जियों में विटामिन सी पाया, आंवला हो गया, ये सारे स्किन जो आपकी है उसमें कोलाजन प्रोड्यूस करते हैं, जो स्किन बनाने में हेल्प करता है।
1: जी
0: तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो सब्जियों और फलों में मिलते हैं, और विटामिन सी रिच जो आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेके उसको अपनी स्किन को, त्वचा को वैसे बरकरार रख सकते हैं।
1: जी ये गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें देखा जाए तो गर्मियों में होने वाली बहुत सी बीमारियां भी सामने आती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां इसके बारे बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं।
0: बिल्कुल जी, जैसे हमने आम भाषा में सुना होगा कि लू लग गई है, हाँ बच्चों में लग जाती है, बूढ़ों में लग जाती है, बड़ों में भी।

0: तो इसमें क्या होता है कि आपको लगने से हीट स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, यूजुअली आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी हीट स्ट्रोक यूनिट बनाई गई है कि लू लगने से अगर किसी को हो तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता
1: जी
0: है। और अदरवाइज इसमें क्या होता है कि उल्टियां लगना, दस्त लग जाना, तो ये सारे जो भी आपकी गट हेल्थ है ना, गट हेल्थ इससे डिस्टर्ब होती है गर्मी से, डिहाइड्रेशन से।
1: जी
0: तो इससे ये बीमारियां, उल्टियां, दस्त लगना, हीट स्ट्रोक होना, चक्कर आना, डिजीनेस होना, तो ये सारे इसी के ही लक्षण हैं। तो
1: जी
0: आपको इससे बचने के लिए यही है कि बहुत ज्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखना है और अच्छा और स्वस्थ खान पान करना है।
1: बिल्कुल। एक गर्भवती महिला की हम बात कर लें, अभी गर्मी का मौसम है तो गर्भवती महिला जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको लेकर भी वो परेशान है, तो ऐसे में गर्भवती महिला अपना और अपने उस गर्भस्थ शिशु की कैसे उसका ध्यान रखें, इस बारे में कुछ बताएं।
0: इसमें क्या होता है, गर्भावस्था में हमें ज्यादा कैलोरीज की, प्रोटीन की जरूरत होती है। आपको आहार तो संतुलित लेना है, एक पौष्टिक थाली ही लेनी है जिसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ हो, फल सब्जियां सब कुछ हो, बट
1: जी
0: साथ साथ हाइड्रेशन का, वही जो मैं बार बार बता रही हूँ कि जो आपको हेल्दी ड्रिंक्स लेनी है उसका पूरा ध्यान रखना है। तो वो ये कर सकते हैं कि अगर उनको ऐसी गर्मियों में पानी पी के, या नींबू पानी पी के, या एक नारियल पानी पी के, तो उसमें वो कुछ प्रोटीन तीन सोर्सेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उसमें कोई नींबू पानी पी रहे हो तो 2 चम्मच चना सत्तू ऐड कर लो, कुछ प्रोटीन अंदर गया आप जो
1: बिल्कुल
0: का आटा ऐड कर लो, चना सत्तू ऐड कर लो, कोई प्रोटीन पाउडर जो भी है वो आप ऐड कर सकते हैं।
1: और
0: बिल्कुल
1: खास करके उम्र विशेष की हम बात करें, जैसे करें बड़े बुजुर्गों की, तो किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे मौसम में अगर देखा जाए तो उनका खान पान कैसा होना चाहिए और क्या सावधानी बरतें वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के।
0: तो उसको खान पान में सबसे पहले तो जो उनकी गाइडलाइंस है, उनको फ्राइड नहीं खाना, जिस जिस परहेज रखना है, अगर शुगर वाला व्यक्ति है जिसको मधुमेह है तो उसको आम वगैरह से परहेज रखना है, तो वो कोशिश करे कि इस सीजन में ज्यादा मैंगो और आम पन्ना इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहे, है ना, शेक्स
1: अच्छा
0: वगैरह नहीं ले सकते, तो
1: जी
0: उनके
1: जी
0: लिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट शुगर कम है वो वाले, हमारे पास छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, ये सब चीजें वो ले सकते हैं। बाकी मैं बात करूंगी कि जितना भी आपको जो प्रोसेस्ड फूड आ रहा है, प्रोसेस्ड फूड मतलब जो भी आपका पैकेट में बंद है, जो कुदरती तौर पे नहीं उगा प्लांट पे, पैकेट में बंद है, जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं,
1: जी
0: ट्रांस फैट्स पाई जाती हैं, वो आपको नहीं लेना, तो वैसे ही आपके लिए वो नुकसानदायक है। ऊपर से गर्मी के कारण उसको, शरीर को पचाने में और एनर्जी चाहिए, अगर शरीर को एनर्जी चाहिए तो आपकी बॉडी में से पानी कम होगा,
1: जी
0: अगर बॉडी में से पानी कम होगा तो आपका खून का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, और आपकी बॉडी को खून का काम है कि हर पौष्टिक तत्व पहुंचाना, अगर उसका ही वॉल्यूम कम होगा तो आपकी बॉडी को जो जरूरी पौष्टिक तत्व है वो आपके ऑर्गन्स को नहीं मिल पाएंगे,
1: जी
0: और ये आपकी डिहाइड्रेशन बॉडी पे इफेक्ट करेगी, जिसका इफेक्ट आपकी किडनी पे भी पड़ सकता है और ऑर्गन्स पे भी पड़ सकता है। जैसे
1: जी
0: कई बार हमने देखा होगा कि डिहाइड्रेशन के कारण उसमें किडनी स्टोन वगैरह होने के भी चांसेस होते हैं। तो
1: जी
0: ये आप सारी जड़ आपकी आ गई कि आपका खाना अगर स्वस्थ होगा, पौष्टिक होगा, हाइड्रेट आप रहेंगे, उस तरह से फॉलो करेंगे, तो आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम होगा, अच्छे पौष्टिक तत्व मिलेंगे, डिहाइड्रेशन के चांसेस कम होंगे।
1: फास्ट फूड की हम बात कर लें, बहुत ज्यादा फास्ट फूड बच्चे खा रहे हैं, नहीं मानते हैं, तो अगर कार्यक्रम में सुन रहे हैं बच्चे भी अगर सुने तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो सोचें और समझें कि वाकई इसका कितना बड़ा नुकसान है इस चीज को खाने का, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, फास्ट फूड बच्चे ना लें, क्या ये
0: आपने
1: जानना
0: नोटिस
1: चाहते
0: किया होगा कि फैटी लीवर, एक आपने टर्म सुनी होगी कि
1: हैं।
0: हर तीसरे या चौथे इंसान को अभी फैटी लीवर की शिकायत हो गई है,
1: जी
0: ग्रेड 1 हो गया, 2 हो गया, इवन कि अभी बच्चों में बहुत पाया जा रहा है, जिसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, चीनी बहुत ज्यादा होती है। तो ये तीनों चीजें जो सबसे ज्यादा नुकसान करेंगी एक्सेस में, ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में ही पाया जाता है, तो जितने भी पैकेट बंद है, इससे बेटर है कि आपका जो भी खाना हो वो घर का खाना हो, घर पे ही बच्चों को स्नैक्स बना के दीजिए, उसमें अलग अलग ऑप्शंस ऐड कीजिए, प्रोटीन सोर्सेस दीजिए, दालों का, स्प्राउट्स का, ये सब बना के दीजिए, साथ में फल और सब्जियां बच्चों की डाइट में इंक्लूड करें, और खास करके गर्मियों के मौसम में उन्हें हाइड्रेट रखें, उन्हें अच्छी अच्छी ड्रिंक, पुदीना डाल के, तरबूज डाल दिया, खीरा डाल दिया, पुदीना डाल दिया, मिक्स करके जूस भी दे सकते हैं, अगर बच्चे पूरा फल नहीं खा रहे तो उससे उनका हाइड्रेशन बना रहेगा। तो जैसे आप करोगे वैसे बच्चे फॉलो करेंगे, अगर घर में आप पैकेट लाकर रखोगे तो बच्चों तो खाएंगे ही खाएंगे, तो पहले आप खुद करेंगे वैसे ही बच्चे बनेंगे। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे फैमिली को एक अच्छा संतुलित भोजन लेना है, हाइड्रेट लेना है और स्वस्थ रहना है।
1: कुल मिलाकर आपकी थाली ऐसी होनी

0: चाहिए जिसमें सारे पौष्टिक तत्व हो
1: बिल्कुल
0: और
1: जी,
0: संतुलित आहार हो और आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर ना डाले।
1: बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि हम अब कुदरत से जितना दूर होगे उतना नुकसान होगा, वही बात है। जितना आप पैकेट की तरफ जाओगे, प्रोसेस्ड की तरफ जाओगे, तो आपकी बॉडी हेल्थ उतनी डिटीरियोरेट होती जाएगी। जितना कुदरत की ओर जाओगे उतनी ही मन को शांति मिलेगी, तन को शांति मिलेगी और खाना आपका अच्छा होगा, स्वस्थ रहेंगे।
0: मतलब प्रकृति के साथ चले, उसे संतुलन बना करके चले। घर से बाहर निकलते समय इस गर्मी के मौसम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या लेकर के चलना चाहिए?
1: बिल्कुल जी, एक तो सबसे पहले है कि कॉटन के कपड़े पहने, टोपी पहन सकते हैं, मुंह ढक सकते हैं, छाता रख सकते हैं कि हम धूप से बचे, और उसके साथ अपने पानी की बोतल जरूर कैरी करनी है आपको। एक ना एक कोई खीरा या कोई ना कोई फल साथ में कैरी कर सकते हैं, पर पानी के लिए छाछ मट्ठा कुछ भी अपने साथ कैरी करना है आपको हमेशा। और कोशिश करनी है कि आपको घर से पहले तरल पदार्थ कोई भी है पी के जाए और घर पर पहुंच के पहले उसका ही सेवन करें जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस गर्मी के मौसम में अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेट रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और कोई भी प्रोसेस्ड या बाहर की आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब इनका सेवन मत करें, और नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, मट्ठा, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे।
0: डॉक्टर मनीषा जी, आप आहार के बारे में, खास करके गर्मी के मौसम में आपका खान पान कैसा हो, इस विषय पर आपने अपनी जानकारी हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: लोकेंद्र भाई, देखिए बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी डॉक्टर साहब ने दी, और जानकारी का विषय था गर्मियों के मौसम में आपका खान पान कैसा हो, और जानकारी दे रही थी डॉक्टर मनीषा वर्मा, और जो कि आहार विशेषज्ञ हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, और इनसे बातचीत कर रही थी यमुना गर्ग।
3: बिल्कुल वंदना बहन, देखिए कितनी अच्छी महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे जो युवा साथी भी हैं और श्रोतागण भी हैं, इन इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देंगे, और हमें गर्मी में किस तरह का भोजन करना है, किस तरह की डाइट लेनी है, तो उससे संबंधित ये जानकारी थी।
2: बिल्कुल, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
3: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के

0: दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी के राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इसी बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ICC ने डॉ सिंह को बताया कि वह अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: राम राम। देखिए लोकेंद्र भाई,
1: हाँ
0: हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी भूमि को लेकर बहुत ही संवेदनशील रहते हैं कि हम अपनी जो जमीन है इसको किस तरह से उपजाऊ बनाएं, किस तरह से इसकी हमारी जो उपज है वो बहुत अच्छी हो। और जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको तरह तरह से बताते भी रहते हैं कि उनको अपनी मिट्टी में क्या करना है, मिट्टी की जांच कब करवानी है, पानी की जांच कैसे करवानी है, और उसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं, और जैविक खेती की ओर हमें किस तरह कदम बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको बताते रहते हैं, और हमारे जो किसान

0: है वो बहुत जागरूक हो गए हैं इस टाइम पे, और वो जैविक खेती की तरफ भी अब अपना कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगर हम यूरिया या इस तरह की चीजें डालेंगे तो हमारे खेतों को सिर्फ नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा।
1: बिल्कुल वंदना बहन, देखिए खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य है कृषि भूमि की उर्वरता, उत्पादकता और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना।
0: जी
1: देखिए वंदना बहन, वर्तमान समय में मिट्टी की संरक्षण, रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक उपयोग, जल की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ खेत को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में खेत बचाओ अभियान किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल संरक्षण, फसल चक्र अपनाना तथा जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल, और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग जो करता है, खेत की आवश्यकता के अनुसार खाद को संतुलित करता है, मिट्टी की जांच करना, यानी कि जो हमारे मिट्टी भूमि के उर्वरक हैं उनको सुरक्षित रखने के
1: हाँ
0: लिए
1: हाँ
0: संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना, किसान की आय को बढ़ाना, ये
1: बिल्कुल
0: सब मुख्य बातें हैं जो कि हमारे किसान भाई जान चुके हैं।
1: हाँ। और देखिए इसी के लिए हमारे हमारे ये कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं, प्रशिक्षण शिविर लगाए गए हैं, किसान मेले, रेडियो कार्यक्रम में और डिजिटल माध्यम के जरिए किसानों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, और इससे किसान बेहतर निर्णय लेने के सक्षम होते हैं और अपनी खेती को अधिक लाभकारी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए कहते हैं ना कि भाई जब हमारी भूमि स्वस्थ रहेगी, जैविक खेती होगी और उसमें अच्छे उत्पाद पैदा होंगे तो हमारा स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलवायु सब कुछ अच्छा
1: बढ़िया
0: होगा।
1: होगा, तो हम बातचीत और भी करेंगे। तो सबसे पहले सुनना आते हैं उपदेश कलाकार हैं जोगिंदर सिंह से।
0: जी।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जोगिंदर सिंह से ये उपदेश।
1: बिल्कुल वंदना बहन, देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं,
0: जी हाँ
1: जिसमें से एक योजना है कृषि विपणन अवसंरचना योजना।
0: जी
1: देखिए किसान विपणन अवसंरचना योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य है वंदना बहन, किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादकों के भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाना।
0: बिल्कुल
1: इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि बाजारों, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउसिंग, ग्रेडिंग एवं और इसके अलावा गुणवत्ता प्रशिक्षण केंद्र जैसी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हमारा किसान भाई अपनी उपज को किसी भंडारण में, किसी गोदाम में या किसी कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं कुछ दिनों के बाद, तो
1: हाँ
0: उन्हें ये एकदम से उनके दिमाग में नहीं होता कि जो हमारे

0: फसल है उसे तुरंत बाजार में बेचना है।
1: हाँ
0: जब भी उनकी फसल का अच्छा दाम होता है वो तब उसको बेच सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि ये सस्ते दामों में जो बेचने की आफत सी हो जाती है ना कि भाई ये फसल उगी है तो उसे तुरंत बेचना है, तो सस्ते दामों से उन्हें मुक्ति मिल गई। और जब उनका दाम उन्हें सही रेट मिलता है उनकी आय के अनुसार, वो तब उसे बेच सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो भंडारण से यही एक फायदा होता है, और हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए भी एक रोजगार का अवसर है, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सब्सिडी भी देते हैं।
1: हाँ, तो उसका हम हमारे भाई जो हैं सब्सिडी का भरपूर लाभ उठाएं और इसकी योजना का भी लाभ उठाएं। और
0: जी,
1: तो हम
0: जो हमारे सामान्य किसान भाई हैं उनको 25% से 33% तक सब्सिडी दी जाती है, और जो एससी या अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको 33% की वित्तीय सहायता और सब्सिडी भी
1: अच्छा,
0: दी जाती
1: उसमें
0: है।
1: भी है उनके
0: जी
1: लाभ।
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो ये जब भी हम कोई गोदाम बनाते हैं तो कुछ पैसा हमें सरकार देती है
1: बिल्कुल
0: और कुछ हम अपना लगा के वो गोदाम बना सकते हैं। तो ये आपका एक रोजगार का भी अवसर हो जाता है कि किसानों की जो फसल होती है उसमें जमा हो जाए।
1: बिल्कुल। तो ये तो रही योजना, और इसका हमारे भाई बहन जरूर फायदा उठाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं विनोद कुमार की आवाज़ में ये उपदेश।

जमींदारी चाले रह हो जा, बिन जमींदारी चाले रह हो जा, रहती कती मरोड़े नहीं। इंदर बरसे घोर घोर के जल ओटने ठोर नहीं। जिस मानस की धरती बिक जा, भाइया धोरे ठोड़े नहीं। मैं फिल बैठी रह भाइयों

अभी हमारे भाई सुन रहे थे उपदेश विनोद कुमार से, और चलते चलते एक और उपदेश सुनते हैं सुरेश चंद गोला से।

चेका दमनी चेर ग्यार हो नीचे।

0: लोकेंद्र भाई, अभी
1: हाँ
0: हमारे भाई सुन रहे थे सुरेश चंद गोला की आवाज में ये उपदेश। और देखिए, आज हमने अपने भाइयों से बहुत सारी बातें करी हैं, और इसी के साथ अब हम टाइम खत्म होता जा रहा है और हम अपने भाइयों से लेते हैं विदा। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर, संयोजक शिवनंदन लाल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। और आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं गजल और कव्वाली का कार्यक्रम और आगाज करते हैं जगजीत साहब की इस खूबसूरत सी गजल के साथ।

0: तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगु क्या है। अर्ज किया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजल और कव्वाली का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और देश विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन और राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने युवा संगम के 6ठे चरण में युवाओं से भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, सार्वजनिक नीतियों

0: से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज किशनगंज स्थित पिंजरापोल गौशाला में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन तथा देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को बिना किसी अवकाश के निरंतर राष्ट्र सेवा का अनूठा उदाहरण बताया।
2: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज केवल जन प्रतिनिधियों ने ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों नागरिक प्रधानमंत्री के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते वह महसूस करती हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं, जो सराहनीय है।
2: महिला होने के नाते जरूर मैं कहूंगी कि मोदी जी की हर योजना की धुरी में जो एक महिला रहती है, आज उन्होंने करोड़ों शौचालय बना के जिस तरीके से हर बेटी को सम्मान दिया, करोड़ों उज्ज्वला के कनेक्शन देके जिस तरीके से हर बहन का जीवन सुलभ बनाया, मुद्रा योजना के माध्यम से, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी युवतियों को संबल दिया, आज मैं देश की आधी आबादी महिलाओं की ओर से भी मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि देशवासियों का सौभाग्य है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे समय तक देश की सेवा की है और उनके नेतृत्व में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।
3: विश्व में भारत का डंका तो बज ही रहा है। हमारे देश 11-12 वर्षों में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वह ऐसे ही देश की सेवा करते रहे। जो व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहता, अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, तो उनकी सोच से ये आता है कि हमको देश के किसान, देश के पिछड़े हुए, देश के आदिवासी कोने कोने तक जाना है और देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाना है।
1: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो देश के लिए गौरव की बात है।
4: 140 करोड़ की जनता के लिए जो उन्होंने अनवरत जो सेवा की है, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, कोई वर्ग अछूता नहीं है प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से जो लाभान्वित ना हुआ हो। पूरी दिल्ली की जनता भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कर्मशील, स्वस्थ जीवन, दीर्घायु के साथ और जनता की सेवा में लगे।
1: इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने रोहिणी स्थित श्री श्री राधा माधव इस्कॉन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और महाआरती का आयोजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, दूरदर्शी नेतृत्व और देशवासियों के गहरे और निरंतर विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बैठक के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया।

0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र सेवा के सतत 4,399 दिन तथा सेवा सुशासन और जन कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन सभी के लिए राष्ट्र सेवा, तप, त्याग और कर्म निष्ठा की प्रेरणा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में विकसित भारत का संकल्प जन आंदोलन बन चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आज विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना कर देश की उन्नति, समृद्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज लोक निवास में युवा संगम चरण 6 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से आए 65 युवा प्रतिभागियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया। इस कार्यक्रम का समन्वय भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्थान आईआईटी दिल्ली द्वारा किया गया। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर श्री संधू ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित युवा संगम देश की विविधता में एकता को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण को रूप देता है और युवाओं को पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क तथा प्रौद्योगिकी के 5 प्रमुख आयामों के माध्यम से देश को निकटता से समझने का अवसर प्रदान करता है। युवाओं के साथ संवाद के दौरान उपराज्यपाल ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, सार्वजनिक नीतियों में हो रहे बदलावों तथा युवाओं के लिए उपलब्ध नई संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे देश के भविष्य के सबसे अहम हितधारक हैं। श्री संधू ने अपने सार्वजनिक जीवन और कूटनीतिक अनुभवों को भी युवाओं के साथ साझा किया तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। ईशानी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज अमृतसर स्थित भाई वीर सिंह साहित्य सदन का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने आधुनिक पंजाबी साहित्य के जनक भाई वीर सिंह के आध्यात्मिक और साहित्यिक योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भाई वीर सिंह जी की आध्यात्मिक और साहित्यिक विरासत आज भी समाज को प्रेरित कर रही है तथा हमारी सांस्कृतिक और नैतिक चेतना को सशक्त बना रही है। रक्षा खरीद और उत्कृष्टता के लिए नवाचार और लघु तथा मध्यम उद्यम एमएसएमई सहित स्टार्टअप्स के लिए परीक्षण प्रक्रियाओं पर एक कार्यशाला कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य रक्षा ढांचे में एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाना है। इस 2 दिन की कार्यशाला का उद्देश्य संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से उद्योग प्रतिभागियों की समस्याओं का समाधान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। दिल्ली पुलिस ने छावला थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आज करीब 22 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में इस्तेमाल की जा रही एक 4-पहिया वाहन भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई मादक पदार्थों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति के अंतर्गत की गई है। इस मामले की आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक साइबर ठगी मामले में सहकारी बैंक के उप प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर एक फर्जी अकाउंट के संचालन में शामिल होने का आरोप है, जिसका संबंध देशभर में दर्ज 159 साइबर ठगी की शिकायतों से पाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के बैंक खाते के जरिए करीब 67 करोड़ रूपये के लेन देन का पता चला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज अपने कार्यकाल में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास

0: में सबसे लंबे समय तक निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के ऐतिहासिक अवसर और केंद्र सरकार के जनसेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। श्री खंडेलवाल ने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास, स्नेह और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसेवा की भावना ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा विकसित भारत का संकल्प जन भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।
1: देश की जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और जिस विश्वास के भरोसे प्रधानमंत्री जी ने देश की विकास यात्रा प्रारंभ की है, भारत विश्व गुरु बनेगा, ये सब देशवासियों के स्नेह, प्रेम और विश्वास के कारण ही संभव हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ उसके लिए योजनाएं लेकर के आई है। जहाँ कुछ नई योजनाएं तय होंगी, वहाँ हम सब कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की योजनाओं को घर घर तक लेकर के जाएंगे ताकि आम जनता को भी उसका लाभ मिल सके।
0: राजधानी में दोपहर में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने तथा मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और देश विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन और राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने युवा संगम के छठे चरण में युवाओं से भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, सार्वजनिक नीतियों में हो रहे बदलाव तथा युवाओं के लिए उपलब्ध नई संभावनाओं पर चर्चा की। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक 8:00, ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकंड। आइए अब सुनते हैं गीत मालिका फिल्म संगीत का हमारा एक कार्यक्रम, जिसमें कार्यक्रम का आगाज आज हम कर रहे हैं रेखा भारद्वाज की गाई इस खूबसूरत सी आवाज के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत खूबसूरत से गीतों का जो एक गुलदस्ता लेकर हम आप सभी के साथ जुड़े हैं। आइए अगली पेशकश सुनते हैं सुरेश वाडेकर की आवाज में।

0: ओ जाने वाले, लता जी की आवाज में इस खूबसूरत सी पेशकश को आपने सुना। और कार्यक्रम रहा गीत मालिका, जिसके अंतर्गत आज खूबसूरत से गीतों को पिरोकर हमने आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की। और एक बार पुनः गीतों का यही काफिला दोबारा से चलेगा रात 11:10 पर। तो फिल्म संगीत का जो आज का गीत मालिका कार्यक्रम है, उसे हम अब यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 kHz पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है।

0: भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
0: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है।

0: आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
2: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से

0: अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it

0: Condemned the attack on the commercial vessel Setebello off the coast of Oman today. External Affairs Ministry said in a statement that of the 24 Indian crew on board, 21 Indians have been rescued so far and 3 Indians are reportedly missing. It informed that the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at the Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo. Sindhu's pre-quarterfinal match will be against compatriot and world number 39, Isharani Barua. Tanvi Sharma also showed signs of returning to form with a 21-12-22-20 win over world number 11, Chiu Pingchian of Chinese Taipei. Tanvi will face Malvika Bansod. The India Meteorological Department today said a wet spell is likely over northwest India till the 13th of this month under the influence of western disturbance. It has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northwest and northeast India during the next 5 to 7 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai. Zameer Razvi se khabrein suniye. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। वजारत दिफा पैरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफे के लिए 20 एडवांस्ड जैमर्स खरीदेगी। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दिलाया कि मुल्क की 140 करोड़ शहरियों की उमंगों को यकीनन पूरा किया जाएगा और जोर देकर कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के एतमाद को मुस्तहकम किया है। जनाब मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के आवाम ने कांग्रेस की एतमाद शिकनी के बाद एनडीए सरकार में अपना एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क के आवाम ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज रफ्तार से होती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला जाना इस बात का इजहार है कि एनडीए की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और उनकी सिमत सही है।
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि ये आवाम की पुख्तगी और शऊर का सबूत है कि उन्होंने मुझे इतने

0: इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के आवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वजीर आजम मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगे मील से वजीर आजम मोदी की फर्ज शिनासी के साथ खिदमत और क्यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वजीर आजम मेड फ्रेडरिसकन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने बरसों से भारत की इकतसादी और तरक्याती पेशरफ की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वजीर आजम टोनी एबॉट ने कहा कि भारत ने वजीर आजम मोदी की क्यादत वाली सरकार के तहत बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजली और सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी लाई है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाई के, पपुआ न्यूगिनी के वजीर आजम जेम्स मरापे और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने भी वजीर आजम मोदी की बदलाव की हुक्मरानी, आलमी खिते जुनूब के लिए उनकी कोशिशों और सबकी शमूलियत और इकतसादी एतबार से गोनागोनियत वाले भारत के विजन को सराहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन दे।
2: ये 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारी अफराद ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज से फायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हिसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सके, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, आप थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1,60,00,000 से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तकरुलनामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप्स कायम किए गए हैं, जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। पीएम सेतु स्कीम के तहत 1,000 आईआईटीज की जदीद कारी के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम पीएलआई के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरखास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमूई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है, जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर का अंदाजा है। मंजूरशुदा दरखास्त गुजार पीएलआई स्कीम के आम शोबों से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें मैनमेड फाइबर, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल शामिल हैं, जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मकाम दिला

ने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 770 करोड़ रुपए के कर्जेजात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम से कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निजाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में दो बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
2: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की

0: कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़े पैगाम लगे, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत यूएन जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ये कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे, तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है। यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे, हमने यहां, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण

0: विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था। सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है। अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शेखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान वो आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने आप किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म एमएसपी रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने एमएसपी को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक आ, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है, वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म।

0: का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
1: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हुई। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी छोटे से दुकान में भी यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
0: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड एग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा

0: स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है। इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है। और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है, उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले। और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है, वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में, उसमें कोई सीमा ही नहीं है। आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारी चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे हैं। ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल, वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है। भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है, या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई भी बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना, भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया अभी अगले हफ्ते ही जल्दी ही हमारे बीच में जून 21

0: आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भाव, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात देवानंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं, वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक। डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियाद

0: ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिन के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया है और अब वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों के

मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टेलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम माटी के रंग सुन रहे थे आप। आज के कलाकार थे श्री अनिमेश देव। आपने सुने बंगाली गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे श्री कार्तिक का राग बागेश्वरी में गायन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आपने सुना श्री कार्तिक का राग बागेश्वरी में गायन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है।

0: 25%. Indian Railways has taken a major step to enhance passenger safety by launching nationwide fire safety audits at railway stations. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas requiring improvement to enhance passenger safety and protect railway assets. The Ministry of Railways said the audit will cover all critical safety infrastructure, including station buildings, electrical installations, air conditioning and ventilation systems, emergency exits and firefighting equipment. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Inés Castillo, 21-13, 21-11 in the first round clash of the tournament. Sindhu's pre-quarter-final match will be played against compatriot and world number 39, Isha Rani Barua. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसे लेकर आज हम आप सभी के साथ जुड़े हैं।
2: मैं हूँ आप सभी के साथ वंदना दत्त और मेरे साथ है मेरी साथी
1: सविता, और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और आज हम दोनों की जोड़ी आपके लिए कुछ बातें, कुछ नगमे लेकर आए हैं, और इस नगमों की सौगात में कहीं ना कहीं दिल की बात आपकी भी होगी और हमारी भी। जुड़ेंगे कुछ अल्फाज तो बनेगा ये खूबसूरत सा कारवां,
2: और अल्फाज ऐसे कि जो सीधे दिल में उतर जाए। और हम बात कर रहे हैं उन अल्फाज की जिन्हें जब शायरों ने अपनी जुबान दी, अपने शब्द दिए, तो वो बन गई शायरी। जैसे बशीर साहब कहते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।
1: और इसी बात को अगर निदा फाजली साहब के शेर में कहा जाए तो हम ये भी कर सकते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी दुनिया से जाएं या ना जाएं, दुनिया के साथ रहते हुए भी हम कितना कुछ कर सकते हैं। और ये जो दुनिया है वंदना, ये किस तरह से जो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्ति का एक माध्यम भी देती हैं, और अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं अल्फाजों से होती है, और अल्फाज जब शेर के रूप में आते हैं, जब शायर उसे अपने शब्दों में पिरो देता है, अपने शेर में पिरो देता है, तो वो अल्फाज जो है उसके मायने ही बदल जाते हैं।
2: और शायरी के साथ साथ ये सुकून और भी पड़ जाता है जब सुरीले नगमे हो जाए। तो कौन सा पहला नगमा सविता तुम हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को सुनाने वाली हो?
1: चलिए तो आगाज करते हैं इस गीत के साथ, क्योंकि आप सभी को हमारी तरफ से एक सलामी तो होनी ही चाहिए ना।

0: या फिल्म का नाम भी सलामे इश्क, गीत गाया कुमार, ये सोनू निगम, श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला ने। और अब बात करें एक बार फिर से इसी बात की कि जब हम गीत सुनते हैं तो उन गीतों के साथ कितनी बार ऐसे शब्द या कुछ ऐसे शेर हमें याद आ जाते हैं जो उस गीत के साथ रिलेट कर जाते हैं, यानी उसके साथ लगता है कि ये गीत और ये जो शेर है वाकई एक दूसरे के साथ जुड़ से जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने सविता। और अगर यादों की बात हो, और यादों में कहते हैं कभी कभी कुछ अंधेरे भी यादों का हिस्सा होते हैं और कभी कभी कुछ उजाले भी। ठीक ऐसे जैसे बशीर साहब कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
0: जी हाँ, और इसी बात को निदा फाजली साहब भी कुछ इस अंदाज में कहते हैं। वो कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यानी सफर जो है जिंदगी का वो वाकई बड़ा लंबा है, और यहाँ पर सफर में धूप भी होगी। धूप का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है कि जो जिंदगी के उतार चढ़ाव है ना, वो तो आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत है, क्योंकि जज्बातों की भीड़ बहुत है, और इस इन जज्बातों की भीड़ में जब आप आगे निकल सको, किसी के साथ जुड़ सको, तो फिर जो आपके जीने का अंदाज होता है वो बदल जाता है। जब किसी का साथ मिल जाता है वंदना, तो कहीं ये बात भी हो जाती है कि जो सफर होता है जिंदगी का वो आसान भी हो जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सविता तुमने। और किसी का साथ मिल जाए और सफ़र में, और अगर वो आपका सच्चा हम सफ़र हो जाए ना, तो यकीन मानिए ज़िंदगी का कोई भी पड़ाव हो, कैसी भी स्थिति हो, वो सब आप उसके साथ पार कर सकते हैं।
0: और वंदना, जैसे आपने कहा कि वो आपकी ज़िंदगी का हम सफ़र बन जाए, कभी कभार हम जो इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं हम सफ़र, इस शब्द से लोग अपने अपने अलग अलग मायने निकाल लेते हैं। लेकिन अगर माना जाए तो ये कह सकते हैं कि जो ज़िंदगी में आपके साथ चले, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ऐसी शायद हो सकता है कोई ऐसी मान्यता हो आपकी जो आपके साथ चलती है, जिसकी वजह से आप अपना सफर पार कर पाते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को पार कर पाते हैं, तो वही हमारा हम सफर बन जाता है।
1: बिल्कुल
0: हम
1: ठीक
0: सफर
1: कहा।
0: कोई शख्स नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, हम सफर वो है। अगर आप एक सोच के जरिए भी चल रहे हैं तो वो भी आपका सफर
1: आपका
0: आसान कर
1: अपना
0: देती है।
1: भरोसा।
0: जी, यही सफर है, और इस सफर को हम यूं ही रवानगी देते रहेंगे। और अब कार्यक्रम में हम अगला गीत सुनते हैं, और अगला गीत भी कहीं ना कहीं उस सफर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिंदगी का जो सफर होता है, इस सफर में कई पड़ाव आते हैं, उन्हीं में से एक पड़ाव प्रेम का भी रहता है, और प्रेम में जब दीवानगी हद से पार हो जाती है, तो शायद यही बात कही जा सकती है।

0: जी हाँ, अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाज़ में बहुत ही सुंदर सा एक गीत। और ये गीत कह रहा था कि भाई जब प्रेम होता है किसी के साथ तो किस तरह से अगर वो अपना लिया और हमें मिल गया तो ठीक है, वरना जिंदगी जीने का जो उत्साह होता है वो ही खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने सविता। और कभी कभी ये जो उत्साह होता है ना आपको जीवन में, आपसे जुड़े हुए कुछ लोग भी देते हैं आसपास इर्द गिर्द, और इस समय हम दोनों अगर यहाँ बैठे हैं तो हमें वही उत्साह हमारे लिसनर्स से मिल रहा है, क्यों सविता?
0: बिल्कुल सही कहा। और कुछ जो लिसनर्स हैं यानी कि जो हमारे श्रोता हैं वो हमारे को ऐसे सुनते हैं वंदना, कि जब हम बोलना शुरू करते हैं हम पहला शब्द बोलेंगे और वो उस शब्द से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज कौन इस सीट पर बैठा हुआ है और किसके साथ वो आज जुड़ने वाले हैं। यानी वो हमारे नाम का पहले से ही अंदाज़ा लगा चुके होते हैं कि ये व्यक्ति होगा, क्योंकि जैसे हम शब्द बोलते हैं शब्द के जरिए शायद हम उनके दिल या दिमाग पर छप जाते हैं।
1: और ये हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार भी होता है, क्योंकि
0: जी
1: अगर हम यहाँ आए और हमारी आवाजों से हमारी पहचान हो जा रही, क्योंकि यहाँ पर बैठने का मतलब भी होता है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान
0: पहचान
1: है।
0: है।
1: और बबलेश पनवर साहब, आपका तो तहे दिल से शुक्रिया कि जब भी हम बोलते हैं या कुछ भी कहने आते हैं उससे पहले आप पहले शब्द से, जैसे सविता ने कहा, अंदाजा लगा लेते हैं। और यही जो रूल है वो लागू होता है।
0: हमारे एक और श्रोता हैं जो हमें चंडीगढ़ सिटी से संदेशा भेजते हैं। हम जैसे ही पहला शब्द बोलते हैं वो पहचान जाते हैं कि उनके साथ आज कौन जुड़ा है। जी हाँ, ये हैं सतीश अनेजा जी और इनके साथ हैं बिमला अनेजा जी, जो हमारी आवाज़ से ही हमारे नाम का अंदाज़ा लगा चुके होते हैं। और कभी ऐसा नहीं हो वंदना कि इन लोगों ने हमारे नाम को गलत लिख कर भेजा हो, ये हमेशा सही नाम को सुनते हैं और सही नाम का चुनाव करके उसे लिखकर भेजते हैं। और जब बड़ा अच्छा लगता है संदेश पढ़ने में, जब नाम के साथ आपको संबोधित किया जाता है तो हमें भी एक उत्साह महसूस होने लग जाता है कि आप हमें सुन रहे हैं तो हमें इस कार्यक्रम को और भी बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाना है। फिलहाल तो आप तक पहुंचाते हैं हमारा आज का अगला शेर।
1: बिल्कुल, और ये शेर भी मुझे बहुत पसंद आया जो जिंदगी के फलसफे की बात करता है कि घरों पे नाम थे और नाम के साथ ओहदे थे। घरों पे नाम थे और नाम के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया मैंने पर कोई आदमी ना मिला।
0: और इसी तरह से निदा फाजली साहब कहते हैं कि नक्शा उठाकर कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। फिलहाल तो ये कहेंगे कि सबसे मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन वंदना जितने लोगों के साथ मुलाकात हुई है वो मुलाकात वाकई ही बेहद खास हो गई है। चलिए, जब मुलाकात इतनी खास है तो दिल में एक अलग सा उत्साह भी महसूस होता है, और उत्साह जब महसूस होता है तो लगता है ना कि जैसे हम उड़ रहे हैं।

0: जी हाँ, भंवरों को भी गाने का अधिकार है, और जब भंवरे गाते हैं तो कहीं ना कहीं भंवरे इस बात का परिचायक बन जाते हैं कि जहाँ फूल है वहाँ भंवरे होंगे। और भंवरों से जब बात आती है तो कहीं इश्क की जुबां में ये कहा जाता है कि जो शायर है वो भंवरों के माध्यम से प्रेम संदेश भेजते हैं।
1: बहुत खूब सविता। और शायरी की बात करें तो भाई बहुत अजब खेल है ये भी, चंद से अल्फाजों में जिंदगी का जो हर कहें इमोशंस होते हैं ना, वो उसमें बयां हो जाते हैं। और बात करें हंसने की, मुस्कुराने की, दिल टूटने की, या फिर कहीं दिल लगने की। वहीं एक और शेर मुझे याद आता है, ये अजीब शख्स है नाराज होके हंसता है, अजीब शख्स है ये नाराज होके हंसता है, मैं चाहता हूँ खफा है तो खफा ही लगे।
0: बिल्कुल सही। और इसी तरह से अगर ये कहें कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। वाकई इश्क और मोहब्बत कुछ ऐसे शब्द ही नहीं है, कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिसे जितना बयां करने की आप कोशिश करेंगे शायद आप उसमें उलझ जाएंगे, क्योंकि इनमें न जाने इतनी गहराई है। और जिन शब्दों की अगर बात करें, ये शब्द जितनी गहराई से उकेरे जाते हैं, मानने को तो देखा जाए तो बहुत ही साधारण से शब्द है इश्क, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है वो कितनी गहरी हो सकती है। ये जब हम किसी भी गीत को सुनते हैं तो लिखने वाले की जो कलम ने उसे एक अलग तरीके से उकेरा होता है, बस वही शय जो है वो उस गीत की पहचान बन जाती है।
1: और या फिर यूं कहें कि उसकी आत्मा बन जाती है।
0: जी हाँ, और जब इश्क होता है तो छेड़छाड़ होनी भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि बिना छेड़छाड़ के शायद इश्क अधूरा सा महसूस होता
1: बिल्कुल।
0: है।

0: जहाँ मोहब्बत सीखने के भी कई तरीके हैं। अगर आप मोहब्बत करते हैं किसी से भी, अगर आप प्रकृति से मोहब्बत करते हैं, तो प्रकृति भी आपको बेइंतहा प्रेम देती है। और जब प्रेम की बात आती है तो प्रेम शब्दों से बयां किया जाता है, लेकिन कभी कभार खामोशी भी प्रेम की जुबा बन जाती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सविता। और चुपचाप कुछ समझ जाना, कहते हैं ना कि कहने वाला कह भी ना पाए, लब हिले भी नहीं और सामने वाला समझ जाए। अभिव्यक्ति प्रेम की ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसी बात पे एक और खूबसूरत से अशआर मुझे याद आते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा।
0: ढूंढता फिरता हूँ ए इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। यानी कि जब आप मुसाफिर भी बन जाएं और मंजिल भी आप हो, यानी खुद की तलाश खुद से जारी है। तलाश में जब कुछ शब्दों के जरिए अपनी बात को कहने

0: के आगे की बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और वंदना, बोल तो हम कितने ही बोल लें, लेकिन जो समय होता है वो अपनी गति से चलता है, और समय ये कहता है कि भाई अब आगे बात करने की हम इजाजत नहीं दे रहे हैं।
1: और बिल्कुल कोई बात नहीं, और कुछ मुलाकातें अगर आधी अधूरी या फिर कहते हैं किसी ऐसे मोड़ पर छोड़ दी जाएं जहां बात मुकम्मल ना हो सभ्यता, तो उसका भी एक अलग मजा, क्योंकि हम जब फिर मिलेंगे आपसे तो बाकी की बातचीत के लिए हमारे पास कोई मुद्दा या फिर कोई वजह रह जाएगी, और वो भी बहुत खूबसूरत सी। क्यों,
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब बात आई है अब विदाई की, तो कार्यक्रम को भी यहीं संपन्न करने की हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब मुझे और वंदना को इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं एक खूबसूरत से
1: गीत
0: गीत
1: के
0: के
1: साथ।
0: साथ।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर, 12 बजने

0: को हैं। इन मीटरों पर हमारी प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्रातः 4:50 पर एक बार पुनः हम आप सभी की सेवा में उपस्थित होंगे, परंतु AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारा प्रसारण यूं ही लगातार जारी रहेगा। अब से कुछ ही पलों में होंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रेस्टालो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रुपये के नाममात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मौसम विभाग ने अगले तीन

0: टूर्नामेंट इन सिडनी। टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु डिफीटेड परूस वर्ल्ड नंबर 76 इनेस कास्टियो 21-13, 21-11 इन द फर्स्ट राउंड क्लैश ऑफ द टूर्नामेंट। सिंधु's प्री क्वार्टर फाइनल मैच विल बी अगेंस्ट कंपैट्रियट एंड वर्ल्ड नंबर 39 ईशरानी बरुआ। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस न्यूज बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ आज तरन्नुम जहां, और आप सुनेंगे मेरे साथ कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत, और कार्यक्रम है सुरों का सफरनामा। जी हां, आज हम बात करेंगे एक सफल जोड़ी की, और वो है जोड़ी शंकर जय किशन की। इन्होंने फिल्मी जगत में अपना बहुत नाम किया, बहुत बेहतरीन गाने हमें दिए जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले इस खूबसूरत याद को और ताज़ा करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ साथियों, आज का हमारा ये शुरू का सफरनामा हिंदी सिनेमा के उस गोल्डन इरा के नाम है जिनकी धुनें आज भी हर पीढ़ी के होठों पर तैरती है। एक ऐसी जोड़ी जिसने भारतीय फिल्म संगीत को पहली बार इंटरनेशनल साउंड दिया। जी हाँ, बात कर रहे हैं उन दो अनमोल रतन की, शंकर और जयकिशन की। इनके संगीत में वो जादू था कि अगर फिल्में नहीं भी चली तो बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ इनके गाने फिल्म खींच लेते थे। आइए संगीत में सफर का आगाज भी करते हैं और उस दौर के एक ऐसे तराने से जिसने न सिर्फ भारत की बल्कि भारत की बात करें तो इसके साथ साथ रूस, चीन और पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर दिया। फिल्म आवारा का वो सुरीला गीत मुकेश की आवाज में, जिसको अमर बनाया इस जोड़ी ने, यानी शंकर जयकिशन ने।

हिंदी फिल्मों की ये प्रसिद्ध जोड़ी शंकर जयकिशन की भारतीय फिल्मों में जब भी सुकून और ताजगी का एहसास देने वाले मधुर संगीत की चर्चा होती है तो इनका जो नाम है वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में आ ही जाता है। संगीतकार शंकर जयकिशन और उनके साथी शंकर की हमेशा याद आ जाती है।

जाती है। और बात करें पहले संगीतकार जोड़ी की, तो ये लगभग 2 दशक तक संगीत जगत की बात करें तो ये एक तरह का इनका राज था संगीत की दुनिया में, ये एक इनकी बादशाहत थी। और हिंदी फिल्म संगीत को पहली बार इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का काम भी किया था। गीत सुन रहे थे हम आवारा हूँ, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। आज की युवा पीढ़ी को तो दर्शाता ही है, लेकिन हम अगर कुछ गुजरे हुए ज़माने की बात करें तो उस समय की जो युवा पीढ़ी थी वो इस गाने से कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट करती थी और उनका दिल भी मचल उठता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो शंकर जय किशन, यानी ये जो दोस्ती की जोड़ी है या फिर कहे कि संगीत की जोड़ी है, ये कैसे बनी? हम अक्सर एक ही सांस में इनका नाम लेते हैं, लेकिन ये जो शख्सियत है बिल्कुल अलग-अलग हैं, इनके मिजाज अलग हैं, इनका बैकग्राउंड भी अलग है। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा और पीछे ले चलते हैं और इनकी जड़ों से मिलते हैं। बात करें फिल्मी करियर की इनके, तो लता मंगेशकर के करियर को बुलंदी पर पहुंचाने में भी इनका बड़ा हाथ रहा है। 2 फिल्में आई थी, महल और बरसात, और इन दोनों फिल्मों में जो है इनकी अहम भूमिका रही। दोनों ही फिल्में 1949 में प्रदर्शित हुई थी। पहली फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने दिया था और दूसरी फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। यही वो फिल्म थी जिससे उनके साथ गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और अभिनेत्री निम्मी ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में शंकर जयकिशन ने गीतों की एक से बढ़कर एक कहते हैं एक कड़ी लगा दी थी और उन गीतों के जो धुन थे वो आज भी हमें बहुत पसंद आते हैं और कहीं ना कहीं हम उन धुनों को याद रखते हैं। और ये फिल्म गीत और संगीत की दृष्टि से कह सकते हैं कि बॉलीवुड में एक मील का पत्थर मानी गई।

यहाँ हम बात कर रहे हैं शंकर जयकिशन जोड़ी की। तो हमारी ये इच्छा भी रहती है कि हम इन जोड़ियों को हमेशा एक जोड़ी मानकर चलते हों और एक ही नाम से पुकारते हैं, शंकर जयकिशन। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा होगा कि ये जो जोड़ी है ये दो अलग-अलग मिजाज के लोगों की है, दो अलग-अलग शहर में रहने वाले लोग की है। बात करें शंकर की, तो 15 अक्टूबर 1922 को जन्मे शंकर के पिता राम सिंह रघुवंशी ये मूलतः मध्य प्रदेश के थे और काम के सिलसिले में ये हैदराबाद में आकर बस गए। और घर के पास एक शिव मंदिर था, वहाँ पूजा अर्चना के दौरान तबला वादक का वादन भी बचपन से शंकर को बहुत आकर्षित करता था और इनका दिल लग गया तबला बजाने में। और ये लगन दिन पर दिन बढ़ती गई। महफिलों में तबला बजाते हुए उस्ताद नसीर खान की निगाह इन पर पड़ी और शंकर इनके चेले हो गए। शंकर अपनी कला को और निखारने के लिए एक नाटक मंडली में शामिल हो गए जिसके संचालक मास्टर सत्य नारायण थे। और इसके बाद इन्होंने, यानी कि शंकर जी ने, पृथ्वी थिएटर्स में तबला वादक का काम भी किया। पृथ्वी थिएटर्स के नाटकों में कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं भी इनको मिलने लगी और वक्त के साथ साथ वो वहाँ निखरते गए। इन्होंने यहाँ सितार बजाना भी सीख लिया।

जी हम बात कर रहे हैं जोड़ी शंकर जयकिशन की। तो जयकिशन के बारे में अगर हम जानें तो 4 नवंबर 1932 को जन्मे जयकिशन मूलतः गुजरात के वलसाड जिले के थे, और एक छोटा सा गांव है बासंदा। बासंदा गांव में लकड़ी का सामान बनाने वाले परिवार में इनकी पैदाइश हुई। परिवार गरीब था, पर इनकी प्रारंभिक संगीत की शिक्षा बाड़ीलाल और प्रेम शंकर नायक से मिली। बासंदा के ही प्रताप सिल्वर जुबली गायन शाला में उस वक्त के मंदिरों में या फिर तीज त्यौहारों में या कह सकते हैं कि लोक गीतों का भी प्रचलन था। गुजराती आदिवासी के नृत्य संगीत में भी इनकी रुचि जो है बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये इसी गायन शाला में काम भी करते थे, उसमें संगीत सीखते भी थे। जयकिशन अपनी बहन रुक्मणी के पास वलसाड़ आ गए थे एक टाइम के बाद, और कपड़े के कारखाने में उन्होंने कुछ दिन काम भी किया, और साथ ही साथ अपने संगीत का जो प्रेम है वो इनका गहरा होता चला गया। और एक ओपरा हाउस के में विनायक राव तांबे की संगीत शाला में ये हारमोनियम बजाने का काम भी करते थे, और इस खाली समय में अपना रियाज भी करते थे। अब बात करते हैं इनके मुलाकात की। तो जब अब सोच ही रहे होंगे आप कि इन दोनों के बारे में हमने अलग अलग जान तो लिया, लेकिन ये जोड़ी मिली कैसे? जी हाँ, तो किस्सा यूं है कि दोनों संगीत के किसी बड़े स्टूडियो में तो नहीं मिले। जयकिशन एक गुजराती डायरेक्टर चंद्रवदन भट्ट के दफ्तर के बाहर एक मतलब काम की तलाश में बेंच पर बैठे हुए थे, और शंकर भी वहां आ पहुंचे। दोनों में बातचीत शुरू हुई। संगीत के प्रति जो प्रेम था वो एक दूसरे को खींच कर लाया। बातचीत में तार जुड़ गए। शंकर ने जयकिशन की प्रतिभा को ताड़ लिया और उन्हें अपने साथ पृथ्वी थिएटर ले आए, जहाँ जयकिशन भी हारमोनियम बजाने लगे, और यहीं से हुई उनकी दोस्ती जो आगे चलकर एक मिसाल बन गई।

जी हाँ, राज कपूर साहब की फिल्म बरसात का ये जो लाजवाब गीत आप सुन रहे थे, इसी फिल्म से इन दोनों की प्रतिभा का पहला विस्फोट हुआ जो फिल्मी जगत में जिसने तहलका मचा दिया। और साल 1948 में राज कपूर साहब अपनी फिल्म आग बना रहे थे तो शंकर जयकिशन ने असिस्टेंट के तौर पर इसमें काम किया। लेकिन जब राज कपूर ने अपनी अगली फिल्म बरसात की तैयारी शुरू की तो उन्होंने संगीतकार राम गांगुली की जगह इन दो नौजवानों शंकर और जयकिशन को स्वतंत्र संगीतकार के रूप में मौका दिया। कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन राज कपूर साहब रिस्क लेने में माहिर थे और वो रिस्क इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ फिल्म जगत के लिए भी और इस जोड़ी के लिए भी। बरसात के गाने इतने हिट हुए कि रातों रात शंकर जयकिशन स्टार बन गए। इसी फिल्म के दौरान जन्म हुआ हिंदी सिनेमा के उस अमर चौकड़े का जिसमें शामिल थे राज कपूर, गीतकार शैलेंद्र, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। और ये जो अमर चौकड़े की बात हम आपको बता रहे हैं, इन्होंने फिल्मी जगत को एक ऐसा मुकाम दिया कि फिल्म जगत में फिल्में बनती थीं, कहानियां बेशक लोग भूल जाते थे लेकिन उन फिल्मों में फिल्माए गए ये गाने, इनकी धुन आज भी हमें बेहद पसंद किया आते हैं और हमेशा याद रहते हैं।

दोस्तों, शंकर जय किशन सिर्फ धुनें ही नहीं बनाते थे, वो भारतीय संगीत का इन्होंने, कहते हैं, एक व्याकरण ही बदल दिया। इन्होंने हिंदी गानों में अंग्रेजी संगीत का भी प्रयोग किया, जैसे वॉल्स, टैंगो और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन का यूज़ किया इन्होंने, और ऐसा बेजोड़ इस्तेमाल किया जो इससे पहले कभी फिल्मी जगत के गानों में सुना ही नहीं गया था।

बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ ग्रैंड वायलिन और सिम्फनी रिकॉर्ड करते थे। और जहाँ एक तरफ राज कपूर के लिए देखें कि उनके गाने संजीदा और गहरे होते थे, वहीं जब उनकी जोड़ी अभिनेता शम्मी कपूर के साथ बनी तो उन्होंने संगीत में एक युवा क्रांति ला दी। कहते हैं शम्मी का जो अंदाज था उसके अनुसार भी गाने बनाए जाने लगे, गाने लिखे जाने लगे उनके चुलबुले अंदाज को लेकर, और कहीं ना कहीं संगीत भी उसी तरह का देने दिया गया। और कहते हैं कि शम्मी कपूर के उस मदमस्त बागी और याहू वाले अंदाज के पीछे जो असली दिमाग था वो था शंकर जय किशन का, जिन्होंने तेज तर्रार धुनों को पैदा किया। और फिल्म जंगली, प्रोफेसर, एन इवनिंग इन पेरिस के गानों ने कह सकते हैं कि थिएटरों में एक तहलका मचा दिया, और लोग जो है इन गानों को सुनकर खूब झूम उठते थे, खूब नाचते थे, शोर मचाते थे और कुर्सियों पर खड़े होकर नाचने भी लगते थे। तो चलिए इसी क्रेज़ को महसूस करते हैं और शम्मी कपूर साहब की फिल्म जंगली का ये सॉन्ग सुनते हैं।

9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार फिल्म फेयर अवार्ड जो है अपने हिस्से किया। फिल्म चोरी चोरी, अनाड़ी, दिल अपना, प्रीत पराई, प्रोफेसर, सूरज, ब्रह्मचारी, मेरा नाम जोकर, पहचान और बेईमान के लिए उन्हें यह सम्मान मिला था। साल 1968 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा था। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

शंकर जय किशन का जो नाम था वो कहीं ना कहीं बहुत इनका परचम जो है वो लहरा रहा था संगीत की दुनिया में। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। साल 1971 में जब फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज़ हुई, जिसका संगीत संगीत जगत का एवरेस्ट माना जाता है, लेकिन इसी साल मात्र 38 साल की उम्र में लीवर की बीमारी के कारण जय किशन साहब अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए। जय किशन के जाने के बाद शंकर पूरी तरह टूट गए। आर के बैनर से भी उनकी जो दूरियां थी वो बढ़ गई, लेकिन

शंकर साहब का जज्बा देखिए, उन्होंने इंडस्ट्री के कई दबावों के बावजूद कभी किसी और को अपना पार्टनर नहीं बनाया। वो जब तक जिए, यानी कि 1987 तक अकेले ही वो संगीत देते रहे। इस जोड़ी की बात करें तो जोड़ी कहीं ना कहीं टूट ही गई थी, लेकिन फिल्मों के पोस्टरों पर हमेशा नाम रहा शंकर जयकिशन का। उन्होंने अपने दोस्त को अपने नाम में हमेशा जिंदा रखा। आइए सुनते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर का वो दार्शनिक गीत जो जिंदगी और इस रंगमंच की हकीकत को बयां करता है।

0: यहाँ कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। वाकई शो मस्ट गो ऑन कहते हैं ना। और आज ये जोड़ी जो है हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक इस कायनात में सुर रहेंगे, जब तक कोई आशिक अपनी महबूबा से प्यार हुआ इकरार हुआ कहेगा, और जब तक कोई उदास दिल दोस्त दोस्त ना रहा गुनगुनाएगा, शंकर जयकिशन हमारे दिलों में हमेशा धड़कते रहेंगे। उनके बनाए हुए गीत, धुन, सुर और कहीं ना कहीं ये दोस्ती की मिसाल, ये अनोखा प्यार फिल्म जगत के लिए एक कह सकते हैं कि ऊपर वाले का एक बेशकीमती उपहार है, जो हमें आज तक हम उससे संभाल के रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिलों में ज़िंदा रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके गीतों को प्यार करते हैं। और कह सकते हैं कि फिल्मी जगत के इस मील के पत्थर को हम हमेशा याद करते रहेंगे उनके गीतों से। कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा आज आप सुन रहे थे मेरे यानी कि तरन्नुम जहां के साथ, और हम बात कर रहे थे शंकर जयकिशन की। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 है।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के कुल 75 प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री नवीन ने मीडिया को बताया कि एनडीए वर्तमान में 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है, जो भारत के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इन्नेस क्रेस्टिलो को हराया, जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has assured that aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
1: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: On this occasion, the NDA adopted a resolution lauding Prime Minister Modi for achieving this historic feat. BJP President Nitin Narwin said that 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave. Wishes are pouring in from across the world as Prime Minister Modi becomes India's longest-serving elected Prime Minister. Several world leaders, including European Commission President Ursula von der Leyen, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Canadian Prime Minister Mark Carney, and South Korean President Lee Jae-myung congratulated Mr. Modi and praised his leadership and contributions to India's growth and global standing. US President Donald Trump described Prime Minister Modi as a great one. Hailing Prime Minister Modi as the doyen of all Indian prime ministers, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said, Russia hopes Mr. Modi will continue to strengthen India-Russia relations. Mr. Modi has thanked world leaders for their warm wishes and congratulatory messages. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. Lok Sabha Speaker Om Birla has said that Parliament is not merely a platform for lawmaking but the highest expression of the aspirations, expectations and concerns of the people. He said an association with Parliament provides a unique opportunity to understand the functioning of the Indian democracy. Mr. Birla made the remarks while interacting with IAS officer trainees of the 2024 batch under the Assistant Secretaries Programme at the Parliament House. India and Tajikistan have reaffirmed their commitment to deepen their partnership and strengthen industrial, trade and economic cooperation at the 12th meeting of the India-Tajikistan Joint Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation. Commerce Secretary Rajesh Agarwal stressed the need to translate political goodwill and historical ties into stronger economic outcomes through greater focus on trade, investment and market access. India has condemned the attack on the commercial vessel Setabelo off the coast of Oman. The Ministry of External Affairs said that of the 24 Indian crew members on board, 21 have been rescued so far, while 3 are reportedly missing. The Indian Embassy in Oman said it is closely monitoring the situation and is in close contact with the local authorities. Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship and Education, Jayant Chaudhary, has flagged off a contingent of 14 skilled Indian workers departing for Mauritius under the government-to-government labour mobility framework between India and Mauritius. Speaking on the occasion, Mr. Chaudhary said India's skilled workforce is increasingly being recognised globally for its talent, professionalism and adaptability. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma have advanced to the second round of the women's singles event at the Australian Open in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo, 21-13, 21-11 in the first round. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे। गोल्डन एरा फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ पुराने फिल्मी गीत। आइए सुनते हैं ये पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप ये फिल्म का गीत सुन रहे थे। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि आप सोचते हैं कि आप मंजिल तक पहुंच रहे हैं, ज़िंदगी के उस सफ़र में बस अकेले भाग रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जज्बात हैं, कुछ ऐसे दिल की बात हैं जो हमेशा दिल में ही रह जाते हैं। कभी ये उतरती भी है तो पन्नों पर, या फिर कभी ऐसे ही जज्बात दिल में उतरते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप कहने से भी डरते हैं और कहते कहते रुक भी जाते हैं। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही दर्द को लिए हुए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

जहाँ फिल्म आराधना का ये खूबसूरत गीत किशोर कुमार की आवाज़ में जो था, वो हमें ये कहीं ना कहीं एहसास दिलाता है कि हर कोरे कागज़ को पहचान नहीं मिलती। कहते हैं कि कुछ अरमान, कुछ दिल के जज्बात यूं ही खाली पन्नों की तरह बस हवा में उड़कर चले जाते हैं अगर हम वक्त को ना थामें, क्योंकि वक्त ऐसा है रेत के समान, जैसे ही आप उसे हथेली में कैद करेंगे बस रेत हाथों से फिसल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।

कुछ पल ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम जिंदगी भर के लिए रोक लेना चाहते हैं, और कुछ यादें ऐसी होती हैं कि जिसे हम हमेशा अपने दिल में समा लेने की कोशिश करते हैं, दिल में कैद करना चाहते हैं। और इसी खूबसूरत एहसास को अगला ये जो गीत है वो बयां करता है। और कहते हैं ना कि मुलाकातें भी अधूरी रह जाती हैं और मलाल भी रहता है ज़िंदगी भर, लेकिन अगर वो मुलाकात मुकम्मल हो जाए और अपने एहसास, अपने जज्बात कहीं ना कहीं नज़रों के ज़रिए ही, एक खूबसूरत एहसास के ज़रिए ही आप अपने महबूब तक पहुंचा सके, तो ये अपने आप में एक मुकम्मल मोहब्बत बन जाती है। आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कहते हैं मोहब्बत का एहसास भी कितना अजीब होता है। जब कोई हमारी ज़िंदगी में आता है तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी को असली मायने मिल गए हैं। और इनको कुछ शब्दों में अगर बयां करें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं कि नज़रों में आपकी कुछ ऐसा कमाल देखा है, उजड़े हुए दिल का बदलता हाल देखा है, खुदा की रहमत कहें या फिर आपकी चाहत का असर, अपनी किस्मत का चमकता हुआ सितारा देखा है।

वो आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि बहारों ने भी अपना रास्ता बदल लिया। बात जब उनके हुस्न और सादगी की चली तो वक्त ने भी ठहर कर उन्हें तकना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, की कुछ शख्सियत ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जिनके सामने लफ्ज़ निकलते नहीं, आवाज़ रुक जाती है, सांसें रुक जाती हैं और हर एक तारीफ जो है वो छोटी लगने लगती है। और कहते हैं कि कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा नजराना हो, बड़े से बड़ा ख़जाना हो, उनके आगे कम लगने लगता है, फीका लगने लगता है। और जब मोहब्बत में पाकीज़गी की बात होती है तो उसमें एक ठहराव आ जाता है, जब आप किसी को इतनी अहमियत देने लगते हैं कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात तो उनके कदमों के आगे रख दे, अपने मोहब्बत के आगे रख दे। लेकिन आज के इस दौर में सब कुछ बहुत जल्दी में है। वो मोहब्बत नहीं, वो इबादत नहीं, वो प्यार नहीं, कहते हैं कि वो जज्बात नहीं। और गुज़रे ज़माने की बात करें तो गुज़रे ज़माने में जो भी ये गीत बनते थे वो इन एहसासों को लिए हुए होते थे, और ये गीत भी हमें सिखाते हैं उन एहसासों को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं जिसमें ठहराव हो, मोहब्बत हो, पाकीज़गी हो। और अगला ये जो गीत आप सुनेंगे, इस गाने को सुनकर आपको ये एहसास

होगा कि महबूब के हुस्न की जो उपमा दी गई है, जो बात कही गई है, उसमें भी कितनी सादगी है, कितनी पाकीज़गी है। आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

पुरानी हिंदी फिल्में गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सुनहरे आप सुन रहे थे, और आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: और इसी खूबसूरत गीत के साथ फिल्म संगीत यानी कि पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम गीत सुनहरे यहीं संपन्न करते हैं और अब से थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं।

0: हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान व्यक्ति बताते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त कहा है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वह आगे भी महानता और सफलता के साथ कार्य करते रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रेस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance NDA has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
0: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज

0: और ऐसे ही आखिरी गीत के साथ गीत बहार का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र 1 रुपये के नाममात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance NDA has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. Mr. Modi said, "Every citizen of the country is filled with the dream of a Viksit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party."
3: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है, और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
2: ऑन दिस ओकेशन द एनडीए अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन लॉडिंग प्राइम मिनिस्टर

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम गजल गीत।

0: इसके साथ ही आज का गजलों का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभो।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से अन्नमाचार्य की रचना नारायण ते नमो।

0: और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। 4:20 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं वालन वादन। कलाकार हैं जी उमा, आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है MV चंद्रशेखर ने।

नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन। कलाकार थे जी उमा और आपके साथ मृदंगम पर संगत किया था MV चंद्रशेखर ने।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संबत 1948 की ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज के योग होंगे योग मुद्रासन और आश्वासन। देशभक्ति गीतों का समय रहेगा सुबह 5:20। साढ़े 5 बजे सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुन सकेंगे विदुषी माधुरी डांडिगे से राग गुणकली।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम बंदना आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर। 6:40 का समय रहेगा चिंतन का। आज आप सुनेंगे रहीम के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ सुनेंगे। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 83। सुनिएगा संगीतिका। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पुष्परानी मित्रा के गाय भजन। साढ़े 7 बजे गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा।

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे उस्ताद जावेद अली खां का गायन। उद्योग पत्रिका का समय रहेगा सुबह 9:15। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 और फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद समय रहेगा सुबह 10:10। ग्यारह बजकर 10 मिनट पर सुनेगा स्वरांजलि। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शशांक शेखर से गजलें। साथियों ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 5 बजने वाले हैं, कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि

0: मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र 1 रूपये के नाम मात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog today at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi. In line with Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the inclusive human development framework. BJP President Nitin Naban has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. Speaking to the media, Mr. Naban said, NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naban said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas has connected people across the country. Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. Mr. Modi said, every citizen of the country is filled with the dream of a Viksit Bharat and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party.
3: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक ले। श्वास बाहर छोड़ते हुए

पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ ले। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और सांस भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः सांस भरते हुए दाहिना पांव यानी के जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथा संभव, और तीन लंबी गहरी सांस लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन सांस पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को

अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी सांस से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 5:30 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं विदुषी माधुरी डांडेगे की आवाज़ में राग गुणकली। तो लीजिए सुनिए ये प्रस्तुति।